ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें झरोका के अंतर्गत दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड का भाग 322वां। संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 10। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर

हम है राही प्यार के 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष भाग 47वां, लेखक मिलिंद सबनीस और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आठ बजकर 30 मिनट पर चित्रलोक, सुबह और रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित है पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर, आलेख और स्वर राजेंद्र त्रिपाठी का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।

10 बजे पिटारा में आप सुनेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम, संवादक यूनुस खान, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनवाए जाएंगे। बजे कार्यक्रम हेलो सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, कहानी दो दीवाने शहर में, लेखिका नासिरा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी, संवादक मंदाकिनी जोशी। 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:00

रात 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका मान की मृत्यु, लेखक डॉक्टर शमसुद्दीन, निर्देशन पुरुषोत्तम धारवेकर। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम, 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए।

रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत आलेख एवं स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात रंग तरंग का पुनः प्रसारण रात 9 बजे। रंग तरंग का पुनः प्रसारण रात 11 बजे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के लंका कांड का भाग 322। आज आप सुनेंगे।

आसुरी माया और भांति भांति के शस्त्रों से अकेले मेघनाद ने युद्ध भूमि में प्रलय सा मचा दिया है। रावण के अन्य योद्धा भी युद्ध में आ डटे हैं। इधर अपने दल बल समेत विशाल भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल और रक्ताप नेत्रों वाले लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला है। भयानक मारकाट मची है, जहां तहां रुंड मुंड उड़ रहे हैं। भयानक निनाद से वातावरण प्रकंपित है। रक्त से गड्ढे भर गए हैं, जिन पर जमी धूल ऐसी दिखाई देती है जैसे अंगारों पर राख की परत बैठ गई हो। ऐसा लगता है कि कोई किसी को जीत नहीं सकता। तभी लक्ष्मण के बाणों से मेघनाद का रथ सारथी समेत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। प्राणों पर संकट आया देख मेघनाद शक्तिवाण चलाता है, जिसके छाती में लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर लुढ़क जाते हैं। योद्धाओं की सहायता से मेघनाद उन्हें उठा ले जाना चाहता है, किंतु धरती का भार अपने फन पर वहन करने वाले शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को भला कौन उठा सकता है। अनेक योद्धा लक्ष्मण का अचेत पड़ा शरीर उठा लेना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने में असफल होकर लज्जित हो वापस चले जाते हैं। संध्या हो आई, सभी वीर अपने अपने शिविरों में लौट आए, किंतु लक्ष्मण कहाँ हैं? श्री राम का ये प्रश्न मुखरित भी नहीं हुआ था कि हनुमान उन्हें ले आए। अनुज का ये हाल देखकर श्री राम अत्यंत व्यथित हो गए।

0: ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। आज आपने सुना भाग 322।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस विषय पर जानकारी और गायन के उदाहरण जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने प्रस्तुत किए हैं।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। छंद शास्त्र के अनुसार तराने में मगण, तगण, नगण आदि का प्रयोग है। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में समझा जा सकता है, कहा नहीं जाता। जब समझ में कमी होती है तो कहा हुआ समझ में आता है, और अनुभव होने पर अनकहा ज़्यादा समझ में आता है। वही बात तराने पर लागू होती है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मनुष्य की ज्ञान एवं श्रवण शक्ति से परे हैं, जिसे एबिएंट नॉइज कहते हैं। इसे सुनकर मच्छर भाग जाते हैं, किंतु इस आवाज को इंसान नहीं सुन पाता। पशु पक्षी जिस बात को समझते हैं, एहसास करते हैं, वह मनुष्य की ज्ञान शक्ति से परे है। जहां मनुष्य की समझ नाकाम हुई, वहां पशु पक्षियों की समझ को, उनकी ध्वनि को एक स्थान मिल गया है। जैसे गर्दभ से गंधार, कोकिल से पंचम, हाथी से निषाद। देखा जाए तो श्री कृष्ण की बंसी में भी स्वर का आकर्षण था, शब्द नहीं थे। उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि तुम आओ, फिर भी गोपियाँ, गायें, पशु पक्षी सब खींचे चले आए। विश्व ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां मूक हैं, उनका एहसास पशु पक्षियों को होता है, मनुष्य को नहीं। उसी प्रकार तराना एक रहस्यमय सांकेतिक भाषा है, साधारण ज्ञान से उसकी परिभाषा कठिन है। मैं अपनी संस्कृत तराने की रचना राग ललित में प्रस्तुत करता हूँ।

अब मैं आपके सामने राक्षसाना में तराने की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि मेरी अपनी बनाई संस्कृत में है।

0: संगीत सरिता में ख्याल और तराने की विशेषताएं शीर्षक से श्रृंखला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर इनका साथ दिया था पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर संगत की थी ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

दोस्तों, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में इन दिनों गणपति बप्पा की धूम रही। आज गणपति बप्पा अनंत चतुर्दशी के इस पावन मौके पर हम सभी के बीच से विदा लेंगे। चलिए, भक्ति भाव से भरी इस सुबह के बीच बाबा महाकाल को समर्पित इस सुंदर भजन के साथ भोर का स्वागत करते हैं।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिए उज्जैन दर्शन।

10:30 पर महिला सभा कार्यक्रम सुना जा सकेगा। 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। यादों की महफिल आप सुनेंगे 12:05 पर। कार्यक्रम सुरीला सफ़र आप सुनेंगे 1:00। फिल्म संगीत सुनिएगा 2:00। 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम सुना जा सकेगा। शाम 4 बजे सुनिए गीतों भरी कहानी। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे सुनिए युवाओं की अपनी पसंद का प्रोग्राम युववाणी। इसी बीच 5:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट श्रृंखला का 13वां एपिसोड। 5:20 पर युववाणी कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होगा। शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा।

6:30 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा। अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम होगा माटीरी बात, जिसमें मालवी समाचारों के साथ आनंद लीजिए मालवी गीतों का। रात 8 बजे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा सुना जा सकेगा। 8:35 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा। 10 बजे सुनिएगा 20वें एशियन गेम्स पर विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम राग

रजनी। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के सेवा यात्रियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, सरकार ने पिछले एक वर्ष में 85,000 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। मुख्यमंत्री, सुगम परिवहन सेवा आज से होगी शुरू, 7 शहरों में 351 बसों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी, रीवा में रेड और 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जन सेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को करीब से समझने का अवसर देती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष में 85,000 युवाओं को रोजगार और सेवा के अवसर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में नवनियुक्त 62 खनिज निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता के साथ काम करने वाले अधिकारी प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देंगे। कार्यक्रम में बताया गया है कि प्रदेश की खनिज आय बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त खनिज निरीक्षकों को सुशासन और लोक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। रक्षा मंत्री ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि साइबर हमले, ड्रोन दुष्प्रचार और आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े खतरे लगातार नए रूप ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत शांति, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने में भी सक्षम है।
1: बतलाना चाहता हूं, शायद ये पहली बार ही हुआ है, आज हमारा एक भी डीपीएसयू डेफिसिट में नहीं है। एक भी डीएपीएसयू हमारा डेफिसिट

0: में नहीं है। और पिछले एक डिकेड में इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन में लगभग 4 times की वृद्धि हुई है, 4 गुना वृद्धि हुई है। और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 1.80 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
1: श्री सिंह ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश का रक्षा बजट लगभग 3 गुना बढ़ा है और स्वदेशी रक्षा उत्पादन 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, ड्रोन और एआई आधारित रक्षा तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए आय अर्जित करने वाले विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कल मंत्रालय में विभिन्न विभागों की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की और वित्त वर्ष के अंत तक निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वाणिज्य कर, खनिज, आबकारी, परिवहन, वन और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में 14वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के बेचल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 21 वर्ष से बंद लोक परिवहन बस सेवा को फिर से शुरू किया जा रहा है। इस आधुनिक परिवहन व्यवस्था में ई बसों सहित विभिन्न प्रकार की बस सेवाएं चरणबद्ध रूप से नगरों और जिलों तक पहुंचाई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इनमें इंदौर की 145, भोपाल की 106, जबलपुर की 67, रीवा की 18, देवास के 10, कटनी के 3 और भिंड की 2 बसें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कल कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और नई बसों में यात्रियों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली।
3: सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं, जिसमें यात्रियों की पूरी सुविधा, यात्री आवागमन के साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए जन सुविधा, बस स्टॉप, बस स्टैंड, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की जो जो जरूरत है वो सब चीज करते हुए सुगमता पूर्वक कंट्रोलिंग व्यवस्था से ये जो कल्पना की है। और अब हम वो बड़े राज्य हो गए जिनके बड़े राज्य के पास खुद की परिवहन की व्यवस्था भी है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग और विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 की मिक्स्ड 400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले भारतीय धावकों राजू पुअम्मा, विशाल टीके, विद्या रामराज और मनु टीएस को बधाई दी है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रीवा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जबलपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, दमोह, उमरिया, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के इमलिया फार्म स्थित वानिकी विभाग और कृषि महाविद्यालय की ओर से तिलहनी वृक्ष परियोजना के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नमामि भारतम अभियान के तहत जिले में आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी में शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और परिवहन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर में अनंत चतुर्दशी पर आज शहर में 15 झांकियों और 7 अखाड़ों के साथ चल समारोह निकलेगा। आयोजन को लेकर प्रशासन और समिति ने आवश्यक

व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्राम भीमपुरी की इंदिरा खुमान सिंह डामोर ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव किया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उन्होंने किराना दुकान और कृषि कार्य को आय का माध्यम बनाया। युवा आपदा मित्र योजना में आगरमालवा जिला आपदा प्रबंधन तथा होमगार्ड नागरिक सुरक्षा के तहत नामांकित 125 आपदा मित्रों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। सतना जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन को सुरक्षित कराने के लिए शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, सतना नदी उचवा टोला और माधवगढ़ में विसर्जन स्थल निर्धारित किए गए हैं। मंडला में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में निजी क्षेत्र की 5 कंपनियों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं गोपाल गर्वित लेकर आया हूँ सुबह की ताजगी, शहर की महक और कुछ ऐसी बातें जो आपको इस उज्ज्वल प्रभात से और भी गहराई से जोड़ देंगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षिप्रा की लहरों पर सुनहरी रेखा खींचती है, उज्जैन जाग उठता है। घंटों की मधुर ध्वनि के साथ, बाबा महाकाल की भस्म आरती की ऊर्जा के साथ और इस शहर की उन अनगिनत कहानियों के साथ जो हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं आप सभी का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

श्रोताओं, सुबह की इस खूबसूरत बेला में जब हम अपने देश, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। वंदे मातरम। इस अमर गीत के 150 वर्ष के अवसर पर आज 25 सितंबर को देश में एक अनूठा सामूहिक आयोजन होने जा रहा है, नमामि भारतम। विद्या भारती के मार्गदर्शन में देश के 25,000 से अधिक स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और समाज जन सुबह 11 बजे एक साथ संपूर्ण वंदे मातरम का सामूहिक गान करेंगे। मालवा प्रांत भी इस राष्ट्र स्वर का साक्षी बनेगा। यहां 522 सरस्वती शिशु मंदिरों में करीब 1,52,850 विद्यार्थी, आचार्य, पालक, पूर्व छात्र और समाज जन एक साथ जुड़ेंगे। सोचिए, अलग अलग शहर, गांव, विद्यालय और हजारों चेहरे, लेकिन स्वर एक। यह आयोजन केवल गीत गाने का अवसर नहीं बल्कि उस भाव को याद करने का अवसर है जिसमें मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, त्याग और राष्ट्रीय चेतना जुड़ी है। तो आइए सुनते हैं आज के सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का पहला गीत इस जानकारी के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन से अब प्रस्तुत है आज के स्थानीय समाचार। उज्जैन में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। बड़े चल समारोह के दौरान यातायात में भी बदलाव। उज्जैन दर्शन के लिए अगले माह 20 एसी बसें आने की तैयारी। प्रमुख मंदिरों और पौराणिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में स्वास्थ्य के अधिकार और स्वच्छ जल विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने नवपदस्थ 22 उप निरीक्षकों से संवाद कर आधुनिक और जनोन्मुखी पुलिसिंग पर जोर दिया। और राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए उज्जैन के अभिराम जायसवाल का चयन। अब समाचार विस्तार से। उज्जैन में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 8 घाटों पर 12 सुसज्जित विसर्जन रथ लगाए जाएंगे, जबकि बड़ी प्रतिमाओं के लिए कालियादेह महल क्षेत्र में 2 बड़ी क्रेन और JCB की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक जोन में 20 से 25 कर्मचारियों की टीमें तैनात रहेंगी। त्रिवेणी घाट, लालपुल घाट, गौ घाट, नरसिंह घाट, हीरा मिल कुंड, टावर चौक और केडी पैलेस सहित निर्धारित स्थानों पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है। निर्माल्य और प्रतिमाओं को अलग अलग एकत्र कर विशेष वाहनों से सुसज्जित सुव्यवस्थित स्थानों या कचरा ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। कम वर्षा के कारण हीरामिल कुंड में पानी की गहराई कम होने के कारण यहां बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा। बड़ी प्रतिमाओं को एकत्र कर वाहनों से केडी पैलेस कुंड तक ले जाया जाएगा। गणेश विसर्जन चल समारोह के दौरान यातायात व्यवस्था में भी बदलाव रहेगा। शाम 6 बजे से चामुंडा चौराहा की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रात 8 बजे विभिन्न क्षेत्रों की झांकियां चामुंडा चौराहा पर एकत्रित होंगी और रात करीब 10 बजे विसर्जन चल समारोह शुरू होगा। कई मार्गों पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। उज्जैन में श्रद्धालुओं को प्रमुख मंदिरों और पौराणिक स्थलों तक पहुंचाने के लिए उज्जैन दर्शन बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। पहले चरण में अगले माह 20 ऐसी बसें शहर में आने की संभावना है। 32 सीटर इन बसों में लाइव ट्रैकिंग और CCTV कैमरों की सुविधा रहेगी। बस की बुकिंग और टिकट व्यवस्था ऑनलाइन होगी तथा इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। प्रस्तावित मार्ग में शनि मंदिर से महाकाल मंदिर, हरसिद्धि, रामघाट, भूखी माता, ऋण मुक्तेश्वर, भरतरी गुफा, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, काल भैरव, सिद्धवट, अंगारेश्वर, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम, खाक चौक इस्कान, रेलवे बस स्टैंड और चिंतामन सहित अन्य प्रमुख स्थल शामिल किए गए हैं। बस में लगी LED स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों को रास्ते में आने वाले मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास की जानकारी भी दी जाएगी। कंडक्टर गाइड की भूमिका भी निभाएंगे। इस सेवा में टिकट पूरे दिन के पास के रूप में मान्य रहने की योजना है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में स्वास्थ्य के अधिकार और स्वच्छ जल के अधिकार विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में एंजेल ने प्रथम, प्रिंसी सिसोदिया ने द्वितीय और अवनी पाठक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागियों का मूल्यांकन विषय वस्तु, तर्क विश्लेषण, भाषा अभिव्यक्ति, प्रस्तुति, आत्मविश्वास, मौलिकता और समय प्रबंधन के आधार पर किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जिले के नवपदस्थ 22 उप निरीक्षकों से मुलाकात कर संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों से उनकी रुचियों, कार्यक्षेत्र और विशेष क्षमताओं के बारे में जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने आधुनिक तकनीक के उपयोग, नवाचार, रचनात्मकता और जनोन्मुखी पुलिसिंग पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने, नियमित व्यायाम करने अथवा और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित 50 दिवसीय अखाड़ा कार्यशाला का समापन हुआ। हरिहरानंद शौर्य कला सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला का समापन 21 सितंबर को बड़पुरा स्थित बाबा बाघ हनुमान मंदिर में हुआ। इस अवसर पर 150 प्रतिभागियों की प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। कलाकारों ने पारंपरिक अखाड़ा कलाओं का प्रदर्शन भी किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत परिष्कृत सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा विरासत भी विकास भी विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। SV विश्वविद्यालय के

चल समारोह के दौरान अखाड़ों के खलीफाओं और झांकी कलाकारों का सम्मान किया गया। बैडमिंटन में उज्जैन के खिलाड़ी अभिराम जायसवाल का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। सेंट थॉमस स्कूल और विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब के छात्र अभिराम ने भोपाल में आयोजित CISCE राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं उज्जैन के श्री हस्तरेखा स्कूल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हस्तरेखा विशेषज्ञ रोहित वर्मा को वृंदावन में आयोजित वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी वेद कॉन्फ्रेंस में सम्मानित किया गया। राधाष्टमी के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में हस्तरेखा ज्ञान पर व्याख्यान और प्रश्नोत्तर के लिए उन्हें स्वर्ण प्रदान किया गया। इसी के साथ स्थानीय समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार, चलिए सुनते हैं आकाशवाणी उज्जैन से सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, किसी भी शहर की असली समृद्धि केवल उसकी सड़कों, इमारतों या बाजारों से नहीं बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की कितनी अच्छी देखभाल हो रही है। उज्जैन से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सकारात्मक खबर सामने आई है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में बताया गया कि नियमित टीकाकरण के मामले में उज्जैन जिला वर्तमान में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। प्रशासन ने इस उपलब्धि को बनाए रखने और आगे बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बच्चों के टीकाकरण को लेकर, टीवी की स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड, मातृ स्वास्थ्य और कुपोषित बच्चों के उपचार तक कई विषयों पर समीक्षा की गई। वहीं शुक्रवार यानी आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। चलिए इसी स्वास्थ्य और सुखद खबर के साथ अगले गीत की ओर चलते हैं।

श्रोताओं, रेल यात्रा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोज हजारों ट्रेन लोगों को अब एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाया करती है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सहभागिता भी इसे एक और मजबूत बनाती है। इसी उद्देश्य से शासकीय रेलवे पुलिस इंदौर द्वारा रेल रक्षा समिति के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महू, फतेहाबाद, मक्सी और देवास क्षेत्र से कुल 60 सदस्यों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर ने कहा कि ये सदस्य जीआरपी के साथ मिलकर यात्रियों की सहायता, अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए रेल सुरक्षा और यात्री सुविधा में इन सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रशिक्षण में समिति के नियम, कर्तव्य, जीआरपी हेल्प ऐप और ड्यूटी के दौरान किए जाने वाले तथा नहीं किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। उत्कृष्ट योगदान देने वाले सदस्यों को प्रशंसा पत्र भी दिए गए। समाज और पुलिस का यह सहयोग यात्रा और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अगला गीत।

जानकारी आप सभी के बीच प्रस्तुत है। राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस किसी युवा के हाथों में किताब हो, मन में सीखने की ललक हो और दिल में समाज के लिए कुछ करने का भाव हो तो शिक्षा का अर्थ और व्यापक हो जाता है। यही भावना राष्ट्रीय सेवा योजना यानी रोसेयो विद्यार्थियों में विकसित करती है। उज्जैन के शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सेवा, अनुशासन, नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों पर छात्राओं से संवाद किया। वक्ताओं ने कहा कि रोसेयो केवल गतिविधियों में भाग लेने का माध्यम नहीं बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतों को समझने और सेवा को जीवन का संस्कार बनाने का अवसर है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना गुप्ता ने भी छात्राओं से समाज हित को प्राथमिकता देने और प्रकृति, संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यों के संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। इसी सुंदर भावना के साथ अब सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
3: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
4: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की

0: मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
1: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
7: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
8: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीक की ई बस सेवा से लगाकर के सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जन कल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
9: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
10: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
11: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्य में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनपिंग से मिलकर काम करने का वादा।
2: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के आठवें दौर में अजन बहजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंटरैक्ट विद पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेवा यात्रा फॉर सेकेंड डे टूडे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू मैन्युफैक्चरिंग नेशन कंप्लीट्स 12 ईयर्स टूडे। FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. Another news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today with video conferencing with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. More from our correspondent.
13: The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experience from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. Yashasvi Kiryal, Akashvani News, Delhi.
12: The Prime Minister yesterday interacted with participants of the Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi and praised their ongoing journey as a significant step toward grassroots nation building. During the interaction, Mr. Modi asked the participants about their experiences on the road, their interactions with people and the new learnings they had gathered during their journey. Today marks 12 years of Make in India. It was on this day in 2014 when the initiative was launched with the ambition of becoming a global hub for manufacturing, design and innovation. The initiative has transformed India's manufacturing landscape by expanding production, investment and capabilities across industries. We have a report.
14: Over the years, Make in India has opened new opportunities for businesses and investors to participate in India's manufacturing journey. The initiative has subsequently been expanded under Make in India 2.0. The initiative now focuses on 27 sectors, which include 15 in manufacturing and 12 in services. Guided by minimum government, maximum governance, it has also sought to modernize processes and policies. Under the initiative, India's electronics production increased nearly sevenfold from 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to over 13 lakh crore in 2025-26. During this period, Indian Railways manufactured nearly 55,000 coaches over 2014-2024. Further, under the Make in India initiative, country's indigenous defense production increased from 46,429 crore rupees in 2014-15 to a record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. The initiative now goes beyond producing more goods and focuses on building the skills, technology and capacity needed to make them in India. With Priya Mondal, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
12: The Food Safety and Standards Authority of India, or FSSAI, has proposed nationwide ban on manufacture and sale of analog product as paneer. In a notification, the FSSAI stated that the products already licensed or registered under analog in dairy context category shall discontinue the use of the term paneer in their nomenclature, labelling or marketing. The FSSAI has proposed the amendment in the Food Safety and Standards Prohibition and Restrictions on Sales Regulations 2011 for analog paneer. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva.

तो नमस्कार श्रोताओं, आज की सुबह कुछ खास है, कुछ अलग है, क्योंकि आज बात उन चीज़ों की नहीं जो हमारे पास है, बल्कि उन चीज़ों की जिन्हें पाने का ख्वाब हमारी आंखों में पलता है। सपने कितने छोटे छोटे होते हैं। किसी बच्चे का सपना होता है कि वो बड़ा होकर आसमान छुए, किसी माँ का सपना होता है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी उससे बेहतर हो, किसी युवा का सपना होता है कि वो अपनी पहचान बनाए, और किसी कलाकार का सपना होता है कि उसकी आवाज़ किसी अनजान दिल तक भी पहुँच जाए। सपनों की खूबसूरती यही है कि उन्हें पूरा होने से पहले किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, वे बस दिल में जन्म लेते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी राह बन जाते हैं। तो आइए विश्व स्वप्न दिवस पर अपने भीतर के उस बच्चे को आवाज़ दें जिसने कभी आंखें बंद करके खूबसूरत दुनिया देखी थी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें सपनों की कलाकारी को बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कुछ ख्वाब इतने प्यारे होते हैं कि उनके बारे में सोचते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कभी कोई सपना हमें दूर शहरों तक ले जाता है, कभी किसी अनजान मंजिल की ओर, और कभी बस इतना कहता है, चलो आज से कुछ नया करते हैं। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर सुबह हमारे पास एक नया सपना देखने का मौका लेकर आता है। हो सकता है हमारी राह में मुश्किलें हों, हो सकता है कुछ सपने देर से पूरे हों, लेकिन देर से दिखने वाला फूल भी तो फूल ही होता है। इसलिए अपने सपनों की उम्र मत गिनिए, उन्हें जीने की हिम्मत रखिए। विश्व स्वप्न दिवस पर आइए, उन ख्वाबों के नाम एक गीत सुनें जिनकी वजह से हमारी आँखों में अब भी थोड़ी सी चमक बाकी है।

दोस्तों, बचपन के सपने भी कितने निराले होते हैं। एक कागज़ का हवाई जहाज और हमें लगता था कि हम आसमान तक पहुंच जाएंगे। एक खिलौना कार और हम किसी बड़े शहर की सड़क पर खुद को दौड़ता हुआ देख लेते थे। फिर उम्र बढ़ी तो सपनों ने भी कपड़े बदल लिए। किसी ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, किसी ने खिलाड़ी बनने का, किसी ने मंच पर खड़े होकर तालियां सुनने का और किसी ने बस अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखने का। मगर सच कहें तो हमारे भीतर वो छोटा सा बच्चा आज भी कहीं ना कहीं जीवित है, जो दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाना चाहता है। आज विश्व स्वप्न दिवस है, तो क्यों ना उस बच्चे से फिर मुलाकात की जाए। क्यों ना कुछ देर के लिए ज़िंदगी की भाग दौड़ से बाहर निकलकर वही पुराना सपना याद किया जाए, जिसे हमने वक्त की अलमारी में कहीं रख दिया है। तो चलिए, एक मस्ती भरा गाना आप सभी के लिए।

दोस्तों, कुछ सपने अकेले नहीं देखे जाते, उन्हें किसी के साथ बांटना पड़ता है। जैसे किसी शाम चाय के साथ भविष्य की बातें करना, किसी दोस्त से कहना एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे, या किसी अपने से ये कहना कि एक दिन हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसी हमने सोची है। सपने जब शब्द बनते हैं तो उम्मीद पैदा करते हैं, और जब उम्मीद किसी अपने का हाथ थाम लेती है तो रास्ते थोड़े आसान लगने लगते हैं। शायद इसी वजह से सपनों का रिश्ता सिर्फ आँखों से नहीं, दिलों से भी होता है। और प्रेम, वो तो अपने आप में एक खूबसूरत सपना है। किसी की मुस्कान में अपना सुकून ढूंढना, किसी की खुशी में अपनी खुशी देखना, ये भी तो एक तरह की दुनिया है जिसे दो लोग मिलकर बनाते हैं। विश्व स्वप्न दिवस पर उन खूबसूरत साझा सपनों के नाम, जिनमें मैं थोड़ा कम है और हम थोड़ा ज़्यादा। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, हर सपना फूलों की राह से होकर नहीं गुजरता। कुछ सपनों का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कभी लोग कहते हैं ये संभव नहीं है, कभी परिस्थितियां कहती है अभी वक्त नहीं आया, और कभी हमारी अपनी हिम्मत हमसे सवाल करती है। लेकिन इतिहास में जितनी भी बड़ी उड़ानें हुई है, उनके पीछे कभी ना कभी किसी न किसी एक असंभव सा सपना देखा था। किसी ने सोचा था कि इंसान आसमान में उड़ सकता है, किसी ने सोचा था कि दूर बैठे व्यक्ति से पल भर में बात हो सकती है, और किसी ने सोचा था कि दुनिया को पहले से थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। सपने शायद इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वे हमें हमारी वर्तमान सीमाओं से आगे देखने की आदत देते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सपना है, उसे छोटा मत समझिए। हो सकता है आज ये केवल ख्याल हो, लेकिन कल वही आपकी पहचान बन जाए। इसी हौसले और उड़ान के नाम अगला गीत।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें मंजिल से ज़्यादा सफ़र सिखाती है। हम एक सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में हमें कई नए सपने मिल जाते हैं। कोई दोस्त मिलता है, कोई अनुभव मिलता है, कोई असफलता हमें मजबूत बनाती है और कोई छोटी सी सफलता कहती है, हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए अपना सिर्फ सपना नाम नहीं है, सपना उस रास्ते का भी नाम है जिस पर चलते हुए हम खुद को थोड़ा थोड़ा खोजते हैं। और शायद इसलिए कुछ सपने पूरे होने के बाद भी मन में एक नया सपना जन्म ले लेता है। ज़िंदगी की कहानी भी तो ऐसी है, एक ख्वाब पूरा हुआ और दूसरा आँखों में उतर आया। विश्व स्वप्न दिवस पर आज हम उन सभी यात्राओं को सलाम करते हैं जिनमें मंजिल अभी दूर है, लेकिन कदम लगातार चल रहे हैं। आइए इसी सफ़र की धुन के साथ सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों, कुछ सपने सिर्फ अपने लिए नहीं होते। एक बेहतर शहर का सपना जहां हर बच्चा पढ़ सके, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां किसी के सपनों की कीमत उसकी परिस्थितियां तय न करें, एक ऐसा समाज जहां किसी की प्रतिभा अवसर के अभाव में पीछे न छूट जाए, ये सपने शायद किसी एक इंसान की आंखों में नहीं बल्कि करोड़ों आंखों में पलते हैं। आज के विश्व स्वप्न दिवस की खूबसूरती भी यही है कि ये हमें केवल एक अपने सपनों को याद नहीं दिलाता बल्कि उस भविष्य की कल्पना करने के लिए भी प्रेरित करता है जिसे हम मिलकर बना सकते हैं। आखिर सपना जब अकेला होता है तो इच्छा बन जाता है, और जब कई दिल एक ही सपना देखते हैं तो बदलाव की शुरुआत होती है। तो आज अपने लिए भी सपना देखिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए भी सपना देखिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं उज्जैनी आरजे का अगला गीत।

दोस्तों, क्या अभी कभी आपने गौर किया है कि सुबह की पहली किरण भी एक तरह का सपना लेकर आती है? रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कुछ दिन मुश्किल के होते हैं, कुछ फैसले उलझे हुए होते हैं और कुछ रास्ते धुंधले दिखाई देते हैं, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी ज़रूर होती है। वो रोशनी हमें कहती है, फिर कोशिश करो, फिर चलो, फिर सपना देखो। सपनों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वे हमें भविष्य से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि आज जैसा है कल वैसा ही रहना ज़रूरी नहीं। आज विश्व स्वप्न दिवस पर अपने भीतर उस रोशनी को बचाकर रखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी ज़िंदगी की पूरी दिशा बदल देती है। इसी उम्मीद और उजाले से भरे एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, कुछ सपने हमको उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ सपने हमारे खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, और कुछ सपने हम उसके लिए देखते हैं जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो चलिए, अगला गाना उन्हीं को डेडिकेटेड करते हैं जिनके हमारी ज़िंदगी में आने का सपना हम रोज़ देखते हैं, और एक दिन जब वो हमें मिलेंगे तो ये बात भी आप ज़रूर उन्हें बताइएगा।

दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आकर एक सवाल खुद से पूछिए। आज अगर आपको बिल्कुल नए सिरे से सपने देखने की आज़ादी मिले तो आप क्या सपना देखेंगे? शायद कोई पुराना सपना जिसे आपने जिम्मेदारियों के बीच कहीं छोड़ दिया है, शायद कोई नया सपना जिसका अभी नाम भी तय नहीं हुआ है, या शायद ऐसी दुनिया का सपना जिसमें खुशियाँ थोड़ी ज़्यादा और परेशानियाँ थोड़ी कम हो। विश्व स्वप्न दिवस हमें यही याद दिलाता है कि सपने सिर्फ भविष्य की तस्वीर नहीं होते, वे वर्तमान को दिशा देने वाली रोशनी भी होते हैं। इसलिए सपने देखिए, बड़े छोटे, निजी और सामूहिक, उन्हें शब्द दीजिए, उन्हें मेहनत दीजिए और सबसे ज़रूरी, उन्हें वक्त दीजिए। और चलिए सुनते हैं आज के उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का सजा हुआ सबसे अंतिम गीत।

तो दोस्तों इसी के साथ आज का उज्जैनी आरजे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर सुबह के ठीक 9:30 हुए हैं और अब समय है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

तो दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यात्राएं हमेशा लंबी नहीं होती। कभी किसी अपने के साथ उठाए गए चार कदम भी पूरी ज़िंदगी की एक खूबसूरत याद बन जाते हैं। साथ चलने वाला कोई ख़ास हो, रास्ते में बातें हों, कभी खामोशी हो और कभी बिना किसी मंजिल की जल्दीबाजी के बस सफ़र चलता रहे, तो वही पल अपने आप में ख़ास बन जाता है। फिल्म पीके का ये गीत इसी रिश्ते की, इसी सहजता और साथ चलने की खूबसूरत इच्छा को आवाज़ देता है। शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में सजा ये गीत शांतनु मोइत्रा के संगीत के साथ नरम, सुरीला और सुकून भरा एहसास देता है। तो आइए कुछ पल किसी खूबसूरत सफ़र के नाम करते हुए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV AIDS और अन्य संक्रामक बीमारी

आवाज़ इस गीत को और अधिक सुंदर बना देती है, जहाँ किसी खास शख्स की मौजूदगी ही सबसे प्यारी बात लगने लगती है। मीट ब्रदर्स का संगीत इसकी धुन में रोमांस और मिठास दोनों घोलता है। तो अब कुछ पल उस शख्स के नाम जिसकी मौजूदगी से दिल कह उठता है, बहुत खूबसूरत हो तुम।

0: बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: दिल की अपनी ही भाषा होती है, वो कभी खुशियों में धड़कता है, कभी किसी की याद में बेचैन होता है, और कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी भावुक हो जाता है। आखिर दिल ही तो है, उसे हर बात का हिसाब थोड़ी मालूम होता है। फिल्म द स्काई इज पिंक का गीत इसी मानवीय एहसास को अपने सरल और भावुक अंदाज में सामने लाता है। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में सजा ये गीत प्रेम, रिश्तों और जिंदगी की नाजुक भावनाओं को छूता है। प्रीतम का संगीत इसे एक ऐसा रंग देता है जिसमें मिठास भी है और भावनाओं की गहराई भी। तो आइए दिल की सुनते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

दोस्ती उन रिश्तों में से है जिन्हें किसी परिचय या औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती। एक सच्चा दोस्त वो होता है जिसके सामने हम अपनी कामयाबी भी रख सकते हैं और अपनी कमजोरियां भी। सफ़र कितना भी मुश्किल हो, अगर साथ चलने वाला कोई अपना हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। फिल्म भाग मिल्खा भाग का ये गीत अपनेपन के इसी भाव को खूबसूरती से सामने लाता है। जावेद बशीर की आवाज़ में इस गीत में मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की गर्माहट और अपने किसी खास साथी के प्रति अपनापन महसूस होता है। शंकर एहसान लाय का संगीत इस भाव को और गहराई देता है। तो आइए याद करते हैं अपने उस यार को जो सफ़र में हमेशा साथ रहा।

तो दोस्तों चलिए बॉलीवुड बीट्स के इस सफर में अंतिम मोड़ पर चलते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का ये सुंदर सा गीत, जिसे अपनी आवाज़ से अमर किया था आतिफ असलम ने।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: तो दोस्तों आज के लिए बॉलीवुड बीट्स में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब समय है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम उज्जैन दर्शन का। तो दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी है और उज्जैन में गणपति बप्पा की विदाई का दिन। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से निकलने वाली गणेश प्रतिमाओं की झांकियां आज शाम 8 बजे चामुंडा माता मंदिर चौराहा पर एकत्रित होंगी और रात करीब 10 बजे यहां से विसर्जन चल समारोह प्रारंभ होगा। चल समारोह देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, फव्वारा चौक, नई सड़क और कंठाल होते हुए आगे बढ़ेगा। इसके बाद अलग अलग झांकियां मंगलनाथ, बेगमबाग और शिप्रा नदी के रामघाट, सुनहरी घाट और अन्य जगह जाएंगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने यातायात की विशेष व्यवस्था की है। शाम 6 बजे से कई मार्गों पर यातायात डाइवर्ट रहेगा और रात 8 बजे से चामुंडा माता चौराहा की ओर कई दिशाओं में वाहन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने आम जन से चल समारोह मार्ग पर वाहन लेकर नहीं आने और

आधारित डायवर्शन मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। तो आज बप्पा की विदाई के इस पावन अवसर पर व्यवस्था में सहयोग कीजिए और साथ ही भक्तिभाव से बप्पा को विदा कीजिए। चलिए सुनते हैं उज्जैन दर्शन कार्यक्रम का पहला गीत।

गणपति बप्पा की विदाई के साथ आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन के लिए शिप्रा के घाटों और निर्धारित विसर्जन स्थलों तक पहुंचेंगे। श्रद्धा के इस अवसर पर सुरक्षा सबसे जरूरी है। जिला प्रशासन और होमगार्ड विभाग ने भी घाटों पर व्यापक इंतजाम किए हैं। रामघाट, भूखी माता, केडी पैलेस, त्रिवेणी, हीरा मिल की चाल सहित प्रमुख घाटों पर होमगार्ड और SDRF के करीब 150 जवान आपदा उपकरणों के साथ तैनात रहेंगे। जवान लगातार निगरानी करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रेस्क्यू कार्रवाई करेंगे। इसका एक उदाहरण कल रामघाट पर भी देखने को मिला, जब विदिशा से आए एक श्रद्धालु के गहरे पानी में चले जाने पर राहुल परिहार ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। उनके साहस के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर करें, गहरे पानी या अनाधिकृत स्थानों पर न जाएं और घाटों पर तैनात सुरक्षा जवानों के निर्देशों का पालन करें। भक्ति में सावधानी जुड़ जाए तो उत्सव और भी मंगलमय बन जाता है। तो चलिए गजानंद गणपति को प्रणाम करते हैं और उन्हीं को समर्पित करते हैं उज्जैन दर्शन कार्यक्रम का अगला भजन।

0: हे मनु भाई मोटर चली पाम पाम पाम
1: मनु भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी।
0: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम।
4: श्रोताओं, बप्पा की विदाई श्रद्धा और भावनाओं से भरा क्षण है, लेकिन इस भावुक अवसर पर हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण। उज्जैन में इस बार गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन और नगर निगम ने विशेष व्यवस्था की है। शहर के जल स्रोतों और घाटों पर प्रतिमाओं का सीधे विसर्जन नहीं किया जाएगा। श्रद्धालु पूजन और आरती के बाद प्रतिमाओं को निर्धारित एकत्रीकरण केंद्रों पर सौंप सकेंगे। रामघाट, नरसिंहघाट, गोघाट, गढ़ाघाट, मंगलनाथ क्षेत्र, हीरामिल कुंड सहित 10 से अधिक स्थानों पर प्रतिमा एकत्र करने की व्यवस्था रहेगी। यहां से नगर निगम के वाहन प्रतिमाओं को केडी पैलेस स्थित निर्धारित विसर्जन स्थल तक पहुंचाएंगे। हीरामिल कुंड की सफाई भी की गई है, लेकिन वहां पर कमर तक पानी होने के कारण बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन वहां नहीं किया जाएगा। श्रद्धालुओं के पूजन और आरती के लिए टेंट शामियाने भी लगाए गए हैं, इसलिए आज बप्पा को विदा करते समय प्रशासन की व्यवस्था में सहयोग करें, प्रतिमा निर्धारित केंद्र पर ही सौंपें और नदी के गहरे पानी में जाने से बचें। यही श्रद्धा है, यही जिम्मेदारी है। तो चलिए बप्पा को नमन करते हुए सुनते हैं अगला भजन।

और अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जब आंखों में श्रद्धा होगी, मन में भावनाएं होंगी और होठों पर एक ही विश्वास कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। बप्पा का आगमन कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन उनके साथ जुड़ी भक्ति, आनंद और सकारात्मकता हमारे भीतर बहुत कुछ छोड़ जाती है। विसर्जन का अर्थ विदाई जरूर है, लेकिन ये अंत नहीं, ये एक सुंदर विश्वास है कि आया है वो फिर जाएगा। मिट्टी से बनी प्रतिमा हमें यही याद दिलाती है कि जीवन भी प्रकृति से जुड़ा है और अंततः उसी प्रकृति में विलीन होना है। इसलिए आज बप्पा को विदा करते हुए केवल उत्सव की स्मृतियां साथ न ले जाएं, बल्कि उनके आशीर्वाद के रूप में सद्बुद्धि, विनम्रता, सेवा, संयम और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी अपने साथ जीवन में उतारें। बप्पा से प्रार्थना है, हर घर में खुशी हो, हर घर में शांति रहे, हर परिवार स्वस्थ रहे, बच्चों के सपने पूरे हों, युवाओं को सही दिशा मिले और हमारे शहर, हमारी क्षिप्रा और हमारी प्रकृति हमेशा निर्मल रहे। बप्पा आज विदा हो रहे हैं, मगर दिल से नहीं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।

इसके साथ उज्जैन दर्शन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब समय है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का।

नमस्कार सखियों, मैं काजल जाटव आपकी प्यारी सखी आकाशवाणी उज्जैन के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सखियों, आज अनंत चतुर्दशी है। 10 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा की सेवा करने के बाद आज उन्हें विदाई देने का दिन है। मन थोड़ा भारी है, आंखें थोड़ी सी नम है, लेकिन चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान भी है, क्योंकि हमारे मन में विश्वास है कि बप्पा की विदाई के साथ हमारे जीवन के विघ्न और कलेश दूर हों और हमारे घर आंगन में सुख समृद्धि बनी रहे। चारों तरफ ढोल ताशों की गूंज है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू।

हल्दिया के जयकारे हैं और माहौल हर्षोल्लास से सराबोर है। ऐसे पावन अवसर पर विसर्जन के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी निर्देशों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं उज्जैन CSP श्वेता गुप्ता जी। और सखियों, आज की इस विशेष तारीख से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है। आज 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी मनाया जा रहा है। फार्मासिस्ट दवाइयों के सही उपयोग और स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो क्यों ना आज बप्पा के आशीर्वाद के साथ साथ फार्मासिस्टों के इस महत्वपूर्ण योगदान को भी याद करें और उनका आभार व्यक्त करें। तो चलिए, आस्था, पर्यावरण सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं इस सुंदर गीत के साथ।

0: मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिमाएं शहर के विभिन्न मार्गों से चल समारोह के रूप में निकलती हैं, जिसमें झांकियां भी होती हैं, अखाड़े भी होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जन सामान्य इसको देखने के लिए, गणपति जी की प्रतिमाओं को देखने के लिए, अखाड़ों को देखने के लिए, झांकियों को देखने के लिए आते हैं।
1: जी
0: ऐसे में पुलिस व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। पुलिस के द्वारा जो मुख्य जुलूस मार्ग है अपना, जो चामुंडा माता से होके दौलतगंज, दौलतगंज से नई सड़क होते हुए
1: जी
0: राम घाट तक जो जाता है, उस पे ट्रैफिक की व्यवस्था की जाती है और बाहरी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
1: जी
0: जैसे अपना इंदौर गेट चौराया हो गया है, हरी फाटक ब्रिज हो गया है, 0 पॉइंट ब्रिज हो गया है, इस तरफ से पूरी बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है। और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए RAF की टीम होती है, QRF की टीम होती है, रिजर्व पार्टी होती है जो संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहती है अनंत चतुर्दशी के अवसर पर। जब तक प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन नहीं हो जाता है, तब तक वो उन क्षेत्रों में तैनात रहती है और वहाँ की सुरक्षा और शांति बहाल रखती है।
1: जी बिल्कुल मैम। अच्छा, विसर्जन के अवसर पर कानून व्यवस्था है और महिला सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? विसर्जन घाटों और मुख्य चौराहों पर कितना पुलिस बल या महिला बल हम कह सकते हैं ये तैनात रहेगा? क्या CCTV और ड्रोन की कोई व्यवस्था की गई है?
0: हाँ, पुलिस के द्वारा विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था के लिए लगभग 350 से 400 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाती है
1: जी
0: और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक नई पहल भी की गई है। जब से गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ है तब से लेके गणपति जी के विसर्जन तक, एक एक व्यक्ति लाइजनिंग अधिकारी के रूप में प्रत्येक बड़ी गणपति प्रतिमाओं के साथ में लगाया गया है,
1: जी
0: जिसकी ड्यूटी ये थी कि कब गणपति जी की स्थापना हो रही है, आयोजक समिति से सामंजस्य स्थापित करना है, कब गणपति जी की स्थापना हो रही है, पांडाल कितना बड़ा लगाया गया है, क्या वो यातायात को बाधित तो नहीं कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो लगाई गई है, अस्थायी कनेक्शन लिया गया है, वो सुरक्षित है अथवा नहीं है, आग लगने जैसी कोई घटना घटित होने जैसे चांसेस तो नहीं है, ये सब पूरा देखना उसकी जिम्मेदारी थी। फिर पूरा जो 7 दिन का 8 दिन का हमारा त्योहार चलता है, उस दौरान प्रत्येक दिन रात में जाके देखना कि वो सुरक्षित हैं, दो वॉलंटियर वहाँ पे सो रहे हैं अथवा नहीं सो रहे हैं, ये सब देखने की जिम्मेदारी उसकी थी। अब चूंकि विसर्जन का समय आ गया है तो उस दौरान उसका उद्देश्य, उसकी ड्यूटी ये है कि वो आयोजकों से इस संबंध में चर्चा करे, जो प्रशासन के द्वारा विसर्जन स्थल निर्धारित किए गए हैं वहीं पर गणपति जी का विसर्जन हो, समय सीमा का पालन हो। यदि कुछ गणपति जी का ऐसा होता है कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विसर्जित ना करके 1 दिन बाद 2 दिन बाद विसर्जन कुछ आयोजकों द्वारा किया जाता है, तो उस दौरान उस लाइजिंग अधिकारी की ड्यूटी होती है कि तब तक वहां पर पुलिस व्यवस्था लगी रहे जो उस गणपति जी की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये एक नई पहल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उज्जैन शहर में प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही जो प्रमुख घाट हैं जहाँ पे प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, जैसे हमारा KD पैलेस हो गया, सिद्धवट घाट हो गया, राम
1: जी
0: घाट
1: जी
0: हो
1: जी
0: गया, दत्त अखाड़ा हो गया, गऊ घाट हो गया, नया त्रिवेणी घाट हो गया, पुराना त्रिवेणी घाट हो गया, यहाँ पे लोकल थाने के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की जाती है। साथ में प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे लाइफिंग की व्यवस्था की गई है और वॉलंटियर्स की व्यवस्था भी की गई है, SDRF की टीम लगाई गई है, लोकल गोताखोरों की टीम भी वहाँ पे लगाई गई है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की गई है। शासन के द्वारा जो सिद्धवट हमारा मेन स्थान है
1: जी
0: जहाँ पे गणपति जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, वहाँ पे पूर्ण व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो अन्य घाट है जहाँ पे भी आमजन जाके गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं, तो वहाँ पे लोकल पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए,
1: जी मतलब पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है।
0: पूरी तरीके से तैयार है और सब दूर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
1: जी
0: इसके साथ ही जो हमारा जो मेन जुलूस निकलता है गणपति प्रतिमाओं का, वहाँ पे CCTV सभी दूर लगवाए गए
1: लगवाए
0: हैं
1: गए
0: और ड्रोन की व्यवस्था भी पुलिस के द्वारा की गई है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति यदि निर्मित होती है, कोई भी घटना घटित होती है, शरारती तत्व द्वारा किसी तरीके की घटना घटित की जाएगी,
1: जी
0: तो तत्काल उसकी ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और हमारी पुलिस के द्वारा उसको
1: बिल्कुल।
0: बुलाया।
1: अच्छा, एक चीज देखने में आती है कि अब जैसे कोई भी त्योहार है तो DJ साउंड वगैरह की बहुत एकदम मतलब लोग एकदम हर्षोल्लास में आ जाते हैं, तो इस पर कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?
0: बिल्कुल, DJ साउंड को लेके पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस में तय की गई है,
1: जी
0: इसका पालन करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है, यदि आप नहीं करते हैं तो आपके प्रति कानूनी कार्रवाई उसमें की जाती है। साथ में उसमें उसी गाइडेंस में है कि रात के 10 बजे तक आप DJ साउंड का
1: हाँ
0: इस्तेमाल कर सकते हो और
1: जी
0: एक निश्चित समय सीमा, एक फेस्टिवल का निर्धारण उसमें किया गया है, उसी सीमा का पालन करते हुए सभी को DJ का प्रयोग प्रयोग करने की अनुमति दी
1: जी, मतलब साउंड जो है वो एक निर्धारित
0: सीमा में ही बजाया जाएगा और उसकी भी समय डेसिबल निर्धारण किया है,
1: डेसिबल ओके,
0: और उससे बाहर यदि आप जाते हैं तो आपके ग्रुप में

0: नहीं कर रही
1: कानून
0: कोई
1: इसके द्वारा
0: परेशानी।
1: की जी। अच्छा, जलाशय जो है, हमारी नदियां जो हैं, तालाब हैं, इनकी स्वच्छता को लेकर कोई प्रबंध किए गए हैं? विसर्जन समाप्त होने के तुरंत बाद नदियों और घाटों की सफाई के लिए नगर निगम या निकायों के कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है?
0: बिल्कुल फाजल, जैसा कि आप जानती हैं कि सफाई को लेके उज्जैन शहर काफी अलर्ट है, और
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: का नगर
1: बिल्कुल
0: निगम
1: बिल्कुल
0: के सफाई कर्मियों की तो जितनी प्रशंसा की जाए, तक कम
1: जी
0: है कि अभी
1: बिल्कुल।
0: सवारी के दौरान भी आपने देखा होगा,
1: हाँ,
0: सवारी जैसी निकली हो पीछे पीछे उन्होंने
1: पीछे
0: पूरी
1: पीछे
0: रूट
1: पूरा
0: क्लियर
1: साफ
0: कर दिया
1: करते
0: है।
1: चले गए।
0: सेम इसी रूप में नगर निगम के द्वारा जलाशयों की सफाई की व्यवस्था भी की गई है।
1: जी
0: जैसे ही विसर्जन कंप्लीट होगा, नगर निगम की टीम प्रत्येक घाट पर तैनात है, और जो प्रतिमाओं के साथ में जो निर्माल्य आता है उसको वो जलाशयों में बहाने नहीं देंगे, और उसको इकट्ठा करके उनके द्वारा ट्रक वगैरह गाड़ियां लगाई गई हैं जिसमें वो एकत्रित करके
1: जी,
0: उसका निस्तारण करेंगे।
1: ये स्वच्छता को देखते हुए ये
0: बिल्कुल
1: बहुत बड़ा
0: बिल्कुल
1: इनिशिएटिव है। आप शहर के नागरिकों, समितियों और श्रद्धालुओं से शांतिपूर्वक विसर्जन के लिए क्या अपील करना
0: मैं
1: चाहेंगे?
0: सभी शहर के नागरिकों से, श्रद्धालुओं से अपील करती हूँ कि विसर्जन के दौरान झांकियों को देखने के लिए जब आते हैं तो शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरीके की अफवाह वगैरह पर कोई ध्यान ना दें, या किसी तरीके की कोई सूचना उनको प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। साथ ही जो आयोजक समितियां हैं उनसे अपील करती हूँ कि समय सीमा का ध्यान रखें, जो निर्धारित स्थान प्रशासन के द्वारा विसर्जन के लिए तय किए गए हैं
1: जी
0: वहीं पर अपनी प्रतिमाओं का विसर्जन करें, बच्चों को अपने साथ लेके नहीं जाएं,
1: जी
0: और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। जो गणपति जी के साथ में हम लोग सामान लेकर आते हैं, उनकी साज सज्जा
1: हाँ
0: का जो
1: जी जी
0: सामान होता है उसको हम जलाशयों में प्रवाहित ना करते हुए पास ही में नगर निगम की टीम हमारी तैनात रहती है, उसको हैंड ओवर कर दें, वो उसका उसे उचित रूप से निस्तारण कर देंगे,
1: जी
0: और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो निर्देश आयोजक समितियों को दिए गए हैं तो उसका पूर्णता पालन करें। घाटों पे जो हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है, जुलूस में भी हमारे द्वारा काफी संख्या में महिला पुलिस फोर्स की
1: जी
0: तैनाती की गई
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: और महिलाओं से भी अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, आप कोई महत्वपूर्ण अमूल्य चीज अपने साथ लेकर ना
1: जी
0: आए जुलूस के दौरान। और SDRF की टीम भी, स्थानीय गोताखोर भी हमारे सभी जगह पे हैं, फिर भी मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि बच्चों को लेके नदी में ना उतरें।
1: जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप हमारे साथ जुड़ी, हमें इतना समय दिया, से सुनकर जो हम महिलाएं हैं या जो हमारे उज्जैन के नागरिक हैं वो काफ़ी रूप से प्रेरित हुए होंगे। और इसी के साथ हम आज की जो चर्चा है हम यही विराम देते हैं।
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत
0: करते हैं।
1: धन्यवाद। थैंक यू।
2: सखियों, अभी आपने सुनी CSP श्वेता गुप्ता जी से हमारी चर्चा। कार्यक्रम की अगली कड़ी से पहले आइए डूब जाते हैं भक्ति से भरे इस गीत में।

सखियों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत का कथानक भगवान गणेश को सुनाया तो गणेश जी ने लगातार कई दिनों तक उसका लेखन किया। लोक कथा में वर्णन मिलता है कि लगातार लेखन के कारण उनके शरीर में गर्मी बढ़ गई थी, तब वेद व्यास जी ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए जल में स्नान कराया। यह कथा अनंत चतुर्दशी के दिन होने वाले गणेश विसर्जन की परंपरा से भी जोड़कर देखी जाती है। और सखियों, कितनी सुंदर बात है ना कि आज 25 सितंबर को जब हम बप्पा की विदाई का यह पावन अवसर मना रहे हैं, ठीक आज ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी है। इस वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम है एम्पावरिंग फार्मासिस्ट फॉर हेल्दियर फ्यूचर्स, यानी बेहतर स्वास्थ्य भविष्य के लिए फार्मासिस्टों को सशक्त बनाना। जैसे इस पौराणिक कथा में वेद व्यास जी ने बप्पा को शीतलता दी, वैसे ही आज हमारे फार्मासिस्ट भी दवाइयों के सही इस्तेमाल और निर्धारित खुराक से जुड़ी जानकारी देने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों के सही उपयोग, सावधानियों और निर्धारित खुराक के बारे में जानकारी देने के साथ साथ कठिन स्वास्थ्य परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं देने वाले फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण साथी हैं। तो सखियों, आज बप्पा से सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना करते हुए आइए अपने शहर और अपने आसपास के सभी फार्मासिस्ट साथियों के योगदान को भी याद करें और उन्हें धन्यवाद दें। आइए अब बप्पा के जयकारों के साथ इस पावन पर्व के उल्लास को आगे बढ़ाते हैं।

सखियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पर्व और त्यौहार धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश भी देते हैं। 10 दिनों तक श्रद्धा से पूजे गए गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन जल में किया जाता है। ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि हमारी भक्ति और उल्लास से हमारी नदियों, तालाबों या अन्य जल स्रोतों को कोई नुकसान पहुँचना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जल हमारे जीवन का आधार है और जल का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सखियों, पीओपी और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों के विसर्जन से जल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और जलीय पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो फिर आस्था के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा कैसे हो? प्रतिमा विसर्जन का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? आइए कुछ आसान और उपयोगी तरीकों के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है इको फ्रेंडली और मिट्टी की प्रतिमाएं। सखियों, प्राकृतिक मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाओं को प्राथमिकता दें। इससे विसर्जन के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा है घर पर या स्थानीय निर्देशों के अनुसार विसर्जन। मिट्टी की छोटी प्रतिमा का घर पर बाल्टी या टब में विसर्जन किया जा सकता है। विसर्जन के बाद मिट्टी और जल का उपयोग स्थानीय व्यवस्था और पौधों की जरूरत के अनुसार किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार निर्धारित विसर्जन स्थल या कुंड का उपयोग करें। पीओपी या रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों को सीधे नदी के मुख्य प्रवाह में डालने से बचें। विसर्जन के समय मूर्तियों के साथ चढ़ाए गए फूल, पत्री, मालाएं और प्लास्टिक के थैले पानी में बिल्कुल ना बहाएं। इन्हें निर्धारित निर्माल्य पात्र या स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए गए स्थान पर ही डालें। फूलों और पत्तियों को एकत्र कर स्थानीय व्यवस्था के अनुसार कंपोस्टिंग या जैविक कचरा प्रबंधन में दिया जा सकता है। सखियों, हमारी नदियाँ और हमारे स्थानीय जल स्रोत हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जल संरक्षण और जल स्वच्छता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए संकल्प लें कि हम आस्था का उत्सव पूरे उल्लास से मनाएंगे, लेकिन साथ ही पर्यावरण और अपने जल स्रोतों की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखेंगे। सखियों, विसर्जन की इस पावन घड़ी में मन भले ही थोड़ा भावुक है, लेकिन दिल में यह विश्वास है कि बप्पा की विदाई के साथ हमारे जीवन से विघ्न और कलेश दूर होंगे और हमारे घर आंगन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना बनी रहे। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। बप्पा को नमन करते हुए अपनी सखी काजल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। अब हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। लीजिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणपति स्तुति से।

पृथ्वी गंधर्व की आवाज में विक्की नागर की रचना और सुदीप बैनर्जी की बनाई धुन पर अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग।

0: मिला तू इस एल्बम का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार अपूर्व थे।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
6: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिंदगी की जुबान। इस एल्बम का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, संदीप गुप्ते ने इसे लिखा है, महेश खानोलकर ने इसे संगीतबद्ध किया है और आवाज है पद्मश्री पद्मजा फैनानी जोगलेकर की।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। द मॉर्निंग सन इस एल्बम से अब आपको गजल सुनवाते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गजल के रचनाकार हैं रविंद्र जैन और धुन भी रविंद्र जैन की।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की ही आवाज में, तेरी में प्रेम दीवानी, इस एल्बम से। गीत और संगीत ललित का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेश,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
6: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
6: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
6: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग, और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। खिलेश शर्मा ने इस गीत की रचना की है, संदेश सांडिल्य ने धुन बनाई है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

चित्रा सिंह की गाई गजल। सुदर्शन फकीर का लिखा गीत।

0: द लेटेस्ट जगजीत सिंह और चित्रा सिंह गजल एल्बम से ये गजल आपको चित्रा सिंह की आवाज में हमने सुनवाई। गीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, सुदर्शन फाकिर।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
0: तन्हा दिल इस एल्बम का गीत, आवाज शान की, राम संपत का संगीत।

रंग तरंग की आखिरी प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं। इब्राहिम अश्क की रचना, अली घनी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। हंसराज हंस की आवाज है। एल्बम का नाम झांझरिया।

अली गनी का संगीत पर किया गीत हमने आपको सुनवाया हंसराज हंस की आवाज में झांझरिया एल्बम से, और ये गीत बना कार्यक्रम रंग तरंग की आखिरी प्रस्तुति। इसी के साथ दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: तरंग। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाली है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: योजना से जब किसी की जिंदगी बदल जाती, किसी के जीवन में एक नई जिंदगी आ जाती है, तो कितना संतोष मिलता है ये आपने अनुभव किया होगा। और इसलिए सेवा यात्रियों के लिए ये भी एक प्रशिक्षण है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ पैसे खर्च करना, राजनीतिक माइलेज कमाना इतना नहीं होता है। अगर वो योजना आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसके लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है और उसका जो संतोष है वो बड़ा अद्भुत होता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस साखना के साथ बैठक में यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभाव तथा बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली में परियोजना के शुभारंभ पर श्री यादव ने कहा कि इससे राज्य वन संस्थानों में नई सुविधाएं विकसित करने और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में कल रात मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री तमांग ने स्थानीय अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मछुआरों को आज समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर दोनों निशानेबाजों को बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले मुक्केबाज सचिन सेवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब 19 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत 100 डेज फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। दिलीप ताहिर का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम की पुण्यतिथि पर हम यादों की महफिल कार्यक्रम में उन्हें याद कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं के गाए गीत। अगला गीत हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है, नौशाद ने संगीतबद्ध किया है, गाया है एसपी बालसुब्रमण्यम ने। तेरी पायल मेरे गीत फिल्म का नाम।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम को। रोजा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में पी के मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और ए आर रहमान ने संगीत पर किया है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
6: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। एसपी बालसुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अगला गीत समीर के बोल, आनंद मिलिन का संगीत, फिल्म का नाम प्रेम कैदी।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे है।
0: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: 10, 9, 8, 7
2: हम आपके हैं कौन, ये है फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाजें।
3: 2, 1 लेट्स स्टार्ट द फन।
2: रविंदर रावल का लिखा गीत है, राम लक्ष्मण का संगीत।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
4: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
3: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
5: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
3: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस वक्त साजन फिल्म का गीत, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

पत्थर के फूल फिल्म से गीत अभी हमने आपको सुनवाया। अगला गीत सुनवा रहे हैं हमसे है मुकाबला फिल्म से। पीके मिश्रा के का लिखा गीत है, या रहमान का संगीत है और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज, साथ ही पल्लवी और उदित नारायण ने साथ दिया है।

एसपी बालसुब्रमण्यम, पल्लवी और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीके मिश्रा ने इसे लिखा था, एआर रहमान का संगीत था। हमसे है मुकाबला, ये था फिल्म का नाम। अब है कार्यक्रम का आखिरी गीत, मैंने प्यार किया। इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, राम लक्ष्मण का संगीत।

0: इसी गीत के साथ यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम को याद करते हुए उन्हीं के गीत सुनाए कार्यक्रम यादों की महफिल में।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में।

तो श्रोताओं, आज हम 25 सितंबर को बात करने जा रहे हैं अभिनेता और निर्देशक फिरोज खान के बारे में, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। उन्हें याद करते हुए, इन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं और हम उन्हीं फिल्मों में से कुछ गीत चुनकर ले आए हैं आपके लिए कार्यक्रम सुरीला सफर में।

कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे पर नजर नहीं आते, पर्दे पर आते ही अपना एक अलग माहौल बना देते हैं। फिरोज खान भी कुछ ऐसे ही कलाकार थे। उनका अंदाज, उनका पहनावा, उनका आत्मविश्वास और उनकी वो खास स्क्रीन प्रेजेंस, जैसे कैमरा उन पर ठहरना चाहता हो। उन्हें देखकर शायद उस दौर के दर्शक यही सोचते होंगे, ये शख्स सिर्फ किरदार निभाने नहीं आया है, अपना अंदाज छोड़ने आया है। अभिनेता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, तो निर्देशक और निर्माता के रूप में भी उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं हम सभी को। आप बताइए उनके बारे में, आपने उन्हें जब पर्दे पर देखा तो आपने क्या महसूस किया?

हमारी आज की इबारत तो आपने हमारी विविध भारती के फेसबुक पेज पर पढ़ ही ली होगी, लेकिन फिर भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारी इबारत और टेक्स्ट। सुंदर लगती हो शायद इसीलिए नहीं कि सूरत इतनी हसीन है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी चाहत भरी निगाहों में एक अलग अंदाज है। प्यार से प्यारे हो तुम, जब तुम ये कहती हो तो लगता है जैसे प्यार ने खुद कोई खूबसूरत नाम रख लिया हो। प्यार कहाँ किस्मत में होता है हर किसी के, ये तो बस एक खूबसूरत एहसास है जो किसी खुशनसीब दिल को मिला करता है। जब वफा साथ हो तो वही जिंदगी की सौगात बन जाती है। तुम्हारी शरारत से चेहरा चमकने लगा है, जवानी के दो दिन हैं, इन्हें यूं ही मुस्कुराने दो। चाहत भरी निगाहों से यूं ही देखते रहो तो शायद ये चमक और भी बढ़ जाएगी। देखो रंग लाई है संगत तुम्हारी, जैसे खिली हो कोई कली गुलजार की, और पहली ही मुलाकात के बाद ऐसा लगा जैसे ये यारानी हो सदियों पुरानी। तो फिर बताओ प्यार आखिर है क्या, क्यों नहीं मिलता आखिर प्यार हर किसी को, क्यों है जरूरी प्यार जिंदगी के लिए।

जी हाँ श्रोताओ, ये हमारा जो प्रश्न है इसके बारे में आप ही को बताना है कि क्यों नहीं मिलता प्यार सभी को जिंदगी में। भेज दीजिए आपके कमेंट्स, हमें इंतजार है आपके संदेशों का। और ये बताइए कि अब जो गीत सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, किनकी आवाजें हैं इस गीत में और फिल्म का नाम भी आप बताएंगे। और ये भी बता दीजिए कि जो पूछा जा रहा है ना इस गीत में कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बताइए, लिख भीजिए अपने जवाब।

0: धर्मात्मा फिल्म का गीत है, लेकिन आगे आपको बताना है कि किनकी आवाजें हैं।
1: तुमने किसी से कभी प्यार

जी हाँ, हमारे सभी श्रोताओं के कमेंट्स आ गए हैं। हमने जो पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और किन्होंने गाया है, सभी ने सही जवाब दिया है। धर्मात्मा फिल्म का गीत है, मुकेश और कंचन की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मैं फिरोज खान साहब को स्टाइलिश आइकन कहूंगा। ये हमारे एक श्रोता का कहना है कि उनकी मस्त चाल, संवाद बोलने का दिलकश अंदाज, काउबॉय की इमेज वाले फिरोज खान साहब की क्या कहने। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान जी की अभिनय क्षमता बड़ी गहरी है, रोमांटिक, गंभीर, कॉमेडी, स्टाइलिश, सभी कुछ उसकी उनकी फिल्मों में पाया जाता है। उनको शत-शत नमन। बिल्कुल। एक और श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान हिंदी सिनेमा के ऐसे बहुमुखी कलाकार थे जिनका व्यक्तित्व उनकी फिल्मों की तरह ही बेहद आकर्षक और प्रभावशाली था। उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, आत्मविश्वास, दमदार आवाज और अनोखी शैली ने उन्हें अपने दौर का विशिष्ट अभिनेता बनाया। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्देशक और निर्माता भी थे। अपने आधुनिक अंदाज, बेबाक व्यक्तित्व और फैशन के प्रति खास पसंद के कारण वे लंबे समय तक दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। फिरोज खान ने अपने काम और व्यक्तित्व से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई जिसे आज भी याद किया जाता है। हमारे एक श्रोता हैं जो हमें हमारे द्वारा बजाई गई धुनों को जो हम साथ साथ बजाकर आपको सुनवाते हैं उसके बारे में हमें जानकारी भेजी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि बहुत ही प्यारे लगे फिरोज खान। साथ ही वो कह रही है कि प्यार कोई सोच समझकर किया हुआ फैसला नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। कभी किसी की एक मुस्कान से, कभी उसकी बातों से, उसकी प्यारी सी आवाज से, उसके भोलेपन से, उसकी सादगी से, और कभी किसी बिना किसी वजह के भी कोई दिल के करीब आ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब

कोई अजनबी से अपना बन गए। आज तो लोगों की एक ही पसंद दिख रही है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। फिल्म धर्मात्मा का ये गीत, जी हाँ, और ये हमने सुनवा दिया है। हमारे कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति थी ये गीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज यादों की महफिल प्रोग्राम बढ़िया गीतों से सजा था। सुरीला सफर में ऐसे गाने सुनने की चर्चा तथा सवाल जवाब की अपेक्षा करते हैं। आप सुनिए आगे ये गीत जो आज हमने शामिल किए हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। आनंद लीजिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते दिल बाग बाग हो गया। ऐसे खूबसूरत एहसास कभी जगाने के लिए मूड बनाना पड़ता था। आज शब्दों का ऐसा तिलिस्म देखने को मिला कि पढ़ते पढ़ते हम बुढ़ापा पीछे छोड़ जवान हो गए। क्या बात है। अब ढूंढते हैं प्यार को, देखिए कहाँ मिलता है। आज तो गीतों की बहार होगी, उसी में दिल बहलाते हैं और एक अच्छी दोपहरी विविध भारती के संग बिताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको प्यार तो है ही विविध भारती के संग। और अब जो हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइएगा इस फिल्म का नाम।

सच्चा प्यार किसे कहते हैं ये भी साथ बताते चलिए। क्या आकर्षण भी सच्चा प्रेम दर्शा सकता है?

0: इस गीत की फिल्म का नाम आपको बताना है, लेकिन इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत, ये हमने आपको बताया। और अब आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
0: तो श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। और इस कार्यक्रम की ये खास बात है कि जो गीत हम चुनते हैं उससे ये कार्यक्रम बनता है सुरीला, लेकिन आपके संदेशों से बनता है सजीला। तो भेजते रहिए हमें आपके संदेश, हमें इंतजार है बेसब्री से आपके संदेशों का। अभी हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार में पढ़ना एक अतार्किक रोमांच है, एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी सामान्य और तर्क संगत दुनिया में अलौकिक मानने के लिए प्रलोभित होते हैं। प्यार की भावना व्यक्ति के अस्तित्व की अनुभूति को जीवन के सभी पहलुओं में एक सर्वोच्च आनंद की अनुभूति से भर देती है। उन्होंने एक बड़ा ही प्रयास से बहुत बड़ा संदेश हमें भेजा है, विस्तार में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, फिर भी आपका संदेश हमने शामिल किया है कार्यक्रम में। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार तो कब, क्यों, कहां और किससे हो जाए पता ही नहीं चलता। माना कि किसी को देखा और वो दिल में उतर गया और प्यार हो गया, पर प्यार जब चेहरे पे झलकता है तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसकी एक नजर मिल जाए इतनी फरियाद, चाहत सचमुच निगाहों का ही खेल है। उनकी निगाह पड़े तो दिल खुश, न पड़े तो अपनी निगाहें उदास। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की यादों की महफिल सजी हुई है, यानी कि वो सुन रहे थे तब उन्होंने ये संदेश हमें भेजा। मेरा बहुत ही पसंदीदा गायक SP बालसुब्रमण्यम, उनकी जयंती, उन्हें याद किया जा रहा है और सुपरहिट गीतों से सजा हुआ इन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। जी, बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि जिंदगी की राह में जब कोई हम सफर मिल जाता है तो खामोश धड़कनों को भी एक नया साज मिल जाता है। तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट लाती है बाहर।

हाँ, जब तुम देखते हो तो थम जाता है संसार। मोहब्बत तो वो पावन दुआ है जो भगवान से मिलवाती है। सच्ची चाहत ही दिलों के सारे फासले मिटाती है। भुलाकर शिकवे गिले थाम लो हाथ, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, वो गीत कार्यक्रम का पहला गीत नहीं था, वो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्यार सिर्फ खूबसूरत चेहरे और बातों से नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई से भी पहचाना जाता है। मन में जरा सा भी संदेह अगर उठ जाता है तो प्यार प्यार नहीं मिल पाता और खो जाता है मिलने की बजाय।

जी श्रोताओं, बताते चलिए कि जब किसी से प्यार हो जाता है और वो हमारा साथी बन जाता है, तो आप उसकी तारीफ में क्या कहना पसंद करते हैं? कब आपने आखिरी बार तारीफ की थी उसकी और कैसे, ये बताइए।

जी हाँ, एक और गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म धर्मात्मा से। आवाजें फिर से मुकेश और कंचन की थी, इंडीवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम अपने आप में निर्मलता, शुद्धता, करुणा और असीम आनंद को समेटे हुए है, और यह वह चुंबकीय खिंचाव है जो इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के कण कण को एक सूत्र में बांध कर रखता है। आज के आधुनिक और व्यवहारिक दौर में भले ही प्यार के मायने और उसकी अभिव्यक्ति

के तरीके बदल गए हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप आज भी वही है। प्यार का मतलब केवल किसी के ख्यालों में खोए रहना या पजेसिव होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के आत्मिक विकास में सहायक बनना है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। प्यार जीवन का वह खूबसूरत उपहार है जिसे जितना बिना किसी स्वाद के बांटा जाए, यह उतना ही गहरा और अनंत होता जाता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि आपने कब आखिरी बार अपने साथी की या जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तारीफ की थी, वो बताते चलिए। हालांकि खूबसूरती की तारीफ ना की जाए तो कैसे चलेगा? हर खूबसूरत चीज की, अंदाज की, व्यवहार की, बात की या किसी खूबसूरत इंसान की तारीफ तो कर ही देना चाहिए, खासकर जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी तारीफ में कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो बताइए, आपने कब की थी तारीफ उनकी जिन्हें आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हमारी एक श्रोता कहती हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जिंदगी में एक अलग ही नूर है। शायद इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सादगी दिल को छू जाती है। जब तुम अपनी उन मासूम नजरों से देखते हो तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। प्यार कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ऐसा पावन बंधन है जो दो सच्चे दिलों की धड़कन बन जाता है। जी हाँ, तुम्हारी इसी शरारत, जरा सी शरारत और वफा ने दिल को मुस्कुराना सिखा दिया। ऐसा लगता है मानो सदियों का कोई अधूरा ख्वाब आज तुम्हारे साथ मुकम्मल हो गया हो। बिल्कुल प्यार ऐसा ही एहसास दे जाता है। हमारे श्रोताओं ने हमें गीत भी लिखकर भेजे हैं, उनमें से कई गीत ऐसे हैं जो अभी तक जो बच चुके हैं वो भी शामिल हैं। आप आगे सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। और एक श्रोता कह रही है कि प्रेम का एहसास बड़ा सरल है, मगर तकदीर के नियम बड़े जटिल हैं। यह बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। कभी कभी लगता है प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियां भी कभी कभी बड़ी अराजक हो जाती हैं। वे किसी नियम को नहीं मानती और प्रेम टूट जाता है। इंसान इसी त्रिकोण में अपने अर्थ खोजता रहता है और प्रेम की यही खोज उसे इंसान बनाती है, एक सच्चा इंसान। बहुत खूब। अब आ रहा है अगला गीत। क्या आपने किया ऐसा किसी के लिए कि वो कहे दिन तो दिन रात तो रात? भेज दीजिए हमें अपनी यादें, अपने संदेश।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म सफर मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिरोज खान ये बता रहे हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो अपनी श्रीमती जी की तारीफ तो करता हूं और कहता हूं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, साथ ही साथ विविध भारती की तारीफ भी करता हूं। क्या बात है, ये तो बहुत जरूरी है, आखिर विविध भारती भी तो आपके जीवन का प्यारा साथी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि फिरोज खान सिर्फ अभिनेता नहीं थे बल्कि एक सफल फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और अपराध जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया। भव्य और बड़े बजट की फिल्में, उनकी फिल्मों में खूबसूरत लोकेशन, भव्य सेट, बेहतरीन गाड़ियां और शानदार संगीत उनकी पहचान थे। बिल्कुल एक श्रोता कहते हैं कि बहुत प्यारा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मुकेश ने गाया है। बिल्कुल एक श्रोता कह रही है प्यार में पसंद नापसंद का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए जबरदस्ती सब कुछ अपनाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होता है। जी हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। एक श्रोता कह रही हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे गीत बेहद लोकप्रिय गीत, भावुक गाना है, जिसे मुकेश ने अपनी जादुई आवाज दी है। जी हाँ, हमारे को श्रोता कह रहे हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, परंतु दोनों दिलों के बीच में ईमानदारी और विश्वास होना जरूरी है। प्यार जीवन में जरूरी है, तभी तो मैं अपनी धर्मपत्नी को यह गीत गाकर सुनाता हूँ। तेरी सूरत पर नहीं, मैं तेरी सादगी पे मरता हूँ। क्या बात है, तेरा साथ है तो इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। बहुत सुंदर। एक और श्रोता कह रहे हैं कि कंचन जो एक उभरती गायिका रही हैं, जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने शबाब पर था तभी उन्हें कुर्बानी, धर्मात्मा और कालिया जैसे फिल्मों में गाने का मौका मिला। कल्याण जी वीर जी शाह के भाई बाबला शाह के साथ उन्होंने कई लोकगीत गाए, चटनी गीत उनका खूब चला था। बाद में बाबला शाह से कंचन ने शादी कर ली। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि तारीफ की हमने उस परमात्मा की जिसने ये सुंदर और प्यारा सा संसार बनाया, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई। क्या बात है।

इकोश्रुता कह रही हैं कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता फिरोज खान अपनी विशिष्ट शैली, अनूठे अंदाज, डैशिंग पर्सनालिटी के लिए बॉलीवुड के पहले स्टाइल आइकन और काउबॉय के रूप में जाने जाते थे। फिरोज खान स्टाइलिश और ग्लैमरस

साल प्यार किया, एक साल बाद हमारी शादी हुई। अब हमारे हमारी शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं, हम आज तक प्यार कर रहे हैं। जी प्यार तो करते रहिए। सफर फिल्म का गीत हमने आपको सुनवा दिया था मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे जुड़ी यादें हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये है नागिन फिल्म का गीत। भाई हमने तो ये फिल्म बचपन में देखी थी और इसे देखने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप अपनी यादों के बारे में बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को देखकर सोचा था।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा अपनी श्रीमती जी की तारीफ करता रहता हूँ, खासकर आज जब जबलपुर में रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और विविध भारती पर बेहतरीन गीत बज रहे हैं। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, अदरक इलायची की चाय की डिमांड भी कर रहा हूँ। क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया था पर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद मैंने कभी प्यार किया नहीं, अरेंज मैरिज किया और उनसे ही प्यार किया। ये तो बहुत अच्छी बात है।

जी हाँ, तेरे मेरे याराने हो सदियों पुराने, जब प्रेम हो जाता है तो याराने कुछ ऐसे ही लगते हैं। फिल्म का नाम तो हमने आपको बता दिया था, बाकी जानकारी आप बता दीजिए कि किसने लिखा है इस गीत को, किसने संगीतबद्ध किया है। और हमने आपसे पूछा था, देखिए हमने तो बचपन में देखी थी फिल्म, तो हम बड़े छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। फिल्म का वो खौफनाक रोमांचक अंदाज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहली बार एक नागिन को हमने एक्ट्रेस या एक्टर के रूप में देखा था। तो ये तो हमारी बात थी, हमने आपके अनुभव पूछे हैं, आपने भेजे हमें संदेश, देख लेते हैं हम। फिलहाल हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं पर उसकी यादों से भी प्यार किया जाता है। मैं मोबाइल एप्लीकेशन से ओमान से सुन रहा हूँ। एक श्रोता हमारे फिलिपिन मनीला से सुन रहे हैं, और क्या बात है, हमारे कई श्रोता हैं जो देश के बाहर से भी हमें सुनते हैं विविध भारती को, और आनंद लेते हैं इन गीतों का। संदेश भेजने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक श्रोता कह रही है कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की, जी हाँ, एक श्रोता कह रहे हैं कि रही तारीफ करने की बात तो श्रीमती जी की करते हैं, लेकिन सुनने को यह मिलता है कि आप तो काम बताओ क्या है। जी कभी कभी तारीफ करने से ऐसा भी लग जाता है, संदेह हो जाता है ना कि कोई काम ही होगा जरूर। भाई बिना काम के भी प्यार जता देना चाहिए,

एक श्रोता कह रही है, क्या खूब लगती हो, हिंदी सिनेमा के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां धुनों में आत्मा और शब्दों में गहराई हुआ करती थी। इंदिवर ने प्रेम की मासूमियत और अमरता को सरल शब्दों में पिरोया है। सूरज होगा जब तक नील गगन में और प्यासे दिल को आज मिला है सागर जैसी पंक्तियां प्रेम के अटूट विश्वास और तृप्ति को दर्शाती है। यह कंचन के सबसे सफल गानों में से एक है। क्या बात है। एक श्रोता कह रही है, तब तारीफ मजबूरी हो जाती है, नहीं करने पर प्यार का नशा उतर जाता है। हमारी एक श्रोता हमसे साझा कर रही है कि क्या खूब लगती हो ये गीत हमने कैसेट में भी बहुत सुना और रेडियो पर भी बहुत। एक श्रोता कह रहे हैं कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत बच चुका है। जी बिल्कुल, बस आप आनंद लेते रहिए इस कार्यक्रम में। हमारे एक श्रोता का कहना है कि फिरोज खान साहब की बहुत शानदार फिल्म रही है और इस फिल्म का पूरा फिल्मांकन अफगानिस्तान में किया गया था। पूरी एक टीम एक महीने से ज्यादा वहां पे रही थी। जी धन्यवाद ये बात साझा करने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह क्या गलत फहमी है, दूसरा पहला और पहला दूसरा गीत क्या कहना चाहते हैं आप। एक श्रोता कहते हैं कि सांसें चलना जिंदगी की पहचान हो सकती है, पर उस जिंदगी में रंग और अर्थ भरने का काम प्यार ही करता है। प्यार इंसान को अकेलेपन के एहसास से बचाता है और हर मुश्किल मोड़ पर एक मुख संबल देता है। प्यार हमें सहानुभूति, दया और निस्वार्थ होना सिखाता है। बिल्कुल, बहुत खूब। तो श्रोताओं अब जो गीत आने जा रहा है, बताइएगा कि ये गीत गाया किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है, साथ ही फिल्म का नाम भी आप ही बताएंगे।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जी हाँ, अभी हमने आपको गीत सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि कौन सी फिल्म का गीत है, किसने संगीतबद्ध किया है, किसने लिखा है, और आपने जवाब भेजे हैं हमें बिल्कुल सही। ऊंचे लोग इस फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया था, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, चित्रगुप्त का संगीत। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्यार सूरत का सौदा नहीं, दो दिलों के बीच वो खामोश ठहराव है जिसमें किसी और की मुस्कान तुम्हारी अपनी लगने लगती है, और हर किसी को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सब उसे ढूंढते तो हैं, पर निभाने का हुनर, झुकने की नरमी और ठहर कर देखने की नज़र सबके पास नहीं होती, और जिंदगी में वो इसीलिए ज़रूरी है कि जिस्म तो रोटी कपड़े से चल जाता है पर रूह तब ही खिलती है जब कोई चाहत भरी निगाह से देखे, कोई वफा के साथ पास हो, वरना जिंदगी गुजर जाती है पर गुलजार नहीं होती। बहुत सुंदर बात आपने कही है और साथ ही आपने कुछ गाने भी लिख भेजे हैं। एक श्रोता ने कहा है, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं विविध भारती से, वो भी कई सालों से। जी, विविध भारती से तो आपका प्यार चलते ही रहना चाहिए।

एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे अपने समकालीन हीरोइनों में लोकप्रिय थे, यानी कि वो फिरोज खान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हीरोइनों ने अभी भी उनके बारे में ये कहा है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे बस दिल से महसूस किया जाता है। जहां दूरियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिल का जुड़ाव, एक दूसरे की फिक्र कभी कम नहीं होती। सच में खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा पवित्र और सच्चा प्यार नसीब होता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सच्चा प्यार तो झुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है। यहाँ सच्चे प्यार की ही सच्चाई बताई जा रही है, और यह सच्चा प्यार वैसे तो अनिर्वचनीय होते हुए मुख फल आस्वाद ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है कि किंतु यह प्यार त्याग और समर्पण के दृढ़ दीवार से न झुकते हुए अपने विनम्रता के हथियार से समस्त संसार के झंझावतों से लड़ने में समर्थ भी होता है। क्या बात है, हिंदी के शब्दों का सुंदर उपयोग आपने अपने संदेश में किया है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो होगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। बता दीजिए, हमने यही तो सवाल पूछा था आपसे हमारी इबारत के अंत में कि आखिर क्यों नहीं मिलता सभी को प्यार जिंदगी में। अब ये जो गीत सुनवा रहे हैं किसने गाया है ये बता दीजिए।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीला धड़कन कार्यक्रम में फिर से प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से यह बात सामने आती है कि आज सुप्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक फिरोज खान के फिल्मों की ही बात हुई है स्मृति दिवस पर। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, उन्हीं के गीत आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए।

कभी कभी दो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, साथ रहना भी अच्छा लगता है, बातचीत में मिठास भी होती है, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार जन्म नहीं लेता। शायद इसलिए हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी का मिल जाना नहीं, प्यार है किसी के साथ अपने मन की वो जगह बांट लेना जहां हम बिना किसी दिखावे के अपने सबसे सच्चे रूप में रह सकें। जी हाँ, तो आज आप सभी के संदेशों के लिए, सभी जानकारियों के लिए और हमसे अपनी यादों को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से अब इजाजत लेती हूँ मैं, पूजा नारायणिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, 14 सितंबर से गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ था और आज अनंत चतुर्दशी की तिथि है, यानी घरों में जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित थीं, सार्वजनिक स्थलों पर जो पंडाल लगे थे और गणेश प्रतिमाएं स्थापित थीं, उनके विसर्जन का आज दिन है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भक्ति और आस्था के साथ ये दिन हमने गुजारे। आज अनंत चतुर्दशी मनाते हुए आपको फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में दो गणेश स्तुति सुनवाने जा रहे हैं। पहली स्तुति फिल्म विरुद्ध से है और दूसरी फिल्म डॉन से।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के 12 साल पूरा होने पर कहा है कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और उत्पादन, निवेश और निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का मकसद ऐसा बुनियादी ढांचा, उद्यम और नवाचार तैयार करना है जिससे भारत विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़े। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। इस मौके पर 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को इस सेवा से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बसें चलाने का है और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने की योजना है। बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। 2024 में 31 अंकों के साथ प्रदेश 23वें स्थान पर था, जो अब बढ़कर 59 अंक हो गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन में भी 124% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल ईवी सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और प्रदेश में 1,780 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। अनंत चतुर्दशी पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का गणेश स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। जलाभिषेक और पंचामृत पूजन के बाद भस्म, चंदन, भांग और सुगंधित फूलों से बाबा का अलंकरण किया गया। परंपरा के अनुसार महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इधर भोपाल में श्री गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला तेज हो गया है। सुबह से ही लोग प्रतिमाएं लेकर अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं। शाम को विसर्जन जुलूसों के साथ घाटों पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। क्रेन और पोकलेन की मदद से प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जाएगा। वहीं नगर निगम 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर मूर्ति संग्रहण स्टॉल लगाएगा, जहाँ लोग पूजा के बाद प्रतिमाएं जमा कर सकेंगे। बात खेल की। भारत ने एशियन गेम्स में आज 2 मिनट के अंदर 2 मेडल अपने नाम किए। सुरुचि और कमलजीत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड जीता। इसके 2 मिनट बाद 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को सिल्वर मिला। नागोया में चल रहे गेम्स में यह भारत का दूसरा गोल्ड है, जबकि महिला क्रिकेट टीम इससे पहले पहला स्वर्ण दिला चुकी है। पुरुष और महिला कबड्डी टीमें फाइनल में पहुंच गई है। वहीं स्क्वाश और टेबल टेनिस में भी भारत के पदक पक्के हो चुके हैं। फिलहाल भारत 2 गोल्ड समेत 19 पदकों के साथ मेडल टैली में 12वें स्थान पर है। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय रहने से आधे प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी है। जबलपुर समेत 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में 28 सितंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर 1 दिवसीय जिले के प्रवास पर रहेंगी। नर्मदापुरम में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर पालिका ने हर्बल पार्क के पास एक विशाल कृत्रिम कुंड तैयार किया है। आगरमालवा के शासकीय नेहरू कॉलेज में कल वक्ताओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस और हिन्दी पखवाड़ा समारोह के तहत हिन्दी भाषा के महत्व और राष्ट्रीय सेवा योजना के समाज निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। रायसेन जिले के बरेली में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बड़नगर से

वाराणसी जा रही यात्रा के बरेली पहुंचने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और जबलपुर में वंदे भारत के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज शहर के 25 स्थानों पर सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र है, सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट।
3: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1919

0: 1947 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता। श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के चौथे संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
4: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में

0: मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
1: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
3: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
2: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
4: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिकड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर IBSA संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते।
5: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वक्त से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत बट इस गीत को किया है रवि ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
2: मिलिए जाने माने गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। ऊंचे लोग इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल चित्र गुप्त की बनाई थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।

0: या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में मजू सुल्तानपुरी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा ये गीत। फिल्म का नाम है वापस।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: पहली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम सबकी जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है, बस जरूरत है उस मौके को पहचानने की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। तो आइए आज की इस खूबसूरत मुलाकात में कुछ बातें दिल से करें जो दिल तक पहुँचे, कुछ अनुभव साझा करें और शायद उन बातों में से किसी की एक छोटी सी बात किसी दूसरे के दिन को बेहतर बना दे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ, आपकी आवाज और आपकी बातें इस कार्यक्रम को बनाती हैं खास। तो देखते हैं जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मध्य प्रदेश से अंजुम परवीन, मंदसौर जिले से।
0: अच्छा, तो अंजुम जी बताइए कुछ अपने बारे में, बताएंगे आप पहले?
1: बस हाउस वाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ, पेरेंट नर्स का कोर्स कर चुकी हूँ, हॉस्पिटल में सर्विस।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है परिवार में?
1: जी मम्मी है, बहन है।
0: ये बताइए कि आप मम्मी के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाती हैं कि नहीं, या फिर मम्मी गुस्सा करती हैं?
1: नहीं नहीं, मम्मी आटा गूंथती है तो रोटी बना देती हूँ, सब्जी मम्मी बनाती है, बर्तन वर्तन कर देती हूँ, कपड़े
0: ये चीज
1: रहती हूँ, तो
0: ये चीज तो होनी चाहिए।
1: सर्विस करती है तो फिर घर का काम करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, और क्या, थोड़ा बहुत हाथ बटाना भी चाहिए वैसे भी, है ना? मम्मी अगर घर का काम कर रही, कोई भी कर रहा हो, चाहे बहने भी कर रही हो या कोई भी कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत हम अगर हाथ बटा देते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाता है और लगता है मम्मी को, हाँ मेरी बेटी देखो मेरे काम में हाथ बटाती है। अच्छा बताइए, तो आप आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: जी फिल्म है उस्ताद ही उस्ताद से, और गाना है साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कट जाएंगे।
0: तो चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ जी मैडम।
0: आज कौन? हाँ जी, कौन सी सहेली से मेरी बात हो रही है पहले ये तो बताइए।
1: हाँ मैं मकवाना रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: अच्छा
1: इंदरपुरा गाँव से।
0: तो बताइए रमीला बेन जी कि आप क्या करती हैं?
1: अभी तो मैं घर पे हूँ, मगर अगली बार फोन लगा, बोला मेरे बेटे का बर्थडे है ना, तो मैं बोली गीत सुना।
0: अच्छा, तो आपके बेटे का बर्थडे आज। तो बहुत
1: हाँ।
0: बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी गुड विशेज हैं हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हैं आपके बेटे के लिए। तो रमीला बेन जी, जी बताइए।
1: बेटी का नाम है आरती जी।
0: हाँ अच्छा, आप ये बताइए कि आपके जो बेटी हैं और बेटे हैं, आपके काम में, आपके घर के काम में थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं कि नहीं?
1: अभी ये लड़की तो मेरी 30 साल की हुई, मगर मन बुद्धि चलती नहीं ऐसी है।
0: अच्छा,
1: और लड़का है ना, वो तो अभी शादी हो गई, लड़की है, सिटी में रहता है, बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: जॉब करती है लड़की की मम्मी।
0: अच्छा,
1: और वो लड़का दोनों।
0: ये बताइए कि आपको कौन सी फिल्म का और कौन सा गाना सुनना है?
1: मुझे दिल का क्या कसूर का, ये पार्टी का।
0: अच्छा, आपकी पसंदीदा हीरोइन का। तो चलिए,
1: हाँ
0: आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से बात कर रही हूँ, राधिका कुर्मी।
0: तो राधिका जी ये बताइए कि आप करती क्या है।
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: पढ़ाई करती हैं, कौन सी क्लास में अभी आप?
1: कक्षा 9th में।
0: 9th में, यानी कि आप अभी
1: जी
0: अभी 10th तक पहुंची नहीं है, तो 10th
1: जी
0: की
1: जी
0: तैयारी में है ना। तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है?
1: जी दीदी, मैं दीदी हम दिव्यांग है, तो दीदी हम लोग संगीत सीखते हैं, तो दीदी वो इसी की तैयारी चल रही है बस। दीदी हम लोग दीदी चित्रकूट में पढ़ते हैं, दीदी वो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी है हमारे गुरु,
0: अच्छा,
1: उन्हीं का एक विद्यालय है दीदी, कक्षा 12वीं तक, तो वहीं पे पढ़ते हैं दीदी हम लोग।
0: अच्छा तो संगीत के अलावा आपके पास और कौन कौन से विषय हैं?
1: हम लोगों को संगीत है, बाकी ये है तो हिंदी है, राजनीति विज्ञान है, विज्ञान है, पर मेन जो हम लोगों के सब्जेक्ट रहते हैं दीदी वहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे जिस चीज का मतलब जिन व्यक्ति का जिस चीज में रुचि होती है दीदी
0: हाँ ये
1: वही
0: तो है।
1: चीज सबसे ज्यादा सिखाते हैं दीदी।
0: अच्छा
1: दीदी सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी वेद भारती टीम को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी जी।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी
0: तो
1: दीदी,
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मूवी का नाम है दूध का काज,
0: और
1: और
0: गाना
1: गाने के बोल है बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, हम कठिना बनो, हम कर्नाटक चिकमंगलूर से।
0: अच्छा अच्छा,
1: सबसे भी सखी सहेली, हेलो सहेली, छाया गीत, वो सब सुनती हमें।
0: अच्छा, आपको किसी चीज से डर लगता है क्या? कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा?
1: नहीं डर लगता।
0: नहीं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी को छिपकली से लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता
1: है। नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं डरती मैं।
0: नहीं,
1: मुझसे भी नहीं डरती, छिपकली से भी नहीं डरती।
0: अरे वाह,
1: किसी से भी नहीं डरती सिवाय अल्लाह के।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: नहीं नहीं डरती, वो डरते ही, वो बहुत जने डरते हैं।
0: हाँ, क्योंकि कभी सफाई करते हैं ना घर में।
1: डरती
0: जी, है ना। तो बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, कौन से फिल्म का?
1: आप तो ऐसे मत है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
1: शुक्रिया हमारी फरमाइश,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मेरा नाम शिवाती, गांव गोसगढ़, जिला शामली, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं कुछ नहीं, घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: तो ये बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में?
1: जी परिवार में मम्मी, पापा, भैया, भाभी, एक भतीजा।
0: अरे वाह, भतीजे के साथ खेलती हैं आप?
1: हाँ जी, अभी तो स्कूल गया।
0: अच्छा, छोटा है कि थोड़ा बड़ा है? बहुत छोटा है कि बड़ा
1: नहीं,
0: है?
1: छोटा, अभी तो छोटा ही है।
0: अच्छा, तो खूब खेलती होंगी फिर तो, मजे आते होंगे ना
1: हाँ जी।
0: भतीजे के साथ में खेलने में। अच्छा ये बताइए, आप किसी चीज से आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता हो बहुत ज्यादा, एकदम चिल्ला पड़ती हो जिसको देख के?
1: छिपकली।
0: छिपकली।
1: हाँ जी,
0: सही बात है ना?
1: हाँ जी, पर भतीजा नहीं डरता है, छोटा सा है पर वो नहीं डरता,
0: हाँ, वो नहीं डरता। अच्छा, तो ये तो
1: वो
0: अच्छी
1: नहीं
0: बात है
1: डरता।
0: फिर तो। आप जब भी आपको डर लगे ना, तो छिपकली या कॉकरोच निकल आए, तो आप उसको बुला लीजिए, अपने भतीजे को कहिए कि पहले तुम इसको हटाओ फिर हम खेलेंगे।
1: जी वो तो अपने आप आ जाता है, झाड़ू लेके फिर खुद से मारते हैं कि अब बुआ जी आप कर लो। जी
0: अच्छा, तो
1: जी
0: बुआ जी ये बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: बेटा, फिल्म का गाना सुनना है, खुशियों का दिन आया है।
0: चलिए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, तारे
0: तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके शहर का नाम क्या है।
1: कैसे करे आपकी, हर लफ्ज में खुशबू आ रही गुलाब की।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। यानी आपको हमारी बातों में गुलाब की खुशबू आ गई है ना।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, पालदाना का, इंदौर से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीना जी। और ये बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं सिलाई करती हूँ मैडम, जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, हसीना जी आप ये बताइए कि आपको ऐसी कोई चीज है जिसे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो।
1: नहीं ऐसा तो कोई चीज नहीं मैडम जिससे डर लगे अपने को।
0: आपको
1: अगर
0: नहीं लगता
1: निडर
0: छिपकली
1: रहेंगे तो,
0: से?
1: अगर अपने सामने कभी खतरा भी आएगा, निडर रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। छिपकली
0: मेरा मतलब था आपको कभी छिपकली से, मेंढक से,
1: से तो बहुत डर लगता है मैडम, हर किसी को
0: यही
1: लगता
0: तो
1: है,
0: मैं
1: और
0: पूछना
1: महिलाओं को तो अधिकतर लगता है, कॉकरोच दिख जाएगा उससे भी डर जाती हो तो।
0: वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपको इन सब चीजों से डर लगता है कि नहीं, जो अधिकतर लोगों को लगता है।
1: लगता है ना मैडम, छिपकली ऐसे घर में दिख जाती है तो अपने को लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं आ जाए एकदम।
0: बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि कभी आप सफाई कर रही हो और अचानक से छिपकली निकल आए, तो आप क्या करती हैं फिर?
1: सफाई करते ना मैडम, अधिकतर तो निकलती है छिपकली, कहीं भी छुपी रहती है वो, तो ऐसे दिखाई नहीं देती, मगर जैसे अपन ने कोई तस्वीर हटाई साफ करने के लिए
0: हाँ
1: तो उसके पीछे तो जरूर रहती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी लगी हुई होती है ना बहुत दिनों से, तो उसको हटाते हुए भी डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कहीं इसको हम हटाए और इसके पीछे छिपकली हो, है ना, लगता है ना।
1: जी, तो इसके ऐसा करने तो मैडम, झाड़ू बड़े वाली रहती है ना जो लंबी वाली, उससे थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके खिड़की के बाहर कर देते हैं उसको।
0: हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी करने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि भाई इतना आपको निडर होना चाहिए कि छिपकली को आप भगा सकें, क्योंकि जल्दी जाती भी नहीं है, कभी इधर छुप जाती है, कभी उधर छुप जाती
1: हाँ,
0: है ना।
1: वो जिधर भगा उधर तो जाती नहीं, वापस अपने तरफ ही आती हो।
0: सच में ना, थोड़ी देर के लिए काम जो हम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद हो जाता है ना।
1: जी,
0: तो आप ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं अपनी पसंद का?
1: ये फिल्म का नाम है राम बलराम, और गाने के बोल हैं, अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, हमका सबको भूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे
0: अरे
1: दो। ये
0: आपसे
1: सुना दे।
0: आपसे कोई भूल नहीं हुई है और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले तो कि आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैम ग्राम कन्यानी घर से कामनी हरवार।
0: अच्छा तो कामिनी जी ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैम कुछ नहीं कर पढ़ाई करती हैं। मैम
0: पढ़ाई करती हैं
1: मैम जी कक्षा सातवीं में।
0: अच्छा सेवेंथ में आप यानी कि अभी तो बहुत मतलब अभी आप टेंथ तक पहुंचने में काफी टाइम है आपको तो अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए आपको कौन से विषय आपको बहुत ज्यादा पसंद है पढ़ने में?
1: मैम जी हमें मैम जी कुछ नहीं खाना बनाए बहुत मजा आता है।
0: खाना बनाना अच्छा लगता है तो अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम जी पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: कौन सी फिल्म का है?
1: सर्वप्रथम मूवी का।
0: यानी कि आपको फिल्में देखने का और गाने सुनने का बहुत शौक है ना?
1: जी मैम।
0: ठीक है तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं अनुराधा शर्मा बोल रही हूँ, जानना महाराष्ट्र से।
0: तो अनुराधा जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है सर?
1: हमारी सासू माँ है, सस्ते है, मेरी दो बेटियाँ हैं,
0: अच्छा
1: प्रियंका अंकिता।
0: अच्छा तो बेटियाँ बड़ी हैं कि छोटी?
1: हमारे घर वाले राजेश तिवारी,
0: अच्छा
1: अभी एक कॉलेज जाते है, एक स्कूल जाते है।
0: अच्छा है ना।
1: नन्हे चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको,
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये
1: आपके रेडियो के प्रोग्राम, हमें बहुत खुशी है, आज 20 साल के बाद फोन लगा।
0: अरे वाह, इतने समय से आप कोशिश कर रही थी।
1: ओ हेलो, फरमाई सुनते हम
0: अच्छा, और कौन
1: आज
0: कौन
1: के
0: से
1: फनकार।
0: कार्यक्रम है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: सखी सहेली,
0: है ना।
1: हेलो सहेली।
0: अच्छा तो ये बताइए कि आपको गीतों वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जिसमें बातचीत होती है वैसे वाले कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते
1: हाँ,
0: हैं?
1: बातचीत वाले ज्यादा पसंद है।
0: अच्छा, तो आप जैसे सखी सहेली सुनती हैं आपने कहा, तो उसमें जो रेसिपी वगैरह
1: हाँ
0: या इस तरह की चीजें बताई जाती हैं, तो आप क्या उसको बनाती हैं घर पे?
1: हो, कभी ट्राई कर दे, संडे के दिन आइए आप भी खाने को।
0: और ये तो बताइए आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं?
1: इडली बना दे, हम जा रहे
0: इडली।
1: इडली डोसा।
0: हाँ अरे वाह, इडली डोसा, मतलब ये रहता ना कि एकदम हल्का भी होता है खाने में, सुपाच्य भी होता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है ना, अच्छा होता है
1: ओ
0: खाने
1: सही
0: में।
1: बात है।
0: ये बताइए कि आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आरती
0: हाँ
1: सुना दिए गणपति बप्पा की।
0: अच्छा, गणपति बप्पा का आपको गीत सुनाते हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हाँ, हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: प्रतापगढ़ गांव है मेरा, बासी जगेसरगंज,
0: तो
1: और मेरा नाम रीना देवी मौर्य है।
0: अच्छा, तो रीना देवी जी ये
1: मैम
0: बताइए आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं यही सिलाई उलाई से अपन करती हूँ घर पर।
0: अच्छा, तो आप घर से ही काम करती हैं सिलाई का, है ना।
1: हाँ,
0: तो
1: वही से
0: आप क्या
1: अपन
0: क्या सिल लेती हैं, क्या क्या सिलती हैं।
1: ब्लाउज पेटीकोट यही सब सिलती हूँ।
0: अच्छा, तो आप महिलाओं के कपड़े सिल लेती हैं अच्छे तरीके से। तो ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है।
1: हम हैं, दो बेटे हैं।
0: अच्छा, तो बेटे छोटे हैं कि बड़े।
1: नहीं मैम जी, एक आरा में पढ़ता है, एक हाई स्कूल में।
0: अच्छा, यानी छोटे ही हैं। पढ़ाई तो अब इस समय काफी अच्छे से करनी पड़ रही होगी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह भी होंगे, है ना। तो ये
1: हाँ
0: बताइए आपके दोनों बेटे हैं तो क्या बेटे काम में कुछ हाथ बटाते हैं घर के।
1: हाँ मैम जी, एक रहता है दुकान पर रहता है, तो हम अपना काम घर पर कर लेते हैं, और उसके बाद स्कूल चला जाता है, तो स्कूल से आता है, अभी
0: अच्छा
1: 2 बजे आएगा गए।
0: अच्छा तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब काम में भी हाथ बटाते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी कि सिंसियर हैं बच्चे। तो ये बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप थोड़ा बहुत खाली समय में होती हैं, तो आप क्या करती हैं।
1: बस मैम जी, अपन ये सिलाई का काम करते हैं, गाना सुनते रहते हैं।
0: गाना सुनती हैं। तो ये बताइए
1: हाँ
0: आपको
1: मैम
0: कौन कौन से, आप जो ये विविध भारती सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से इसके कार्यक्रम हैं
1: जी,
0: अच्छे
1: हम तो
0: लगते हैं।
1: जब समय पा जाते हैं तब अपन मोबाइल पे चला देते हैं, वही सुनते रहते हैं, सिलाई करते रहते हैं।
0: हाँ, यानी कि आपका जो काम है वो आसान हो जाता है ना करना।
1: हाँ, अपन
0: हाँ,
1: काम करते रहते हैं, खाना बनाते हैं, तब भी चला लेते हैं, सुनते रहते हैं, और अपना सुनते रहते हैं।
0: यही तो खूबी है ना संगीत की और विद भारती की, कि मतलब आपका जो काम है उसको आसान बना देता है ना। आप सुनते रहिए उसको और अपना काम करते रहिए तो पता
1: किसी
0: नहीं
1: से
0: चलता
1: कोई
0: है कि हम
1: नहीं,
0: कितनी देर से काम
1: अपना
0: कर रहे हैं।
1: हाँ, अपना गाना सुनते रहो, अपना काम करते रहो। ठीक
0: तो ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं अपने मन का।
1: मैम जी, राजा हिंदुस्तानी का आए हो मेरी जिंदगी में।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत है। तो सुनाती हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम
0: तो बताइए, पहले आप कौन से शहर से बोल रही हैं और आपका खुद का नाम क्या है?
1: जी मैडम, मेरा नाम सीमा सोलंकी है और मैं उज्जैन जिले के गांव ताजपुर से बात कर रही
0: अच्छा, आप उज्जैन से बोल रही हैं। उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी भी कहा जाता है जिसे, है ना?
1: हूँ। उज्जैन का गांव है, ताजपुर कैसा है गांव।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है। आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैडम, मैं तो खेती बाड़ी का काम करती हूँ।
0: अरे वाह, खेती बाड़ी का काम करती हैं, तो बहुत ही ज्यादा
1: हाँ
0: मेहनत का काम होता है, समझिए, है ना?
1: हाँ बहुत मेहनत का काम होता
0: तो मतलब आप सुबह से निकल जाती होंगे, है ना? सुबह जाना होता होगा
1: है। हाँ
0: आपको।
1: सुबह से खाना वाना बना के, मतलब है घर से खाना वाना बनाने वाला, और भी दो बेटियां हैं।
0: तो बेटियां बनाती हैं, काम करती हैं घर का?
1: हाँ बेटियां भी मदद करती हैं, और खेत पे आके फिर मजदूर को खाना वाना, उनका चारा निराव पानी करके फिर
0: हाँ,
1: खेत का काम करते हैं।
0: फिर आपको एक चीज होती ना कि वहाँ खेत पे जाकर खाना खाना, सच में ऐसा लगता है ना
1: हाँ खेत
0: सोच
1: पे
0: के।
1: खाना
0: हाँ
1: भी खेत पे ही खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना जब भूख लगती है तो फिर दोपहर को वही खा लेते हैं।
0: हाँ तो वहां पे आप खेत में अपना खाना लेकर जाती होंगे, है ना?
1: हाँ खेत पे कुआ है तो उसमें से पानी आने भर के वही खाना खा लेते
0: वाह,
1: हैं।
0: कितना प्रकृति के पास रह रही हैं आप, सोचिए ये
1: हाँ
0: भाग्य की बात है एकदम, जो प्रकृति के इतना करीब रहने को मिल रहा है आपको। वैसे भी ना खेत पे जाकर, वहां पे खुले में एकदम खुला खेत है, वहां पे सब फसलें लगी हुई हैं वहां, है ना?
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: आप
1: लगता है
0: बैठ
1: मैम
0: के
1: खेत
0: खाना
1: पे
0: खा रहे
1: तो।
0: हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना?
1: हाँ ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे भी हैं और
0: साथ में
1: फसलें
0: आपका
1: भी।
0: रेडियो सेट भी रखा हुआ है, आपके फोन भी आप सुन रही
1: हाँ
0: हैं,
1: मैं अपने
0: विविध
1: फोन
0: भारती।
1: पे रेडियो भी सुनती हूँ।
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो ये
1: लगी है
0: बताइए कि आपकी बेटियां पढ़ती हैं या?
1: जी मैडम, पढ़ती है अभी, दोनों कॉलेज कर रही है। तीन
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात
1: बेटियां हैं
0: है।
1: मेरी, तो तीनों बेटियां अभी, एक एक तो स्कूल कर रही है और दो कॉलेज कर रही है। जी
0: यानी कि घर के काम में हाथ भी बटाती हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती हैं।
1: आठ दिन में एक बार कॉलेज जाती है वो।
0: अच्छा,
1: हाँ

0: तो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई भी करना और साथ में
1: पढ़ाई
0: अपने आप को,
1: भी कर रही है और मदद भी करती है। दो
0: नहीं सच में बहुत अच्छी बात है ये।
1: बेटा है उसके
0: तो बेटा कुछ करता
1: पापा।
0: है मदद?
1: हाँ बेटा, तो बेटा भी करता है सुबह शाम, वो भी कॉलेज कर रहा है
0: ये
1: और
0: सही बात है,
1: दुकान भी
0: बच्चों को
1: चलाता है।
0: सिखाना भी चाहिए ये सब चीजें कि आप पढ़ाई भी करो साथ में, थोड़ा सा हाथ भी बटाओ,
1: हाँ,
0: तो
1: साथ में
0: उससे
1: थोड़ा
0: जुड़ाव
1: बहुत मदद
0: रहता
1: भी करते
0: है,
1: हैं।
0: बहुत अच्छा रहता है ये।
1: हाँ, और उसके पापा तो है नहीं, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो
0: हाँ
1: बच्चे ही मदद करते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, सब मदद करते हैं बच्चे आपस में। तो ये बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मैडम, वो चल अकेला मेरा मेला, पीछा छोटा साथी चल अकेला सुनना।
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 28670288 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 2867028888 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों का कॉल आज नहीं लग पाया वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाइए और अपनी सखियों को अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन। श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी। उसके दिल पर छाई घटाबन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।

यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहां निकलते हैं

0: तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा,
1: मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा।
0: उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है,
1: मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहां नहीं चलेगा, ठीक है ना?
0: शुभम ने फौरन कहा था,
2: जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए।
0: दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहां आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे, उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे, मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। 1-2 दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी, उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा न हो, इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है और, श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है।

हाँ, बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रही हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ, और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी। शुभम ने कहा, ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं। पता है, यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ, यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना।

0: रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति।
1: ठीक है, श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी।
2: माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो?
1: कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी,
0: सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

0: दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी, उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं, जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा तो।
1: एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच ले

लेते हैं। फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता। रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो, रेखा हंसने लगी। जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो। अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा, इंसानी जीजी विशा। वही तो मैं कह रही हूं, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों, रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है। माँ माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ, और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

0: शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूं, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।
1: अब और नहीं होगा माँ,
0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया।

0: सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा। हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूं। यहां 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है। ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि यह सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
1: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भर कर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का।

संपादन सहयोग सौरभ घारुका, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे।
5: नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना।
1: और मैं हूं राजवीर।
0: नमस्कार
1: दोस्तों, आज शुक्रवार है, यानी सप्ताह का वो दिन जिसका हम और आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि शुक्रवार को हम लेकर आते हैं हमारा खास फोन इन कार्यक्रम, जहां हम सिर्फ आपसे बात नहीं करते बल्कि सीधे आपकी बात सुनते भी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा राजवीर। सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार हम टेलीफोन लाइन के जरिए सीधे अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं।
1: ये एक ऐसा मंच है जहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती, बस होती है आपसे सीधी बातचीत, आपके अनुभव और आपके विचारों के साथ।
0: और दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज एक तरफ है अनंत चतुर्दशी, यानी हमारे प्यारे गणपति बप्पा की विदाई का दिन, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लिए सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी एक नई शुरुआत भी हो रही है।
1: जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। इस सेवा का उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना और शहरों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के बीच आवागमन को आसान बनाना है।
0: यानी आज का दिन एक तरफ भावनाओं से जुड़ा है, बप्पा की विदाई का दिन, और दूसरी तरफ सफर को और सुगम बनाने की एक नई शुरुआत।
1: और इसी को हम आज के फोन इन कार्यक्रम में जोड़ने वाले हैं, लेकिन आज हमारी बातचीत का केंद्र होगा गणपति बप्पा और उनकी विदाई।
0: क्योंकि बप्पा जब हमारे घर आते हैं तो सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं आते राजवीर, उनके साथ आती है खुशियाँ, उमंग, परिवार का साथ और बहुत सारी यादें।
1: और जब विदाई का समय आता है तो मन में एक ही बात आती है, गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ।
0: तो श्रोताओं, आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं, बप्पा की विदाई पर आपके दिल में क्या है? क्या इस बार आपने घर में गणपति जी की स्थापना की है? क्या विसर्जन से जुड़ी कोई खास याद है? आपके मोहल्ले या शहर में बप्पा की विदाई किस तरह होती है?
1: और अगर आपको बप्पा को विदाई देते हुए सिर्फ एक संदेश देना हो तो आप क्या कहेंगे?
0: साथ ही गणेश उत्सव के साथ हमारी एक जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति भी है, तो अगर आपके शहर या मोहल्ले में पर्यावरण अनुकूल गणेश विसर्जन को लेकर कोई अच्छी पहल हुई है तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए।
1: तो देर किस बात की दोस्तों, उठाइए अपना फोन और मिलाइए हमारे स्टूडियो का सीधा नंबर। आज आपकी यादें, आपकी बातें और बप्पा के लिए आपका संदेश हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। हमारा नंबर है 07344054191। बताइए अपनी यादें, अपने विचार, हमें इंतजार है आपके फोन का।
0: तो चलिए बिना किसी और देर के शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज की बातचीत में हम दो खास विषयों को लेकर आपके बीच हैं।
1: बिल्कुल रचना, आज 25 सितंबर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण में 351 बसों को रवाना किया गया है।
0: राजवीर, इस सेवा के बारे में अगर आसान शब्दों में समझे तो इसका उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर, सुगम और सुरक्षित बनाना है। शुरुआत में इंटरसिटी और इंट्रासिटी यानी शहरों के बीच और शहर के भीतर बस सेवाएं शुरू की जा रही है।
1: जी हाँ, पहले चरण में 120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें चलाने की जानकारी दी गई है। ये बसें शुरुआती तौर पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड जैसे शहरों से जुड़ेंगी।
0: और इस सेवा में तकनीक और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। बसों में GPS के जरिए लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, पैनिक बटन और CCTV कैमरों जैसी सुविधाओं का प्रावधान बताया गया है।
1: जी हाँ दोस्तों, बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है दिल्ली से प्रसारित प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट श्रृंखला 13 एपिसोड सुनने का।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं राकेश पंत।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बसंती देवी, जो महान पर्यावरणविद हैं और प्रकृति की संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बसंती देवी उत्तराखंड की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर कोसी नदी को बचाने के साथ ही जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 5 के जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम चलाई। उनके इसी काम को देखते हुए सन 2016 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो बसंती देवी जी से बात करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। तो आपसे जानना चाहूंगा, कोसी नदी और उसके जलागम क्षेत्र को बचाने की आपकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तब क्या परिस्थितियां थी, आपने किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाया?
3: पहले तो उस नदी में बहुत पानी था, खेतों में भी इतना अच्छा जमीन में पानी और सब खेती पाती होती थी। धीरे धीरे जब जंगल पूरा काट दिया महिलाओं ने, जंगल काट के तो पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए और इसलिए बहुत परेशानी होगी। तब लोग कहने लग गए अब हम पानी भी कहाँ से पिए, खेती में भी हमारे खेतों में भी पानी नहीं आ रहा है। तब मैं गांव-गांव में जाकर मैंने महिला संगठन बनाया। मैंने कहा जब पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे यहाँ तो इतनी अच्छी खेती होती थी और इतना ज्यादा पानी आता था और नदी में और सब कुछ था, जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियोगे पानी, कहाँ से खेती होगी और कैसे हम जिंदा रहेंगे, तो इसके लिए तो तुम सब सोचो। मैंने कहा जंगल जब पूरे पेड़ काट दे रहे हो और फिर वो सड़ जाते हैं तो उनको फिर तुम जला देते हो, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब जंगल बचेगा, पानी आएगा, तब खेती भी अच्छी होगी, अपने लिए भी, हमारे पानी पीने के लिए और रुपाई करने के लिए, खेती पाती सब ठीक करने के लिए भी तब अच्छा होगा, तब हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा ही कैसे रह सकते हैं। मैं फिर 6-7 दिन के बाद जंगल के रास्ते गई तो महिलाओं से कहा बैठो आप, मैं तुमको सब बात सुनाती हूँ। जब जब पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे, खेती कैसे होगी, और ये तो तुमको सोचना ही चाहिए। मैं आज तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, तुम अभी जंगल से अब घर को चलोगे, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए, जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
2: जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीज?
3: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहाँ प्रकृति ऐसी होगी, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी, तो यही इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी, तो यही मेरा काम होता है।
2: बसंती दी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां, चुनौतियां आपके सामने आई?
3: चुनौतियां तो बहुत आई, सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं और तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया। तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे करके गांव-गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया। तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से। मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है। जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है। तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का। और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने, जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
2: बिल्कुल, हाँ। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखती है वसंती जी, आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है?
3: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग

0: अभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गांव गांव में सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर लिया। और लड़कियों को भी जब हमने बालवाड़ी में, एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए लिखने लग गए। तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए। तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है, और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है। आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ। तब मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संदीप जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके, क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश भारत वर्ष अच्छा होगा। उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है, जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: दोस्तों, अभी आपने सुना प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट का ये विशेष एपिसोड। इसी के साथ अब हम लौटते हैं अपनी चर्चा पर। रचना, आज अनंत चतुर्दशी है और हमारे बीच से विदा होने वाले हैं हमारे प्यारे गणपति।
5: हाँ राजवीर, बप्पा के आने की खुशी जितनी खास होती है, उनकी विदाई का पल भी उतना ही भावुक होता है। घर हो, मोहल्ला हो या शहर का सार्वजनिक गणेश उत्सव, इन कुछ दिनों में बप्पा से जुड़ी कई ऐसी यादें बन जाती हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रखते हैं।
4: तो आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपके लिए बप्पा की विदाई का मतलब क्या है।
5: क्या आपके पास गणेश विसर्जन से जुड़ी कोई खास याद है? क्या आपके मोहल्ले में विसर्जन की कोई खास परंपरा है? या फिर इस बार बप्पा को विदाई देते हुए आपके मन में कोई खास संदेश है?
4: और एक जरूरी बात, बप्पा की भक्ति के साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर आपके शहर या मोहल्ले में पर्यावरण अनुकूल विसर्जन को लेकर कोई पहल हो रही है तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए।
5: तो श्रोताओं, अब आप भी इस बातचीत का हिस्सा बनिए, हमें फोन कीजिए, अपनी यादें, अपने अनुभव और बप्पा के लिए अपना संदेश हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा नंबर है 0734405-4191।
4: और इसी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता, तो आइए बात करते हैं उनसे। हेलो, नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत है।
6: हाँ भैया नमस्ते, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
4: जी योगेश जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया हैं भैया, अच्छे हैं।
4: योगेश जी, आज अनंत चतुर्दशी है और आज हम बात कर रहे हैं बप्पा की विदाई को लेकर।
6: जी
4: तो किस तरह की तैयारी है? विदाई हो चुकी है पप्पा की आपके घर से या अभी बाकी है?
6: हो गया है भैया, गांव में विराजमान थे तीन जगह पे
4: जी,
6: और कल से तो मौसम ने भी काफी करवट ली है और थोड़ी थोड़ी लगातार बारिश हो रही है।
4: जी जी जी जी। तो कैसे रहे ये 10 दिन गणपति जी के साथ आपके, और किस प्रकार का माहौल रहा, किस प्रकार से आपने उत्सव मनाया पूरा?
6: बढ़िया धार्मिक सामाजिक माहौल रहता है भैया, पूजा अर्चना का जो काम होता है लोग आपस में मिलजुल कर करते हैं तो एक आपसी संबंध जो होता है वो काफी मजबूत होता है।
4: जी
5: योगेश जी, गणपति बप्पा के इस उत्सव से लेकर क्या आप इससे जुड़ी कोई याद आपके पास है जो आप साझा करना चाहेंगे?
6: अब यही है, जो हमारा जिला मुख्यालय बेमेतरा है वहाँ पे तो अच्छी झांकी वगैरह भी लगता है, तरह तरह के आयोजन मीना बाजार वगैरह भी लगे थे तो काफी अच्छा लगता है, एक लाइट भी डेकोरेट भी होता है तो थोड़ा अच्छा घूमने लायक माहौल होता है।
4: अच्छा योगेश जी, आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में या अपने क्षेत्र में गणेश जी स्थापित किए, गणेश जी को बिठाया आपने?
6: हमारे आसपास जैसे मोहल्ले हैं भैया उसी में रखते हैं, ऐसे व्यक्तिगत तो नहीं रखे हैं
4: जी,
6: लेकिन ऐसे मिलजुल कर रखते हैं चौक में
4: जी। वैसे अमूमन देखा जाता है कि जो शुरुआती दौर होता है बचपन का, उसमें हम सभी को गणेश जी बिठाने का बहुत एक शौक रहता है कि हम अपने घर पर अपने मोहल्ले में गणेश जी को लेकर आए धूमधाम से, तो इस प्रकार से कभी आप किसी उत्सव में शामिल हुए?
6: हाँ शामिल हुए हैं ना भैया, लेकिन अब उस समय बचपना था तो आयोजन जो मुख्य लोग रहते थे उनके साथ कदम से कदम मिलाते थे।
4: जी जी जी जी जी। तो बढ़िया योगेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
6: धन्यवाद।
4: आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनाते हैं आपको हमारा अगला संगीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, ब्रेक से पहले सुना आपने एक ये खूबसूरत गीत, और इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे अगले कॉलर से बात करने का। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद साहब जी।
3: जी, कौन बात कर रहे हैं सर आप?
4: ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
3: जी सत्येंद्र जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
4: नमस्ते, मैं जी बहुत बढ़िया हूँ। आज पूरे दिन से रिमझिम रिमझिम बारिश का आनंद ले रहा हूँ, ये भी एक कार्तिक की देख रहा हूँ। बिल्कुल सारे दिन से यही स्थिति बनी हुई है, आपसे बात कर रहे हैं
3: जी।
4: रिमझिम रिमझिम बारिश चालू है।
3: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस रिमझिम बारिश के बीच में आज बप्पा की विदाई कैसे की आपने?
4: आज देखिए, हम उज्जैन तो हमारा आना जाना हो जाता है, और
3: जी
4: बाबा महाकाल के भी दर्शन आके करे हैं
3: जी,
4: चित्रा में भी स्नान किया है
3: जी।
4: तो और उज्जैन से आकाशवाणी से ऐसा नहीं है, हमारी एक दो बार और भी बात हो चुकी है
3: जी,
4: जुड़े रहते हैं उज्जैन से, उज्जैन तो पसंदीदा क्षेत्र है
3: जी। जी जी, तो मैं आज अपनी जो हमारी जो चर्चा का विषय है वो है अनंत चतुर्दशी और गणपति जी की विदाई। तो मैं जानना चाहूँगा आपने और आपके परिवार ने आज गणपति जी की विदाई किस प्रकार से की है, और गणपति जी से जाते वक्त आपने क्या, आप मतलब किस प्रकार से, क्या कोई मांग करी है, कोई सपना आपका कोई परिवार के लिए?
4: जी बिल्कुल सही है। यद्यपि हम आपको बताएं, हम गणेश जी की वैसी स्थापना तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं
3: जी,
4: उनकी ही प्रतिदिन पूजा करते हैं। और हाँ, यहाँ जो हमारे यहाँ जो आपने गणेश जी की बात कही, तो उस पर एक विशेष स्थान है, वहाँ गणेश जी की मूर्ति अच्छी स्थापित की जाती है
3: जी,
4: वह उसी को देखे आते हैं। और यही कामना करते हैं कि गणपति बप्पा की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे
3: जी,
4: और सभी लोगों में बुद्धि का विकास हो
3: जी,
4: जिससे कि कोई अनर्गत काम न करे और
3: जी,
4: अपने अपने अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकें।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कामना रहती है, और प्रतिदिन की भी कामना यही रहती है।
3: तो आपके शहर में कोई विशेष गणेश प्रतिमा जो हर साल वहां पर स्थापित करते हो, कोई बड़ा पांडाल, कुछ बताइए आपका, आप या आपका परिवार वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए?
4: वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहां कोई बंबई से कलाकार आते हैं
3: जी,
4: स्थापित करते हैं।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो वो मूर्ति भी बड़ी अच्छी स्थापित होती है, और इसके बाद फिर आखिरी दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो सभी लोग अनवरत भंडारा काफी देर तक चलता रहता है
3: जी।
4: और हम इसमें एक बात और कहेंगे कि हम पेपर में के माध्यम से देखते रहते हैं
3: जी,
4: कि मूर्ति विसर्जन के समय काफी दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत में अभी हम पेपर में भी पढ़ा है, कहीं कहीं तो जनहानि हो गई, लोग बाग गहरे पानी में चले गए और वो डूब भी गए
3: जी।
4: तो ये इस तरीके से कार्यक्रम तो अच्छा है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये जब उनका विसर्जन करते हैं तो विशेष सावधानी की जरूरत है
3: जी। जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, त्योहार मनाएं, उत्सव मनाएं, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के साथ मनाएं, और पर्यावरण का भी कहीं ना कहीं ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि विसर्जन के दौरान हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, पर्यावरण को इनसे नुकसान होता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सत्येंद्र जी आपसे, जो गणेश उत्सव होता है पूरे 10 दिन का, इन 10 दिनों में अगर देखा जाए तो परिवार एक साथ आता है पूजा करने के लिए, अक्सर मतलब हम साथ में पूजा नहीं कर पाते हैं परिवार में, लेकिन इन 10 दिनों में पूजा का जो समय रहता है वो सभी का साथ में रहता है, तो आपके परिवार में इस प्रकार से कभी कुछ रहा है?
4: हाँ, होता क्या है, देखिए हम आपको बताएं कि जो घर पे पूजा करीब करीब हम और पत्नी
3: जी
4: साथ साथ में हो जाती है, लेकिन बच्चों का आगे पीछे हो जाता है, उनका नहाना धोना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है
3: जी,
4: तो वो अपने स्तर से वो अलग पूजा कर लेते हैं
3: जी।
4: लेकिन ये बात सही है कि जो माहौल बनता है, माहौल देख के ही बनता है, जैसे हम आप किसी मंदिर में जाते हैं तो भावना कुछ अलग हो जाती है वहाँ, तो मंदिर जाने का कारण भी यही होता है कि अपनी भावना को परिवर्तित करना
3: जी। जी बिल्कुल,
4: और यही स्थिति बिल्कुल 10 दिन अब आने वाले हमारे 9 दिन रहेगी, जब पूरे देश में अपने में माँ नवरात्रि शुरू होंगे
3: जी,
4: तो पूरे भक्ति का माहौल रहेगा 9 दिन 10 दिन, क्योंकि 10वें दिन दशहरा भी हो जाता है, तो
3: बिल्कुल,
4: ये
3: बिल्कुल।
4: भक्ति भाव हम सभी में, आप उन सभी में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन हाँ आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भक्ति भाव बिल्कुल उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण भी बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान रखना।
3: जी बिल्कुल सत्यन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। और इसी के साथ आइए श्रोताओं, आपको सुनाते हैं हमारा अगला गीत।
4: जी धन्यवाद सर।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना भगवान गणेश को समर्पित ये बहुत ही खूबसूरत गीत। रचना गणपति विसर्जन हमें एक बहुत ही सुंदर बात सिखाता है, हर शुरुआत का एक अंत होता है।
1: बिल्कुल, भगवान गणेश कुछ दिनों के लिए हमारे घर आते हैं और फिर विदा हो जाते हैं, लेकिन उनका जाना सिर्फ विदाई नहीं है राजवीर, अपने साथ वे एक तीख भी छोड़ जाते हैं।
0: कि चीजें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी यादें और हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ रहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले श्रोता, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर, आपको भी।
0: जी कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है सर, आपने सुनाइए।
0: जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर?
2: मैं सर देवास जिले से बात कर रहा हूँ, चिड़ाउत कंजर डेरे से।
0: जी क्या नाम है सर आपका?
2: संतोष जी हड़ा।
0: संतोष जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी और गणपति की विदाई के बारे में।
2: जी जी जी
0: जी, तो क्या आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में गणपति जी को विदाई दे चुके हैं आप?
2: नहीं सर, आप शाम को तैयारी हो रही है, अभी डीजे सज रहे हैं।
0: अरे वाह,
2: डीजे सज रहे हैं, 10 ढोली मंगवाई है
0: जी,
2: तो उसकी बप्पा की बड़ी जोर से तैयारी चल रही है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये 10 दिनों का उत्सव आपने आखिर किस प्रकार से मनाया, आपके मोहल्ले में, आपके घर में क्या तैयारियां रही, क्या विशेष रहा?
2: बड़ी खुशी आती सर, साल में एक बार आता है हमारा गणेश भगवान जी का, वो 10 दिन अपने घर में ठहरते हैं
0: जी,
2: बड़ी खुशी मिलती है।
0: जी जी बिल्कुल, तो किस प्रकार तैयारी करते हैं आप, आपके क्षेत्र में जो गणेश पांडाल सजाए जाते हैं, तो आपकी किस प्रकार की तैयारी रहती है, क्या विशेष तैयारी रहती है, कुछ बताइए आप इसमें।
2: जी सर, बहुत जोर शोर से तैयारी करते हैं पूरे मोहल्ले के, छोटा हमारा एक करीब करीब 50-60 गांव घर का मोहल्ला है, उसमें फिर चंदा करते हैं, बड़ी बड़ी जोर शोर से तैयारियां करते हैं
0: जी,
2: उनकी पूजन में बड़े लगे रहते हैं
0: जी। तो कितने फीट की गणेश प्रतिमा लेकर आए थे इस बार आप?
2: जी अभी लाए थे सर हम 5100 रुपए की
0: जी,
2: काफी अच्छी थी।
0: जी जी जी, अच्छा एक बात और रहती है, जो ये 10 दिन रहते हैं गणेश उत्सव के, इसमें एक बच्चों का एक अलग माहौल रहता है, बच्चों को एक बहुत ये पसंद आते हैं त्योहार।
2: जी
0: तो बच्चों ने आखिर किस प्रकार से इस पूरे उत्सव को मनाया, और क्या कोई गणेश पांडाल में कोई विशेष प्रतियोगिता, कोई खेल आप लोगों ने आयोजित किए थे?
2: जी सर बिल्कुल, शाम को रोज होते थे, खेल कूद होता था, नाच गाना होता था, बड़े बच्चे बच्चियां शरारती करते हैं, शोर मचाते हैं, बड़े खुश रहते हैं।
0: जी जी जी, संतोष जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जिस प्रकार से सब चीजें बताई तैयारियों को लेके, उम्मीद है आपसे फिर बात होगी। नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: राजवीर, गणपति बप्पा की भक्ति में रंग, रोशनी, संगीत और उत्साह सब शामिल है, लेकिन इसी उत्साह के बीच हमें अपनी धरती और अपने जल स्रोतों को भी याद रखना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें आस्था के साथ जिम्मेदारी भी हो।
0: तो श्रोताओं, इस बार कोशिश करें कि विसर्जन के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: बप्पा को विदाई ऐसी हो कि आस्था भी बनी रहे और प्रकृति भी मुस्कुराती रहे। दोस्तों, इसी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी नमस्कार सर,
1: जी आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं मैम?
0: मैं स्वाति श्रीवास्तव बात कर रही हूँ उज्जैन से। सर
1: जी स्वाति जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हैं?
1: जी जी बिल्कुल
0: और
1: बढ़िया।
0: आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत चतुर्दशी की।
1: जी आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाति जी, किस तरह से विदाई की तैयारी है आज बताइए।
0: विदाई की तैयारियां तो हैं पूरी तरह से, और रात में 8 बजे, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत अच्छे से गणपति बिठाती हूँ,
1: जी
0: बहुत सुंदर सी झांकी लगा के और पूरा अच्छे से सजाती हूँ। पर
1: जी
0: आज का दिन थोड़ा दुखी रहता है मन, कि
1: जी जी
0: आज बाबा को विदा करना पड़ेगा।
1: हाँ बिल्कुल, ये सभी के साथ
0: जी
1: होता है। कहीं ना कहीं मन में एक दुख भी होता है
0: हाँ
1: कि बप्पा 10 दिन हमारे साथ रहे, परिवार में इतनी खुशियाँ लेकर आए और आखिर उनको आज हमसे अलग होना पड़ रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं बप्पा इतनी खुशियाँ छोड़ के जाते हैं कि अगले साल तक की पूर्ति हो जाती है देखा जाए तो।
0: जी जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही बोलूँ कि हमें अलग नहीं होना पड़ रहा है, जो रीति रिवाज है हम उसको बहुत फॉलो करते हैं,
1: जी
0: लेकिन बस ये जो 10 दिन है तो पूरा परिवार जो है इकट्ठा होता है और सब तरफ जो माहौल देखने को मिलता है,
1: जी
0: खासकर अगर मैं आपसे उज्जैन की बात करूँ तो
1: जी
0: उज्जैन में काफी अच्छा गणपति का जो झांकियां हैं और तो
1: जी
0: पंडाल लगते हैं, हर कॉलोनी में अपनी एक अलग पंडाल रहते हैं, घर घर गणेश जी विराजते हैं,
1: जी
0: तो बड़ा ही अच्छा मौसम माहौल रहता है। जी
1: जी तो ये 10 दिन की तैयारी कैसी रहती है? आप हर साल क्या एक जैसी ही तैयारी करते हैं या कुछ हर साल कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं इस उत्सव के लिए?
0: नहीं हाँ, कुछ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कुछ
1: जी
0: थीम रखते हैं, कभी कुछ झांकी अपने, जैसे मैं मेरे घर की अगर बात करूं तो कुछ अलग डेकोरेशन हर बार को कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग से करूं,
1: जी
0: कुछ डेकोरेशन अलग से करूं, झांकी सजाती हूँ। एक बार मैंने रूई के पहाड़ बना के और लाइट्स लगा के और झांकी बनाई थी, तो
1: अरे वाह
0: मेरे आसपास के जितने भी बच्चे हैं
1: जी
0: तो हम लोग सब, फिर वो लोग शाम को आ जाते थे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि गणेश जी की जो झांकी होती है वो बच्चों को बहुत उसमें मजा आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: झांकी बड़ी डेकोरेटिव रहती थी,
1: जी
0: उसमें मैं टॉयज वगैरह सजा के और ऐसे, और वो प्रसाद भी फिर मैं ऐसा लाती थी जो बच्चों को पसंद आए। मतलब
1: जी
0: नॉर्मली हम बच्चे जो प्रसाद में की लड्डू रखते थे या ये, तो बच्चे आजकल खाते नहीं है या दूसरे माँ बाप भी पसंद नहीं करते कि
1: जी
0: क्या
1: जी
0: पता
1: जी
0: कैसा घी है, क्या शक्कर है, कैसा
1: जी
0: कैसा बना है, तो
1: जी
0: फिर मैं हम लोगों के लिए ऐसी टॉफीज और कुछ ऐसा लेके आती थी, तो
1: जी
0: हम पापा को भी कैडबरी चढ़ाते थे और बच्चों को भी कैडबरी बांटते थे।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया। और आपके
0: हाँ
1: आपके मोहल्ले या आपकी कॉलोनी में भी कोई गणेश स्थापित की जाती है?
0: जी
1: और
0: हाँ जी हाँ, हमारी पूरी कॉलोनी मिलके भी, जो पूरा हमारा कॉलोनी के वहाँ पे मंदिर है
1: जी
0: तो वहाँ पे पूरा पंडाल बनाते हैं, गणेश जी का पूरा उत्सव होता है
1: जी
0: और बड़ी धूमधाम से होता है, फिर अभी 2-3 दिन बाद वहाँ पे भंडारा भी होता है, सभी तरह के आयोजन होते हैं। और पूरी मैं एक बात बोलूंगी कि कॉलोनी पूरी तरह से बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है और
1: तो
0: लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। शाम को आप यहाँ पे देखिए इतने गेम्स होते हैं, बच्चे इतने इन्वॉल्व
1: जी
0: हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर सुंदर तैयार होके आएंगे,
1: जी
0: और अपना कोई गान सिंगिंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, कुछ गणपति जैसे बैठने वाले थे तो उसके पहले सारा हमारे बच्चों को यहाँ पे बुला के सबको
1: जी
0: मिट्टी के गणपति बनाना सिखाया,
1: अरे
0: और
1: वाह
0: सब
1: बहुत
0: बच्चे वो
1: बढ़िया
0: अपने गणपति बना के और अपने अपने घर लेके भी गए। तो
1: जी जी जी
0: ये जो एक चीज है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा फिर वहां पे हम लोगों ने एक ये संदेश भी दिया कि जो मिट्टी के गणपति आपने बनाए हैं
1: जी
0: तो आपको कहीं भी जाके उनको विसर्जन करने की जरूरत नहीं है,
1: जी
0: आप अपने घर में ही एक बड़ा टब लीजिए, उसमें पानी डालिए और उस मिट्टी के जो गणपति हैं आप उनको घर में विसर्जित कीजिए, और वो जो पानी है फिर वो अपने पेड़ पौधों में या गमलों में डाल दीजिए, तो आपको ये फील रहेगा कि बप्पा कहीं नहीं है, यही है।
1: स्वाति जी, आपने पर्यावरण को लेके एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। उत्सव के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारी सभी की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: जी।
1: करके स्वाति जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो आइए श्रोताओं, आपको सुनाते हैं हमारा अगला गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत और इसी के साथ समय हो चला है अब आपसे विदा लेने का। आज आपसे बातचीत करके सच में बहुत अच्छा लगा। आपने फोन करके अपनी यादें साझा की, अपने विचार बताए और बप्पा से जुड़ी अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा किया। रचना, हमारे नियमित श्रोताओं से इस तरह सीधे बात करना हमेशा हमारे लिए खास होता है। आपकी बातें, आपका प्यार और आपका अपनापन ही हमारे इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाता है।
1: और आप सभी सिर्फ हमारे श्रोता नहीं हैं, बल्कि आकाशवाणी परिवार का एक अहम हिस्सा है। आपकी भागीदारी और आपका स्नेह हमें लगातार आपसे जुड़े रहने की प्रेरणा देता है।
0: आज के इस खास अवसर पर आप सभी को अनंत चतुर्दशी और गणपति बप्पा की विदाई की हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियां लेकर आएं और अगले वर्ष फिर इसी उमंग और उत्साह के साथ लौटें।
1: इसी के साथ मैं रचना
0: और मैं राजवीर
1: आज की इस खूबसूरत मुलाकात को यहीं देते हैं विराम। आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार प्रणाम। आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र पर यह FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। महाकाल की पावन मंगलमय नगरी अवंतिका से मैं हूं आपका साथी और उद्घोषक विनय। आज की इस पावन संध्या में आप सभी धर्म प्रेमी श्रोताओं का भक्ति और आस्था से सजे हमारे इस विशेष भजन संध्या कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और वंदन है। श्रोताओं, जिनकी कृपा से हर बाधा कट जाती है और जीवन के मंगल का संचार होता है, उन्हीं गजानन महाराज की स्तुति में पहला भक्ति संगीत प्रस्तुत करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से भजन को।

अभी आप आनंद ले रहे थे प्रथम पूज्य की पावन वंदना का। श्रोताओं, गणेश जी मात्र रूप नहीं, वे साक्षात परम ब्रह्म, बुद्धिदाता और एकाग्रता के प्रतीक है। आइए मन के विकारों को शांत कर आत्मा को अंतर्मुखी बनाते हुए ध्यानमग्न होते हैं इस दिव्य भजन में।

आरती की पावन ध्वनि के बाद भक्ति रस की यह धारा निरंतर आगे बढ़ रही है। माता गौरी के नंदन शिवजी की दुलारे जो सभी भक्तों के दुखों को हर लेते हैं, अब उनके पावन स्वरूप का गुणगान सुनिए यह मधुर भजन।

श्रोताओं, सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है उस विधाता की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति के पीछे प्रभु का कोई न कोई गूढ़ रहस्य जरूर होता है। इसी भाव को समर्पित भावपूर्ण भजन सुनिए इस मिठास के साथ।

भक्ति का वास्तविक सार समर्पण और प्रेम में ही समाया है। जहाँ निश्चल प्रेम और श्रद्धा है, वहीं ईश्वर का वास है। आज की इस कार्यक्रम का अंतिम भजन आपके समक्ष प्रस्तुत है।

नमस्कार प्रणाम। महाकाल की पावन धरा, शिप्रा के पावन तट और इतिहास व संस्कृति के शहर उज्जैन से मैं हूं आपका दोस्त और हम सफ़र विनय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अप्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज की शाम को और भी सुहाना बनाने के लिए लेकर आया हूं आपके मनपसंद तरानों का एक दिलकश सफ़र। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं आज के पहले गीत को।

मोहब्बत का इजहार जब लफ्ज़ों में ढलता है तो रूह तक उतर जाता है। फिल्म आशिकी 2 का यह नगमा जैसे हर आशिक की जुबा बन गया। अरिजीत सिंह की आवाज़ में वास्तव में जादू है। खैर, बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। कहते हैं मोहब्बत जितनी गहरी होती है, जुदाई और बेबसी का दर्द भी उतना ही शिद्दत से भरा होता है। ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह का यह गीत एक टूटे हुए दिल की ऐसी पुकार है जिसे सचेत टंडन ने अपने गायन से अमर बना दिया। जब कोई अपना यादों के सिवा कुछ न छोड़े, तब यही दिल गाता है। सुनिए इस बेहतरीन से नगमे को।

गुलजार साहब के लिखे अल्फाज, यश चोपड़ा जी का रोमानी कैनवास और श्रेया घोषाल के साथ मोहित चौहान का सुरमई संगम। फिल्म जब तक है जान का यह गीत सांसों की गर्माहट और जज्बातों की नज़ाकत को बयां करता है। सुनिए और खो जाइए इस दिलकश नगमे में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़। दर्द और जुदाई के बाद जब रिश्तों में समर्पण और भरोसे की मिठास घुलती है तो जन्म लेता है एक सच्चा वादा। फिल्म कबीर सिंह से यह गीत हर उस इंसान को समर्पित है जो अपने प्यार पर पूरी दुनिया न्योछावर करने को तैयार है। पेश है ये प्यारा सा गीत।

जब दिल किसी के ख्यालों में दिन रात खोया रहने लगे और अनजाने में कोई अपना बन जाए, तो चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर जाती है। प्रीतम दा का थिरकता संगीत, आतिफ असलम का अनोखा अंदाज और अलीशा चिनाय का जादू, फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से पेश है यह बेहद प्यारा गीत।

आज के इस खूबसुफर सफर का आखिरी पड़ाव, फिल्म जब वे मीट का वो गीत जो बारिशों की बूंदों की तरह ताजा है। मोहित चौहान की मखमली आवाज हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होने से ही हमारी हर सुबह और हर शाम मुकम्मल होती है। आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम। सुनिए ये बेहतरीन सा नगमा।

श्रोताओं, तो ये था कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब शाम के 7 बजने को है, दिल्ली केंद्र से आप समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी

0: जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैनग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशंस पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7:05 हो चुके हैं, आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। शाम 7:10 पर भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से 7:21 पर माटीरी बात मालवी समाचार निमाड़ी लोकगीत कार्यक्रम सुना जा सकेगा। रात 8 विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा तक भोपाल केंद्र से सुन पाएंगे। समाचार संध्या कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से ही रात 9:15 पर उर्दू में समाचार सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से खेल पत्रिका कार्यक्रम 9:30 पर सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से रात 10 20 एशियाई ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से रात 10:20 पर गीतों का गुलदस्ता कार्यक्रम सुना जा सकेगा। रात 10:30 पर राग रजनी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुन पाएंगे। रात 11 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुना जा सकेगा। ये थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान और 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुना जा सकेगा। प्रातः 7 महाकाल वंदन कार्यक्रम आप उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुन पाएंगे। 7:10 पर भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुना जा सकेगा। सुप्रभात उज्जैन प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से 7:20 पर सुना जा सकेगा। प्रातः 8 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात कार्यक्रम सुन पाएंगे। प्रातः 8:30 पर उज्जैनी आरजे कार्यक्रम और 9:30 पर बॉलीवुड बीट्स नए फिल्मी गीत कार्यक्रम सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से ही 10 आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना जा सकेगा। दोपहर 12:05 पर विविध भारती मुंबई केंद्र से यादों की महफिल कार्यक्रम सुन पाएंगे। 2:10 पर भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुना जा सकेगा। विविध भारती मुंबई केंद्र से 2:30 पर सदाबहार नगमे फिल्मी गीत कार्यक्रम सुन पाएंगे। साथ ही साथ विविध भारती मुंबई केंद्र से दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम और शाम 4 बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम सुन पाएंगे। शाम 5 उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से युववाणी कार्यक्रम सुना जा सकेगा। साथ ही 6 भजन

संध्या कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। शाम 6:30 पर उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, सुना जा सकेगा। भोपाल केंद्र से शाम 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे। 7:21 पर मालवी गीतारी गूंज, मालवी समाचार, मालवी लोकगीत कार्यक्रम सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा तक रात 8:00 सुन पाएंगे। रात 9:00 दिल्ली केंद्र से News@9 प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात 9:30 पर विज्ञान भारती दिल्ली से रिले कार्यक्रम सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले, सॉरी ये थे कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। अब आप थोड़ी ही देर में भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत। 7 शहरों में 351 बसों को हरी झंडी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिंगरौली में बलराम कृषि महोत्सव, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। और वाराणसी से वडनगर तक जारी जल जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा का सागर में उप मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। इस मौके पर 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। श्री गडकरी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए 5 एजेंडा तय किए गए हैं, जिनमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। उन्होंने कहा,
4: बड़े इनोवेटिव मॉडल में आज इन बसेस का शुभारंभ किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस है। और इन सब के कारण जो आम गरीब जनता है, प्राइवेट टैक्सी में नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जो पहल की है, ये वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुरक्षित, किफायती और जवाबदेह सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था का निर्माण और उसका शुभारंभ आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
3: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को इस सेवा से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बसें चलाने का है।

0: और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने की योजना है। बसों में CCTV, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने श्री गडकरी के साथ एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का दर्शन आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का मार्ग दिखाता है। प्रदेश में हरित ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में निवेशक संपर्क और हितधारक परामर्श कार्यक्रम हुआ। मध्य प्रदेश भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिरसिंहपुर की 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 50 से 100 मेगावाट घंटा बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने प्रदेश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं और सरकार की नीतियों की जानकारी दी। 39 से अधिक डेवलपर कंपनियों और प्रमुख ऊर्जा और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सिंगरौली में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिंगरौली में 3,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और जिले की प्राकृतिक खेती का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से फसल विविधीकरण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन और मछली पालन को अपनाने की अपील की।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। इसी क्रम में बड़वानी जिले में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस एवं सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा से संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ पर जिला मुख्यालय बड़वानी तथा सेंदुआ में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सेवा से संकल्प अभियान के तहत आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान सहित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में दिव्यांगजनों को मोटर ट्राइसिकल, वरिष्ठ एवं श्रवण दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों को सहयोगी उपकरण वितरित किए गए। अभियान के तहत जिले के ग्रामीण अंचलों में विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल स्तर की शालाओं में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महाविद्यालय स्तर पर जिले के महाविद्यालयों में स्वच्छता एवं सेवा के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई जाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक जल जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकाली जा रही है। 17 सितंबर को वाराणसी से प्रारंभ हुई ये यात्रा देश के 10 राज्यों से होकर गुजर रही है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा में शामिल सेवा यात्रियों और विभिन्न स्थानों से जुड़े लोगों से वर्चुअली संवाद किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सागर के बंडा में सेवा संकल्प यात्रा के 9वें दिन 2 टोलियों के आगमन पर सभी यात्रियों का स्वागत किया। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। सुबह से ही लोग प्रतिमाएं लेकर अलग अलग विसर्जन घाटों पर पहुंच रहे हैं। विसर्जन जुलूसों के साथ घाटों पर काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। ये सिलसिला देर रात तक चलेगा। अनंत चतुर्दशी को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। प्रशासन क्रेन, पोकलेन की मदद से प्रतिमाओं का विसर्जन भी करवा रहा है। भोपाल में नगर निगम ने शहर में 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर मूर्ति संग्रहण स्टॉल लगाया है, जहाँ लोग पूजा के बाद प्रतिमाएं जमा कर रहे हैं। पितृपक्ष कल से शुरू होगा और 10 अक्टूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ इसका समापन होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण पितृपक्ष 15 दिनों का रहेगा। इस दौरान लोग अपनी पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। श्रद्धालु नदियों और घाटों पर तर्पण के साथ साथ घर पर भी श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में अन्नदान, गौ सेवा, जरूरतमंदों की मदद और पौधारोपण को भी पूर्वजों की स्मृति में किए जाने वाले सेवा कार्यों के रूप में महत्व दिया जाता है। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय रहने से आधे प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी है। जबलपुर समेत 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बाग सेवनिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आज आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक में स्थापित करने के लिए 92 प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें 35 पत्थर की और 57 मेटल की प्रतिमाएं शामिल हैं। मंडला जिले को प्राप्त मोबाइल फॉरेंसिक वैन का पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने शुभारंभ किया। वैन की मदद से अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्राथमिक फॉरेंसिक जाँच में तेजी आएगी। मंदसौर में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न रोगों के मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श और औषधियां वितरित की गई। और छिंदवाड़ा की आंगनवाड़ी केंद्र खिरसाडोह में आज पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत। 7 शहरों में 351 बसों को हरी झंडी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सिंगरौली में बलराम कृषि महोत्सव, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। और वाराणसी से वडनगर तक जारी जल जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा का सागर में उप मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार। FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7:21 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी री बात, मालवी समाचार, निमाड़ी लोकगीत।

एक तरफ बप्पा को आशीर्वाद, दूसरी तरफ बेटियों को प्यार आयो है। कैलेंडर की इन एक तारीख पे आसमान जैसो ठाट आयो है। बप्पा की विदाई की नमी भी है और बेटियों की पायल की झनकार भी है। रेडियो सुनने वाला दिल थाम लो, क्योंकि आज हवा में खुशियों को सैलाब आयो है। राम राम सा प्रणाम महारा देश का सभी प्यारा प्यारा भाई ना बेन ना और खेत उनमें पसीनों भाई के पूरा देश को पेट भरवा वाला महारा अन्नदाता यानी कि किसान भाई उनके प्यार भरो नमस्कार। मैं हूं तमारो दोस्त, तमारो साथी, तमारो हम सफर और इन कार्यक्रम को उद्घोषक लखन मालवी और तम सुनी रहा हो आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज से तमारो पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम माटेरी बात। आज तो पंचांग को उपन्यो खुलो है, जिन्हें पूरे देश का दिल की धड़कन के एक अलग ही रफ्तार दी दी है। आज की तारीख है 25 सितंबर और आज जब खिड़की का बाहर देखो तो बाहर गुलाल की महक थी, सड़कों पे ढोल ताशा की गूंज थी और आकाश में एक अजीब सी विदाई की उदासी का साथे साथे एक गजब को उत्सव। तो आज का दिन इतनो अनोखो है क्योंकि आज हमारी आस्था, हमारा घर की आंगन की खुशबू, हमारा समाज का साइलेंट हीरोज और हमारा बचपन की सबसे प्यारी यादें, यो सब एक ही तारीख पे आई के मिली गई है। आज अनंत चौदस है, हमारी लाड़ला श्री हमारा विघ्नहर्ता भगवान गणेश का विसर्जन को महादन। आज नेशनल डॉटर्स डे भी है, जो याद दिलावे है कि बेटियां नहीं तो घर में कोई रौनक नहीं। आज वर्ल्ड फार्मर्स डे भी है, जो उन लोगों के प्रणाम करवा को दन है जो सफेद कोट पहनी के हमारी सेहत की पहरेदारी करे। और रुको जरा, मोबाइल की स्क्रीन से दूरी बने इन्हें तुम्हारा बचपन की उन पुरानी गलियों की सैर भी कराऊंगा, क्योंकि आज नेशनल कॉमिक बुक डे भी है, यानी कि आज तुम सबके साबू, चाचा चौधरी और नागराज की गलियां उनमें भी ले जाऊंगा। तो अपना रेडियो सेट के दूर मत जाओ, क्योंकि आज हमारा कने घनी सारी बात है और कई मीठी यादें हैं और हाँ तुम्हारा पसंदीदा लोकगीत भी है। चलो इन सफर की शुरुआत करा, तो कहीं जाओ जो मत, बनिया रिजो आकाशवाणी उज्जैन का साथ ली के अपनी दिल की बात। पीपल की वह छांव पुरानी और पनघट को ऊ पानी, याद आवे ऊ खेत खलियान और अपना की मीठी वाणी। चाय की चुस्की संग चौपाल पे खबरें सुनी के होगी बात विचार, तो शुरू करा मालवी में आज का प्रदेश का समाचार।

नमस्कार समाचार का साथ मैं लखन मालवी। सबसे पहले इन बुलेटिन का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का 12 साल पूरा हुआ पे क्यों है कि इन पहल से देश का कई बड़ा क्षेत्रों में बदलाव आया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करी। प्रदेश भर में अनंत चतुर्दशी पे गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन को सिलसिला जारी है। अब समाचार विस्तार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का 12 साल पूरा हुआ पे क्यों है कि इन पहल से देश का कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आयो है और उत्पादन निवेश तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने क्यों है कि मेक इन इंडिया का मकसद ऐसो बुनियादी ढांचों उद्यम नवाचार तैयार करना जिनसे भारत विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 2014-15 में करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ी के 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हुई क्यों है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल का भेल दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करी। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गाँवों में शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नया स्वरूप में लौटी रही है। इन मौका पे 7 शहरों में 351 इंटरसिटी और इंटरसिटी बसों के हरी झंडी दिखाई है। पहला चरण में भोपाल इंदौर जबलपुर रीवा देवास कटनी और भिंड में इन सेवा के जोड़ी जा रही है। सरकार को लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बस चलावा को है और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुँचावा की योजना है। बसों में CCTV, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधा भी होगी। प्रदेश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को सिलसिला जारी है। सुरक्षा के देखता हुआ जिला प्रशासन पुलिस और स्थानीय निकायों के घाटा पर इंतजाम किया है जहां क्रेन और पोकलेन की मदद से प्रतिमाओं को विसर्जन करी जा रही हो। कई शहरों में पूजा का बाद प्रतिमा जमा कराने का लिए मूर्ति संग्रहण केंद्र भी बनाया गया है जहाँ से नगर निकाय सामूहिक विसर्जन की व्यवस्था करेगा। अनंत चतुर्दशी महाकाल मंदिर अनंत चतुर्दशी पे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर में भस्म आरती का दौरान बाबा महाकाल का गणेश स्वरूप में विशेष श्रृंगार किए गए। जल अभिषेक पंचामृत पूजन का बाद भस्म चंदन भांग और सुगंधित फूलों से बाबा का अलंकरण करी गयो। परंपरा के अनुसार महानिर्वाणी अखाड़ा की ओर से भगवान महाकाल के भस्म अर्पित करी। नीमच का श्री सीतामय जजू शासकीय कन्या स्नोकोत्तर महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान का तहत भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। मारा सपना का भारत विषय पर छात्राओं ने विकसित और सशक्त भारत के लिए अपना विचार साझा करियो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में इस बार इंदौर में 3 से 5 अक्टूबर तक होगी। 3 दिवसीय बैठक में देश भर का 46 प्रांत का पदाधिकारियों ने शामिल होने की संभावना है। मंदसौर में सेवा संकल्प अभियान का तहत नमो सेवा अनकही कहानी कार्यक्रम आयोजित किया गया। नाटकों का जरिए जन कल्याणकारी योजना और सेवा जनसेवा से जुड़ी कहानी

दुनिया का रोचक तरीका से लोग उन तक के पहुंचाएगा। खंडवा में नशा मुक्ति योग व विकसित भारत थीम पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका जरिए नशा मुक्त को संदेश दिए गए हैं। इन दौरान आशापुर से सेवा कलश यात्रा का भी विद्यार्थी और प्राध्यापकों ने स्वागत करियो। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय रहवाक से आधा प्रदेश में तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। जबलपुर समेत 13 जिला में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का मुताबिक अगला 24 घंटा में कुछ इलाका में 4 इंच से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये था आज का प्रादेशिक समाचार।

साथियों, तुम्हारा सगला कोइन खूबसूरत शाम में फिर से स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन का खास कार्यक्रम माटीरी बात में। तो भाई ना, बप्पा का नाम पे एक जबरदस्त लोकगीत भी चला हुआ है। पूरा शहर आज एक साथ गूंजेगा और उसकी आवाज में चिल्लाएगा गणपति बप्पा मोरिया। ढोल ताशों की गूंज में देखो विदाई की बेला आई है। बप्पा आपका जाने से हर दिल में उदासी छाई है। आंखों में जल की नदियां हैं पर होठों पे मुस्कान है। अगला बरस तो जल्दी आवे बस यो ही अरमान है।

दोस्तों, पिछला 10 दिन से हमारा घर में, हमारा गांव में जो एक अजीब सी ठहराव और जो बेहद खूबसूरत माहौल थोनी आज उको चरम है। सुबह से ही पांडाल हुन में आरती की गूंज है। लोग बप्पा के मोदक को भोग लगाई रहा। सच बताऊं तो यो विसर्जन को जो दिन है नी, हमेशा दिल के थोड़ो सो भारी करी जाइए। लेकिन आध्यात्मिक का नजरिया से देखो तो अनंत चतुर्दशी हमें जीवन में एक सबसे बड़ो सच दिखावे है, डिटैचमेंट यानी कि मोह से मुक्ति। जो इन संसार में आयो है उके एक ना एक दिन वापस अपनी मूल जगह पे जानो ही है। बप्पा मिट्टी से आकार ले है और आज उन्हीं मिट्टी और पानी में विलीन हो जाएगा। यो सिखाने का लिए कि अहंकार कैसे, सब कुछ तो इनिज प्रकृति को है। वे जाते जाते हमारे घर में सुख समृद्धि दी के और नकारात्मकता के अपना साथ ली जाने को आशीर्वाद दी जाए। आज अगर आप विसर्जन के लिए रास्ता पे निकली रहा हो तो तुम्हारा दोस्त इन एक दोस्त की सलाह याद रख जो, भीड़ बहुत होगी, इकलिए ट्रैफिक का नियम को पालन कर जो, पानी को स्रोत के गंदो नहीं करनो है, और हाँ अगर कोई खोयो हुए बच्चों या बुजुर्ग दिखे तो तुरंत मदद कर जो। बप्पा की विदाई आंसू से नहीं बल्कि इन वादा का साथ दीजो कि अगले बरस तू जल्दी आ। चलो इन आज माहौल के और ज्यादा भक्ति में और जोशीले बनावा का लिए एक लोकगीत को और साथ ला। दिलों में री के हमारा जब अपना घर के जाओगा, हंसता हंसता बप्पा तुम हमारी आंखों के नमक नम करी जाओगा। अलविदा नहीं कहांगा तुम्हारे क्योंकि तुम तो यही रोगा, बस इंतजार रहेगो उन पल को जब अगला बरस फिर से आओगा।

बप्पा को आशीर्वाद तो हमारा साथ थे हमेशा रहे, लेकिन जानो हो भगवान को साक्षात रूप अगर हमारा घर में कहीं देखनो है तो वाह है हमारी बेटियों का चेहरा पे मुस्कान में दिखे। और संयोग देखो तो आज नेशनल डॉटर्स डे भी है। किसी ने खूब क्यों है कि एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, सच कहूं तो भगवान को वरदान है बेटी। जिन घर में जन्म ले है या उन घर की सबसे बड़ी शान है बेटी। आज का दिन उन पिताओं का नाम है जो अपनी बेटियों के हर छोटी बड़ी जीत के पूरी करवा कर लिए और अपनी पूरी जिंदगी लगाई दे। और उन माताओं का नाम है जो अपनी बेटियों में अपना के देखे। अक्सर लोग कहे कि बेटियां तो पराया धन हो, लेकिन मैं कहूँ कि बेटियां कभी भी पराया धन नहीं होइए। वी तो वह अनमोल धन है जो दो दो परिवार उनकी किस्मत चमक दे है। दिन भर की थकी हुई सांस के जो मरहम लगाई दे है, माथा पे चूम के जो पिता का हर गम के भुलाई दे है। कोई दौलत कोई शोहरत उन सुकून का आगे कुछ भी नहीं है जब थकी के घर लौटूं और बेटी मुस्कराई के पानी थपाई दे है। आज की तारीख में हमारी बेटियां की कोई पहचान की मोहताज नहीं है। वे स्पेस में रॉकेट उड़ाई रही है, वे ओलंपिक्स में देश को तिरंगा लहराई रही है, वे बड़ी बड़ी कंपनियां संभाली रही है। तो आज को ऐसो ही खास दिन पे हमारा जीवन में बेटियों की अहमियत और उनकी खुशियां और समाज में उनको योगदान को जीने को दीने, इन आज मौका पे आज हमसे बात करी है शासकीय स्कूल की शिक्षिका श्रीमती विभा सिंह और उनकी बेटी श्रीमती हरदी।

0: श्रीमती हरदिका सिंह जी और उनके साथ है वो इंसान जिनकी आंखों का गर्व आज पूरा शहर देख रहा है, उनकी माता जी श्रीमती प्रभा सिंह जी। मैम आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम मेरा सबसे पहला प्रश्न था कि जब आपको पहली बार यह खबर मिली कि आपकी बेटी का मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के रूप में चयन हुआ, उस पल एक माता के तौर पर आपकी कैसी अनुभूति रही? आंखों में खुशी के आंसू थे या गर्व से सीना चौड़ा हो गया था?
1: पहली बार जब मुझे पता चला कि मेरी बिटिया का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है तो निश्चित रूप से खुशी बहुत ज्यादा थी और एक गर्व का अनुभव था उस समय, क्योंकि बिटिया 6.5 साल की थी और उस समय मध्य प्रदेश का नेतृत्व करना वास्तव में मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए एक गर्व की बात रही।
0: जी मैम बिल्कुल सही बात कही आपने कि 6 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना बहुत गर्व की बात होती है। मेरा अगला प्रश्न था कि अक्सर समाज में बेटियों के सपनों को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते, लेकिन आपने अपनी बेटी को कभी पंख फैलाने से नहीं रोका। अपनी बेटी की इस यात्रा में एक माँ के रूप में आपकी क्या सोच रही है?
1: जब मेरी बेटी हुई थी उसके होने से पहले ही मेरे एक मन में था कि पहली बेटी होनी चाहिए। घर में बड़ी बेटी होने से एक रौनक होती है और जब उस खेलने के लिए हमने भेजा तो मेरे से ज्यादा उसके पापा का इसमें योगदान रहा, उसके चाचा जी का योगदान रहा, क्योंकि वो मेरे साथ तो जॉब में जाती थी और फिर उसको हमने भेजा और मन में कहीं ये नहीं था कि बेटी है तो उसको खेलने नहीं भेजा। हमारा ये था कि बेटी है ये आगे जाए और विशेषकर मेरा अपना ये था कि मैंने जो चीज नहीं करी मैं इसको करवाऊं, तो इसलिए हमारे के पापा उसकी मम्मी हम लोगों की तरफ से उसको पूरी उड़ने की आजादी दी गई और उसी का परिणाम है आज कि वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी और उसने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता और बाद में राष्ट्रीय स्तर की वो निर्णायक भी बनी और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निर्णायक के लिए वो उस दौर में चल रही है।
0: बिल्कुल मैम हमारी शुभकामना है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की निर्णायक बने। मैम हमारा अगला प्रश्न था कि पिता और माँ का जो त्याग रहता है वो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता, बेटियों के इस सपने को पूरा करने के लिए आपने और आपके परिवार ने किस तरह की चुनौतियों का सामना करा?
1: जहाँ तक माता पिता के त्याग की बात अगर मैं कहूँ तो पिता का त्याग ज्यादा रहा, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में थी और मैं तो अपनी जॉब पे चली जाती थी और पापा उसको हमेशा अपने साथ रखते थे और फिर बाद में स्कूल भेजा, स्कूल छोड़ना, लेके आना, जिम्नास्टिक हॉल में भेजना, वहाँ से लेके आना, वो सारा काम उनका होता था और उसी का परिणाम है कि उसके पापा खुद सिविल इंजीनियर रहे तो उसके मन में था कि मुझे सिविल में करना है और उसने सिविल में एमटेक किया और बाद में वो गवर्नमेंट जॉब में आई और आज उज्जैन संभाग में वो गवर्नमेंट जॉब में है पीएचई डिपार्टमेंट में।
0: मैम मेरा अगला प्रश्न था कि जैसे नेशनल डॉटर्स डे के इस मौके पर आप उज्जैन और पूरे देश की उन माताओं से क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में थोड़ा झिझकते हैं?
1: मैं इस नेशनल डॉटर्स डे पे सभी माताओं को ये कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएं, केवल बेटों के लिए ही वो ये नहीं करें कि बेटों को पढ़ाएं, बेटे आगे जाएं, बेटियां जहां जो काम अच्छे से करना चाहती हैं, जहां उनकी रुचि है उसमें आगे रखें, क्योंकि हमने भी अपनी बेटी को इस तरह से रखा कि पढ़ाई में भी आगे रही और खेल में भी आगे रही। तो मैं ये चाहूंगी सभी माओं से कि बेटियां भी कम नहीं है, बेटियों को उड़ने के लिए पंख दें, उड़ने के लिए आसमान दें, वो भी आपका नाम रोशन करेंगी और बहुत आगे बढ़ेंगी।
0: मैं मेरा एक अंतिम प्रश्न था कि जैसे आज नेशनल डॉटर्स डे के मौके पर आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से आप सभी माताओं और जो बेटियां हैं, जो युवा हैं, जो खेलों की ओर अग्रसर है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी बेटियों से नेशनल डॉटर्स डे पे ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत आगे जाएं जिसमें वो अपनी रुचि रखती हैं और आगे बढ़ते जाएं, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का करें। आजकल तो खेलों के बहुत ज्यादा सरकार खेलों के तरफ अग्रसर है, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। और माँ बाप से भी ये कहना चाहूंगी कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
0: बिल्कुल मैम आज आपसे बात करके यह एहसास और गहरा हो गया कि एक माता और पिता का विश्वास ही बेटी की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे हमारी राष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता और राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक हरदिका सिंह जी से। मैम मेरा पहला प्रश्न था कि जब आपका पहला मेडल मिला था तब से लेकर आज तक और अब तो आप पीएचई में एज ए इंजीनियर भी हैं, तो जब आप अपने पहला मेडल देखते हैं तो उस पूरी यात्रा को देखकर आपको कैसा महसूस होता है?
2: जब मैं आज अपने उस मेडल को देखती हूँ तो पुरानी सारी यादें एक पल में ही ताजा हो जाती है। वो सिर्फ मेरे लिए एक मेडल नहीं था, वो मेरे लिए जीत की खुशी थी और मेरे आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी थी। वहां से शुरू हुई यात्रा आज मुझे जिम्नास्टिक में

0: श्री निर्णायक के पद तक ले गई है और साथ ही साथ पीएचई में भी सब इंजीनियर के रूप में आज मैं पदस्थ हूँ। आज जब मैं उस मेडल को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि वहाँ से हुई मेरी यात्रा की शुरुआत मुझे कितने आगे तक लेकर आ गई है।
1: मैम, मेरा अगला प्रश्न था कि एक तरफ आप खुद एक जिम्नास्टिक की खिलाड़ी रही है और अब आप जज की कुर्सी पर बैठकर दूसरों के खेल को परखती हैं। खिलाड़ी होने में और एक जज बनकर दूसरों को नंबर देने में कितना फर्क होता है? कैसा महसूस होता है उस समय जब कुर्सी पर बैठकर आप नंबर दे रहे हो?
0: खिलाड़ी और निर्णायक के रूप में बहुत ही बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जब हम खिलाड़ी होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस पे होता है कि हमें किस तरह अच्छे से परफॉर्मेंस देना है। पर जब हम निर्णायक की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो हमारे हाथ में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जो बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उस सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका हमें हर एक पॉइंट का निर्णय लेना है और उससे ही उनकी जीत और हार निर्भर करती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी बारीकियों को देखना और इसे अच्छे से निभाने का एक बहुत ही ज्यादा दबाव होता है, पर उसी के साथ खुशी भी महसूस होती है कि उन बच्चों की सफलता में हम किसी न किसी तरह से साथ दे पा रहे हैं।
1: मैम, आज आप एक इतनी बड़ी सरकारी अफसर बन चुकी, लेकिन घर आते ही मम्मी पापा की वही छोटी बेटी बन जाना, ऑफिस की लाइफ हो या घर की लाइफ, इन दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद?
0: विदाउट एनी डाउट सभी को घर की लाइफ ज्यादा पसंद होती है। अपना स्वतंत्र तरीके से रहना, बिना किसी जजमेंट के हंसते खेलते रहना, साथ ही साथ सरकारी अफसर बनना मेरा शुरू से सपना था। जब मैं 10th में थी मैंने तब से सोच रखा था कि मुझे सरकारी अफसर बनना है। पापा सिविल इंजीनियर हैं तो उन्हें देख के यही था कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि आज मैं एज ए सब इंजीनियर पीएचई में एज ए सिविल इंजीनियर पदस्थ हूँ। पर घर की लाइफ ही होती है, उसे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि घर तो घर ही होता है जहां हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। मैम, समाज में आज भी बहुत से कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि बेटियों को खेल में ज्यादा आगे नहीं भेजना चाहिए या इतनी बड़ी नौकरियों के लिए बाहर नहीं भेजना चाहिए। आज आप दोनों जगह टॉप पर हैं। उन सभी माताओं पिताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बेटियों के सपनों के पंख देने से डरते हैं?
0: मैं उनकी सोच को इतना समझ नहीं सकती हूँ, पर मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी बेटियों को पंख देंगे तो आपको ही आगे जाके गर्व महसूस होगा। आज कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, जॉब का हो या फिर खेल का हो, हर जगह में बेटियां बहुत ज्यादा आगे कर रही हैं। और पिछले 2-3 सालों से तो ये देखने में आ रहा है, मैं खेल से जुड़ी हुई इंसान हूँ तो मैं खेल की पर्टिकुलर बात करूंगी, कि ओलंपिक्स में लड़कों से ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो निश्चित ही आपको अपनी बेटियों के सपनों को पंख देने चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और साथ ही साथ उनका हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो भी आगे बढ़े, आपको भी गर्व महसूस हो और पूरे समाज को उनके ऊपर गर्व महसूस हो।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। फील्ड पर बतौर इंजीनियर सही और गलत का फैसला करना, खेल के मैदान पर जिमनास्ट बनकर हवा में कलाबाजियां खाना और अब जज की कुर्सी पर बैठकर दूसरों के हुनर को सही इंसाफ देना, वाकई में आपने हर जगह साबित किया है कि बेटियां अगर ठान ले तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आपकी सफलता यह साबित करती है कि बेटियों को अगर हौसले के पंख मिले तो वो आसमान की किसी भी ऊंचाई को छू सकती है। आपको नेशनल डॉटर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहला अब सुना एक प्यारो सो और लोकगीत।

दोस्तों वक्त है समाज का उन हीरोज का बारे में बात करने को जिका बारे में हम अक्सर चर्चा करना भूली जाऊँ। जब भी हम बीमार पड़ा हाँ हमारा दिमाग में सबसे पहलो नाम आए डॉक्टर को कि डॉक्टर भगवान को रूप हो। बिल्कुल सही, लेकिन डॉक्टर जो पर्चा पे दवाई लिखे हैं उन दवाई को सही सॉल्ट का साथ है, सही डोजेस का साथ है, पूरी जिम्मेदारी का साथ कौन पहुंचावे है? तो वी है हमारा फार्मेसिस्ट। और आज है वर्ल्ड फार्मेस्ट डे। तो जरा सोचो कि आधी रात के जब घर में किसी बच्चा के तेज बुखार रह जाए तो नुक्कड़ वाली फार्मेसिस्ट ही हो ये जो अपनी दुकान खोली कि हमें राहत की सांस दे है। तो आज हमारी तरफ से और पूरा शहर की तरफ से दुनिया भर का हर फार्मेस्ट के एक बड़ों से सल्यूट। आज जब भी आप अपना घर का पास वाली फार्मेसिस्ट पे जाओ तो दवाई लेता वक्त उन भैया या दीदी के एक प्यारी सी स्माइल का साथ थैंक यू जरूर बोल जो, क्योंकि आपको एक छोटा सा थैंक यू उनकी दिन भर की थकान मिटी सके हैं। मर्ज कैसो भी है वह दवा के पहचान रखे है, पर्दा का पीछे री के भी वी लाखों की जान रखे हैं। सफेद कोट में छिपा इन समाज का रक्षक के प्रणाम जो अपनी हर सांस में औरों की सेहत को ध्यान रखे है। श्रोताओं अब मैं सीधे ली चलो तुम्हारे बचपन में। जरा याद है 90 और 2000 का वह सब जब गर्मियों की छुट्टी में दोपहर का वक्त मम्मी पापा सोई जाता था तब हम दबा पाँव अलमारी में जाके वह कॉमिक उठे के लाता था, क्योंकि आज कॉमिक बुक डे भी है। वह साबू को गुस्सो, चाचा चौधरी को दिमाग पुरानो, याद आवे बचपन की कॉमिक वालों जमानो, ना मोबाइल को झंझट ना रील्स की बीमारी, चंद रुपया ने उन किताब में दुनिया छिपी थी हमारी। तो दोस्तों इन्हीं प्यारी सी याद का बाद वक्त है जावा को। तो जाते जाते बस इतरो ही कहूँगा कि त्यौहार की खुशियाँ मनाओ, अपना के वक्त दो और हमेशा मुस्कुराता रहो। फिर मिलांगा इनाज स्टेशन पे कुछ नई बात लिखे, ढेर सारा लोकगीत लिखे। तब तक का लिए अपनो ख्याल रख जो, सुरक्षित रहो जो। गणपति बप्पा मोरिया, मैं हूँ तुम्हारो दोस्त लखन और सुनता

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे मालवांचल का खास कार्यक्रम माटीरी बात। अभी वक्त है आपका विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, जो कि केंद्र भोपाल से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा, ये आकाशवाणी भोपाल है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरहत नाज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
4: शुक्रिया फरहत।
2: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
3: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
2: जी।
3: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
2: जी सर।
3: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
2: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
4: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
2: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
4: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
2: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
3: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
2: जी।
3: और उसके बाद जो प्रगति हुई जो हमने देखा कि 1982 में इनसेट 1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं
2: जी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
4: बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में जैसे हम मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहाँ आप देखिए एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल हासिल कर सकती है मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं। ये कोई सोच नहीं सकता था लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं खास करके हमारे टॉप एथलीट।
2: राजारमन जी पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
4: वो भी बढ़ रहे हैं क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है और कई ऐसे एथलीट हैं शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में और हमारे खिलाड़ी विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
2: बिल्कुल राजा रमन जी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
5: श्रोताओं आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट अंतरिक्ष यान जीवन रक्षक प्रणाली अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगन गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद दो और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है, देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
6: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
3: एक तो जब हम हाथ में काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा, तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी जो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
6: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
3: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो, और तभी से 40 साल हो गए अभी, सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है, और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो Vikram-1 जो उन्होंने लॉन्च किया
6: जी,
3: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था। तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
6: और अब राजारमन जी आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
4: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
6: हाँ, और पुरानी कहावत भी है हार में ही जीत है।
4: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
6: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
4: वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है, हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गांव को सुधारना चाहते हैं।
6: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
3: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो, और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था, जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
6: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
3: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
6: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजारमन जी,
4: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियन पैदा करें शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
6: तो राजारमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
4: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें, और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
6: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के

0: ये प्रमोद जी क्या होना चाहिए?
1: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं, और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रहे थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स है, उनके 3-4 साल पूरे हो जाने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
0: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
1: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है, और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
0: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी, तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से, कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है, वो सूट पहले आप इम्पोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
0: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
2: 1970 में कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं, बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं, दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
0: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
2: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है, और इसमें

0: ये जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
1: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
2: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आ गए 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था, पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब एसएलबी का काम करना चालू कर दिया, तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
1: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
0: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए, और बेहतर ही हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं।
1: और अगर बात अब 2047 की करते हैं, तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
2: कि जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
1: जी राजरमन जी,
0: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
1: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
2: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनके फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत

0: अच्छी तरह से हो
1: जी
0: सकता है।
1: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं। वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
0: हमने जब इनसाइट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसाइट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है, ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स
1: जी
0: में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि
1: जी
0: किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
1: जी राजारमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर लें, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
1: जी राजारमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है। तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
2: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं। 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है। सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू कि हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का बला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो then we will find the solutions to all our problems.
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा। मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
0: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
1: राजारमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
2: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
0: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।
4: नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 8:35 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं फिल्म कल हो ना हो के इस बेहद रोमांटिक गाने के साथ जिसको गाया है सोनू निगम ने।

ने चरम पर होता है। इम्तियाज अली की फिल्म रॉक स्टार से ऑस्कर विजेता एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की त्रिवेणी में गूंजती यह सूफियानी कव्वाली, आइए सुनते हैं।

0: दृश्य है। रात्रि के 8:45 होने को, अब समाचार संध्या, आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
2: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
3: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
2: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए

0: देने वाला काम है।
1: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
2: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
1: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
6: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
3: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पिम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
0: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
8: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम पार्टनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। और मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
0: 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
3: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक

0: Dr. Jaishankar will address the high-level session tomorrow. During the visit, the minister has attended various plurilateral and bilateral meetings. Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
1: External Affairs Minister S. Jaishankar today raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. India has welcomed the commencement of the Quad at Sea Ship Observer Mission, announced at the 11th Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi on the 26th of May this year. External Affairs Ministry said in a social media post that India Coast Guard ship Shonak has sailed from Chennai with sea riders from all four Quad countries. It said the mission strengthens maritime cooperation and interoperability, reflecting the Quad's shared commitment to a free and open Indo-Pacific. Meanwhile, Defence Ministry said in a statement that this marks an important step in advancing maritime cooperation and interoperability among Quad nations, India, Australia, Japan and the United States. Iran has proposed a 7-day roadmap aimed at ending the conflict with the United States. According to media reports, Foreign Minister Abbas Araghchi outlined the plan to reporters in New York yesterday. The proposal seeks to implement the conditions in the Memorandum of Understanding agreed by Washington and Tehran in June, including a halt to hostilities and the reopening of the Strait of Hormuz. National President of Bharatiya Janata Party and Rajya Sabha MP Nitin Nobin has said that the BJP's policy has always been guided by the principles of Antyodaya, which means reaching the benefits of development to the last person. In line with the spirit, development schemes are being extended to villages and towns. Addressing the Seva Sankalp Sabha organized at Dadia near Jaipur today, he said that public representatives have an important role to play in ensuring that development schemes reach the last person. Defence Minister Rajnath Singh today flagged in the first ascent mountaineering expedition that scripted history by summiting 20 unclimbed peaks above 6,000 meters in Ladakh in just 23 days. Interacting with the expedition team in New Delhi, Defence Minister commended the courage and determination of the climbers in accomplishing the historic feat. He described the expedition as a demonstration of India's mountaineering excellence and leadership in adventure sports. In Asian Games, India's overall medal tally has reached 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze in Japan. Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh won gold in the mixed team 10-meter air pistol event in Nagoya, Japan today. The pair shot 484.6 in the final to finish 6.6 points ahead of South Korea's Sui Hong Hong and Gao Chun, who took silver with 478. Indian long-distance runner Gulveer Singh won the silver medal in the men's 10,000-meter race at the Asian Games. Indian athlete Baranika Elangovan won the bronze medal in the women's pole vault at the Asian Games. Another Indian athlete, Manpreet Kaur, won the bronze medal in the women's shot put. In table tennis, Indian mixed doubles pair of Diya Chitale and Manu Shah settled for a bronze medal after losing to world champions in Chinese combination Wang Huihing and Sung Hingha, 0-3. The India Met Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Uttar Pradesh and Uttarakhand tomorrow. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is likely over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. The districts that are likely to receive heavy rainfall include Rampur, Pilibhit, Bareilly, Shahjahanpur and Bharaich. Meanwhile, districts of Madhya Pradesh which are expected to receive rainfall include Satna, Chhatarpur, Tikamgarh and Nivari. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says rural transformation and women's self-reliance mark India's progress, highlights importance of social service, social reform and positive change. Centre extends AFSPA in disturbed areas of Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months. External Affairs Minister S. Jaishankar calls for text-based negotiations to ensure meaningful UN reforms, criticises those opposing change. And at Asian Games in Japan, India's overall medal tally reaches 23 with 2 gold, 9 silver and 12 bronze. Pair of Kamaljeet and Suruchi Singh clinch gold in mixed team 10-meter air pistol event. Long distance runner Gulveer Singh wins silver in men's 10,000 meter race. Baranika Ellen Govan bags bronze in women's pole vault. And that's all in the news at 9. Good night.
2: ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और ख़वातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज़्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इसमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड 10 मीटर के एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। तवील फासले तक दौड़ने वाले खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर की दौड़ में चांदी का तमगा हासिल किया है। वहीं बारानिका एलन गोवन ने खवातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के शहरों और गांवों के दरमियान की दूरी में खातिरख्वाह कमी आई है। उन्होंने देही बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में खवातीन बड़े पैमाने पर खुद कफील और माशी तौर पर बाइख्तियार बन रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वड़नगर की यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कही। जनाब मोदी ने सामाजिक खिदमत, सामाजिक इस्लाह और मुस्बत तब्दीली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की शमूलियत और तआवुन से ही विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो सकता है। जनाब मोदी ने वाज़े किया कि वड़नगर से उन्हें वो इकदार मिली हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को शक्ल दी है, जबकि काशी ने उन इकदार में अपना रंग भरा है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवान अफराद भी खिदमत के इस सफर पर निकले हैं।
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियाँ आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: बातचीत के दौरान यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म से अपने तजुर्बात बयान किए। इस दौरान जनाब मोदी ने यात्रियों को अपने तजुर्बात डायरी में दर्ज करने का मशवरा दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अक़वामे मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी तहरीरी मतन के बगैर मुज़ाकरात जारी रहते हैं तो इसका मकसद सिर्फ वक्त हासिल करना और इस्लाहात के अमल को मज़ीद मौक़र करना रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा में ढांचा जाति इस्लाहात में ताख़ीर पर दुनिया भर में बढ़ती हुई बेचैनी इस बात की निशानदेही करती है कि इस्लाहात की मुखालफत करने वाले अनासिर अक़वामे मुत्तहिदा को मजबूत बनाने की बजाय महज अपने मफादात के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर इख्तलाफात और रुकावटें, बदलती हुई दुनिया के लिए फासले मिटाना और पुल की तामीर के उनवान से मुनक़िदा वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इदारे की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले तरीक़ेकार की मुश्किलात का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा जाती ढांचे में तब्दीली की इज्तिमाही ख्वाहिश मजीद मजबूत हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में ढांचा जाती इस्लाहात के मुतालबे का दिफा करते हुए कहा कि यह मुतालबा अक़वामे मुत्तहिदा के खिलाफ किसी अदावत की वजह से नहीं बल्कि इस इदारे को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश से पैदा हुआ है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर अपनी भरपूर सिफारती सरगर्मियां जारी रखीं। डॉक्टर जयशंकर ने आर्मेनिया, बारबाडोस और इराक के अपने हममनसबों के साथ अलग अलग मीटिंगें कीं। इसके अलावा पनामा के सदर से भी उन्होंने मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने अपनी मीटिंगों की तफसीलात शेयर करते हुए बताया कि बातचीत में दोतरफा तआवुन, इलाकाई हालात वाक़ियात और वसीतर बैनुल अक़वामी उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ये हालिया मीटिंगें अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के दौरान डॉक्टर जयशंकर की वसीतर सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा है।

0: इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ खितों के रहनुमाओं और वज़राए खारजा के साथ दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई हालात और कसीर फरीकी तआवुन समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा में इक्तसादी ताल्लुकात के सेक्रेटरी सुधाकर दलेल ने अक़वामे मुत्तहिदे की 81वीं जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर कम तरक्की याफ्ता मुल्कों LDCs की सालाना वजारती मीटिंग में शिरकत की। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान भारत ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ अपनी मुस्तहकम और पायदार शराकतदारी के अज़्म का इआदा किया है। सुधाकर दलेला ने कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की पायदार तरक्की के लिए आसान और काबिल रसाई माली वसाइल, रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा घरेलू पैदावार में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर जोर दिया। सेक्रेटरी मौसूफ ने सेंडाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद, कुदरती आफात और आबोहवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए आसियान का जामे तरीक़ेकार के उनवान से मुनक़िदा खसूसी प्रोग्राम से भी खिताब किया। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदे की 81वीं जनरल असेंबली के मौके पर समंदर की सतह में इजाफे से कुर्रे अर्ज की बका को लाहक खतरात से निमटने के मौजू पर मुनक़िदा आला सतह के मुकम्मल इजलास में भारत का मौक़िफ पेश किया। उन्होंने समंदर की सतह में इजाफे से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदे के एलानिये को अपनाए जाने का खैर मकदम किया और समंदर से मुत्तसिल इलाकों को आबोहवा की तब्दीली के खतरात से महफूज बनाने, मैंग्रोव के तहफ़ और कुदरती आफात से महफूज बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए भारत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने मसावात पर मबनी मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों की अहमियत को भी उजागर किया। जनाब सीबी जॉर्ज ने समंदर के कानून से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदे के कन्वेंशन UNCLOs की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समंदरी हदूद मुस्तहकम रहनी चाहिए और जजीरानुमा और साहिली मुल्कों की मुमलकती हैसियत और खुद मुख्तारी का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। मरकज ने मुसल्ला अफवाज के खसूसी इख्तियारात के कानून 1958 को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरिश ज़दा इलाकों में मजीद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। मणिपुर में वजारत दाखिला ने 13 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों को छोड़कर तमाम रियासत में AFSPA को नाफिज करने का फैसला किया है। इन ज़िलों में दीमापुर, न्यूलैंड, चिमोई, केडिमा, मोन और मेलुरी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलैंड और लॉन्गडिंग ज़िले और आसाम की सरहद से मुतसिल नमसाई ज़िले में नमसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के मातहत इलाकों में भी AFSPA नाफिज किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत गुज़िश्ता 12 साल की हुसूलियाबियों को आज उजागर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस पहल ने मेड इन इंडिया, भारत में सरमायाकारी और भारत से ज़्यादा बरामदात को फ़रोग दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तब्दीली सभी शोबों में नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मेक इन इंडिया तक का ताल्लुक बुनियादी ढांचे, एंटरप्राइज और जिद्दत तराजी से है जो भारत को फलने फूलने और खुशहाल बनने के काबिल बनाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी हैं और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज खसूसी सीरीज़ में इस नज़रिए के जरिए दिफाई अमले के सरबराह के अहदे की तश्कील का जायज़ा पेश किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूँ। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग कर।
2: इससे पहले भारत के दिफाई अफवाज के 3 शोबे बर्री अफवाज, बहरिया और फजाइया अलग अलग मनसूबाबंदी, तरबियत और खरीदारी का अमल अंजाम देते थे और हुकूमत को अलहदा तौर पर मशवरे दिया करते थे। साल 1999 की कारगिल जायजा कमेटी की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा उन्हें मरबूत करने से मुतालिक तजवीजें पेश की जाती रहीं जिसे वज़रा के ग्रुप ने भी उठाया। ताहम किसी एक अफसर को तीनों खिदमात को हुक्म देने का इख्तियार नहीं था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में लाल किले की फसील से दिफाई अमले के सरबराह CDS के ओहदे की तश्कील का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि इस कदम से तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल में मदद मिलेगी।
1: आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूँ। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर

0: एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
1: इसके बाद दिसंबर 2019 में काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। साथ ही वजारत दिफा के दायरे में ही CDS की सरबराही में फौजी उमूर से मुतालिक नए महकमे की तश्कील को भी मंजूरी दी गई। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS के तकर्रुर ने हुकूमत के लिए सभी फौजी मामलात पर राबते के लिए वाहिद कड़ी का काम किया।
2: The appointment of the Chief of Defence Staff made it possible for the government to have one point contact for advice on all matters related to military. Besides being the Chief of Defence Staff, he is also Secretary of Military Affairs. He is a one point contact, one point advisor to the Defence Minister, and of course in the security they meet whenever the Prime Minister wishes to, the Defence Minister wishes to. At any point of time they require advice, they need some kind of input, just one point contact for all the three services, and that is the Chief of Defence. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equal.
1: CDS के उदय की तश्कील के बाद अब तीनों अफवाज को आला सतह पर मौसर क्यादत मिल गई है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
3: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी का कौमी सदर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट नितिन नबीन ने कहा है कि बीजेपी की पॉलिसी हमेशा अंत्योदय यानी सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्की के फायदे पहुंचाने से तहरीक पाती है। उन्होंने कहा कि किसी जज्बे के तहत गांवों और कस्बों तक तरक्याती स्कीमों की तौसी की जा रही है। जयपुर के नजदीक दादिया में मुनाकिद सेवा संकल्प सभा से खिताब करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। जनाब नवीन ने कहा कि सफे आखिर में खड़े शख्स तक तरक्याती स्कीमों की यकीनी फरहमी में अवामी नुमाइंदों को अहम रोल अदा करना होता है। जनाब नबीन ने कहा कि अवामी नुमाइंदों का असल मकसद तब पूरा होता है जब वो खुशी और गम के मौके पर अवाम के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद जनाब नबीन ने बिरला ऑडिटोरियम में नौजवानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जनाब नबीन ने नौजवानों से तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में कायदाना रोल अदा करने की अपील की। अमरीका और ईरान अपने दरमियान जारी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए मरहलेवार तरीक़ेकार पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने तजवीज़ पेश की है कि अगर अमरीका अपनी नाकाबंदी और दीगर इक्तसादी पाबंदियां ख़त्म कर दे तो ईरान आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची ने कहा कि तेहरान ने सालिसी करने वालों के ज़रिए एक तजवीज़ पेश की है जिसके तहत ईरान अपनी शरायत पूरी होने की सूरत में आबनाए हुरमुज को दोबारा खोल देगा। इन शरायत में 7 दिन के अंदर तमाम महाजों पर जंगबंदी, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली और तेल पर आयत पाबंदियों में रियायत शामिल हैं। इस दौरान एक अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने भी कहा कि ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने के लिए तैयार है और वो मजीद लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता है। एशियाई खेलों में जापान के नागोया में भारत ने कुल 23 तमगे जीते हैं। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम मुकाबलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की भारतीय जोड़ी ने सोने का तमगा जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 484.6 निशाने लगाए और 6.6 पॉइंट्स के साथ जुनूबी कोरिया की जोड़ी से आगे रहे। इस दौरान एशियाई खेलों में मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के खिलाड़ी गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। वहीं खवातीन के पोल वॉल्ट में भारतीय एथलीट बारानिका एलन गोवन ने कांसे का तमगा जीता। इसी तरह खवातीन के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने भी कांसे का तमगा अपने नाम किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देही इलाकों में तब्दीली और खवातीन का खुद कफील होना भारत की तरक्की की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी इस्लाहात और मुस्बत तब्दीली की अहमियत को उजागर किया। मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरी ज़्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में बामानी इस्लाहात को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोता, क्रिकेट के रोमांच और एशियन गेम्स के उत्साह का जब संगम होता है तो खेल प्रेमियों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। जापान में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासतौर पर पुरुषों का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें एशिया की 10 टीमें स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतर रही है। भारतीय टीम 2022 एशियन गेम्स की पुरुष क्रिकेट की स्वर्ण पदक विजेता है और इस बार भी टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है। उम्मीद करते हैं भारत इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर हम सभी को गौरवान्वित करेगा।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एशियन गेम्स 2026 पुरुष टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट पर यह वार्ता। वार्ताकार है मोहम्मद शाहिद।

श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी के खेल जगत प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एशियन गेम्स की शुरुआत हुई है 19 तारीख से और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और भारत से लगभग 500 एथलीट वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपने 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत लगातार मेडल्स जीत रहा है और मेडलों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। साथ में महिला क्रिकेट टीम भी गई वहाँ पर और उन्होंने शानदार मुकाबले को जीता और परचम अपना फहराया भारत का और गोल्ड लेकर आए। और अब मेंस में देखें तो भारत की पारी है और जो शुरुआत है भारत की, भारत को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है वहाँ पर और 28 तारीख से भारत क्वार्टर फाइनल में पार्टिसिपेट करेगा और उनको 3 मैच खेलने हैं और जो संभावनाएँ हैं, भारत फेवरेट दिखाई दे रहा है इसमें। और आप सभी एशियन गेम्स के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे, भारत के सभी एथलीट अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और मेडल की संख्या और लगातार बढ़ती चली जा रही है। एशियन गेम्स इस बार 2026 में जापान में आइची नगोया में खेले जा रहे हैं। भारत की क्रिकेट टीम भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की इस बार भी चैंपियन बनने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और भारत 2022 में चाइना में हांगजो में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर चैंपियन बना था। उसमें ऋतुराज भारत के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने शानदार अगुवाई की थी, लीडरशिप की थी और भारत को मैच जिताया था और चैंपियन बनाया था और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया था। इस बार भारत डिफेंडिंग चैंपियन की तरह इस टूर्नामेंट में उतर रहा है। 2022 में ऋतुराज की कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल दिलाया था। वास्तव में श्रोताओं और क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट पहली बार 2010 में ग्वांगझू एशियन गेम्स में शामिल किया गया था लेकिन भारत ने उस पुरुष प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद 2014 में भी क्रिकेट को एशियन गेम्स में शामिल किया गया, 2018 में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था और 2022 में हांगजो चाइना में क्रिकेट ने फिर वापसी की और भारत ने गोल्ड जीता और भारत का परचम फहराया। इस बार 2026 में आइची नगोया जापान में क्रिकेट फिर से शामिल है, इसलिए 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट का 4th एडिशन है, 4th संस्करण है। पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 में कुल 10 टीमें हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। बाकी 6 टीमें जो हैं, अफगानिस्तान है, हांगकॉन्ग है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, नेपाल और ओमान की जो टीमें हैं वो प्रीलिमिनरी राउंड में खेल रही हैं। भारत की मैंस टीम है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, उनकी लीडरशिप में अभिषेक शर्मा हैं और संजू सैमसन हैं, ईशान किशन हैं, तिलक वर्मा हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, अर्षदीप सिंह आदि ये शामिल हैं टीम में। तो एक कॉम्पैक्ट टीम है। टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है, फाइनल 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ऑलरेडी भारत 2022 का गोल्ड मेडलिस्ट और डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत की गोल्ड मेडल हासिल करने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, यदि उस पर हम नज़र डालें तो भारत दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत मजबूत और प्रबल दावेदार नज़र आता है। वैसे भारत को सीधे श्रोताओं क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। भारत को 28 सितंबर को ग्रुप ए की सेकेंड टीम से जीतना होगा और 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 3 अक्टूबर को फाइनल होगा। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल हैं और संभावित चुनौती पर यदि नज़र डालें हम तो ग्रुप ए की टीमों में अफगानिस्तान सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चुनौती हो सकती है भारत के लिए। जापान और नेपाल भी मुकाबले में हैं, इसलिए भारत के लिए पहला बड़ा काम होगा 28 सितंबर का क्वार्टर फाइनल जीतना और उसको फतेह करना। अगर भारत क्वार्टर फाइनल जीतता है तो सेमीफाइनल में उसका मुकाबला उस ब्रैकेट से आने वाली टीम से होगा जिसमें श्रीलंका भी है। और ख़ास बात, जो स्पेशल बात यह है कि भारत और पाकिस्तान फाइनल से पहले एक दूसरे से नहीं खेल सकते हैं, दोनों अलग अलग हाफ में हैं, इसलिए अगर दोनों अपनी अपनी नॉकआउट मैचेस जीतते हैं तो भारत पाकिस्तान फाइनल संभव है। भारत की स्थिति यह है कि भारत 2023 हांगजो एशियन गेम्स का डिफेंडिंग मेंस क्रिकेट चैंपियन है। 2026 भारत का प्रयास गोल्ड बचाने में रहेगा, डिफेंड करने में रहेगा। भारत की टीम बहुत ही मजबूत और कॉम्पैक्ट टीम है, उनके पास में बहुत बड़े युवा बल्लेबाज भी हैं और उनका जो फायर पावर है बहुत ही ज़बरदस्त है और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं।
यंग टैलेंट सेंसेशन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की टीम में जो मौजूदगी है, प्रेजेंस है, टीम को और भी स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। हर्षित राणा की जगह पर यश ठाकुर टीम में शामिल किया गया है। वो काफ़ी सक्षम हैं, सशक्त खिलाड़ी हैं। भारत टीम की खास ताकत इस बार भारत के पास T20 के लिए काफ़ी मजबूत कॉम्बिनेशन है। अभिषेक शर्मा एग्रेसिव ओपनिंग बैटर हैं भारत के, संजू सैमसन, ईशान किशन विकेट कीपर बैटर ऑप्शन हैं, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब ऑलराउंड ऑप्शन हैं भारत के पास में। बुमराह और अर्शदीप को अगर हम देखें तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस पेस अटैक हैं भारत के लिए। वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई स्पिन गेंदबाज हैं, ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है भारत के पास, ये कभी भी मैच का रुख बदलने में सक्षम है। वैभव सूर्यवंशी युवा बैटिंग ऑप्शन है, इसलिए भारत को गोल्ड मेडल के लिए 3 नॉकआउट मैचेस लगातार जीतने होंगे। 28 सितंबर क्वार्टर फाइनल और 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 3 अक्टूबर को फाइनल भारत को खेलना है। क्वार्टर फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो 28 सितंबर को 10 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेला जाएगा। संभावित सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को वही 10 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट इवेंट में इंडियन मेंस टीम अपने अभियान की शुरुआत क्वार्टर फाइनल मैच से कर रही है। इस इवेंट में भारत को फेवरेट माना जा रहा है। वैसे तो 24 तारीख से शुरुआत हो गई है और अब ये कंटिन्यूसली मैचेस उसमें होंगे और रोबिन राउंड बेसिस पर होंगे, उसके बाद में नॉकआउट बेसिस पर होंगे। अभिषेक शर्मा और अर्शदीप जैसे दिग्गज मैच का पासा पलटने में बहुत ही सक्षम है, कैपेबल हैं। वैसे तो इंडियन वुमेन्स टीम अपना खिताब बचाने में सफल रही, अब जहां इंडियन मैंस डिफेंडिंग चैंपियन पर अपने खिताब को बचाने का काफ़ी प्रेशर रहेगा। आइए उन 5 दिग्गज प्लेयर पर हम नज़र डालते हैं जिनका इम्पैक्ट जीत पर कहीं ज़्यादा रहेगा। भारत ने एशियन गेम्स से पहले जापान को इकलौते T20 इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में 2 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर जीत दर्ज की है और जीत रजिस्टर कर ली है। वैसे ये लो स्कोरिंग 5 ओवर का मुकाबला था, कुछ बारिश और तूफान की वजह से उसको 20 ओवर से 5 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने अपने 32 रन को बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड किया और इस मुकाबले को जापान के अगेंस्ट में उसको अपने फेवर में किया, अपने पक्ष में किया और उस मुकाबले को जीता। और वहाँ की जो कंडीशन है, सरकमस्टेंसेस हैं जापान की, वो भी भारत ने पहले से अडाप्ट कर लिया है। वहाँ की कंडीशन, परिस्थितियाँ, भारत पूरे तरीके से उसमें फेमिलर हो चुका है। अब उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है गोल्ड मेडल को डिफेंड करने में। अब भारत निशिन का रुख करेगी, जहाँ पर सारे मैचेस खेले जाने हैं, उसमें 14 मुकाबले होने हैं टोटल, और करोगी स्पोर्ट्स पार्क है निशिन में, और मेंस क्रिकेट इवेंट के सभी मुकाबले वहाँ पर खेले जाने हैं।

एशियन में वुमेन्स भारतीय टीम ने भी 200 प्लस का स्कोर करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आशा है कि भारत मेंस टीम भी यहां बड़े स्कोर करके स्पेक्टेटर्स को, दर्शकों को आश्चर्यचकित करेंगे, सरप्राइज देंगे और रोमांचित करेंगे। 26 साल के अभिषेक शर्मा इंडियन स्टार प्लेयर शानदार फॉर्म में हैं आजकल। उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में विरुद्ध में सीरीज में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो एशियन गेम्स में भी उनसे काफ़ी हमें आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और होप्स हैं। जुलाई 2024 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले अभिषेक अब तक 60 T20 की 59 जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 1858 रन उन्होंने बनाए हैं। एशियन गेम्स में उनके पास अपने 2000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे करने का पूरा मौका है, चांस है। अब बात करते हैं भारत को T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले विकेटकीपर बैट्समैन संजू सैमसन की। संजू का जो एक्सपीरियंस है एशियन गेम्स में बहुत काम आ सकता है, क्योंकि उनके पास में जो अनुभव है अपार है और बहुत ही सॉलिड बल्लेबाज हैं भारत के। जुलाई 2015 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले संजू भले ही अब तक के 70 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हों, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही गजब का रहा है। वो इस फॉर्मेट में 27.33 के एवरेज और 157.38 के स्ट्राइक रेट से 1558 रन्स कर चुके हैं। इनमें उनकी 3 सेंचुरीज यानी 3 सैकड़े भी शामिल हैं। ईशान किशन की बात करें, वो भी एक युवा बल्लेबाज हैं और झारखंड से आते हैं। उन्होंने अभी दिलीप ट्रॉफी उन्होंने फतेह की थी और बेहतरीन बल्लेबाज हैं भारत के। तो उनकी अगर हम बात करें तो वो एक अच्छे फॉर्म में हैं। अफगानिस्तान सीरीज़ में उन्होंने भी शानदार इनिंग्स खेली हैं और एशियन गेम्स में भी इस लेफ्टी बैटर से यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज से काफ़ी सारी हमें आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि वो बेहतरीन आतिशी पारी खेलेंगे और बेहतरीन पारियां खेलकर भारत को जीत दिलाएंगे। मार्च 2021 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाले ईशान ने अब तक 59 मैचेस में 29.84 के एवरेज से औसत से 145.151 के स्ट्राइक रेट से 1701 रन यानी कि 1701 रन बनाए हैं। अक्षर पटेल की बात करें, वो भी गुजरात से आते हैं और भारतीय टीम के बहुत ही अहम मेंबर हैं, इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाज भी हैं और बैटिंग भी बहुत ही शानदार करते हैं। भारत के ऑलराउंडर भी हैं, जिसने जापान के खिलाफ अभी रिसेंटली जो 5 ओवर का मैच हो गया था उसमें T20 इंटरनेशनल मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर उन्होंने मतलब जापान ऐसा लग रहा था जीत जाएगा, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी काबिलियत और सलाहियत से उस मुकाबले को बचाया और जीता। जापान की नमी वाली विकेट्स पर वो अपनी गेंदों से कमाल दिखा सकते हैं अक्षर पटेल। बल्ले से भी रन्स बनाने की उनमें क्षमता है और ज़बरदस्त उन्होंने प्रीवियस मुकाबलों में अच्छी पारियां खेली हैं और भारत को जीत तक पहुंचाया है। जुलाई 2015 में भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अक्षर भारत के लिए अब तक 105 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। बैट से उन्होंने 65 पारियों में 16.78 के एवरेज से 130.40 स्ट्राइक रेट से 755 रन्स बनाए हैं। ये उनका बैटिंग का इस T20 में उनके जो सलाहियत की तारीफ करते हैं अक्षर पटेल की, उनसे काफ़ी हमें आशाएं भी हैं। 98 पारियों में यानी कि 98 इनिंग्स में 22.53 के एवरेज से 105 विकेट चटकाए हैं। ये उनकी गेंदबाजी है और बॉलिंग एनालिसिस है। भारत के लिए सबसे अधिक T20 विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह की बात करें, इस फॉर्मेट में अपना डेब्यू उन्होंने जुलाई 2022 में किया था। जो वैसे वो 94 मैचेस में 91 इनिंग्स में 19.78 के शानदार एवरेज से 140 विकेट अपनी झोली में डाल चुके हैं। अर्शदीप सिंह ने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल भी किया है। ये उनका कारनामा है, अचीवमेंट है। और उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी 17 विकेट चटकाए थे और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे अर्शदीप सिंह एशियन गेम्स में। फैंस को अर्शदीप सिंह से काफ़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। आशा है भारतीय मैंस टीम इस बार भी गोल्ड मेडल हासिल कर भारत को एशियन गेम्स का चैंपियन बनाएगी और अपने गोल्ड मेडल को, जो पिछला गोल्ड मेडल है, उसको डिफेंड करेगी। धन्यवाद।

0: अभी आपने एशियन गेम्स 2026 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे मोहम्मद शाहिद। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना,

0: इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। मेरे हम सफ़र फिल्म का ये गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में गाए मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दीवाना लेके 2026 आईजी नगोया।
2: Far away in the land of the rising sun, the Indian contingent is striving hard to make a billion Indians proud of their outstanding performances. Hello and welcome to the daily Asian Games Aichi Nagoya recap only on Akashwani. My name is Abhinav Punshi. Here are the main headlines of the day. Day 7 of the Asian Games began on a bright note for the Indian contingent in Aichi Nagoya after Suruchi Singh and Kamaljeet claimed India's second gold.

0: medal, this one coming in the 10-meter air pistol mixed team event. Just minutes before this, the Indian trio of Neeraj Kumar, APS Tomar and Rudraksh Patil claimed a silver in the 50-meter 3P men's team event. Meanwhile, Manoj Shah and Diya Chitale lost the mixed doubles semi-finals, thus winning India its first mixed doubles medal in table tennis at the Asian Games after 8 years. Shortly afterwards, Joshua Chidambar and V. Senthil Kumar assured themselves of a medal in the mixed double squash. The India men's kabaddi team thumped Thailand, while the women's side defeated Nepal to enter the finals, thus assuring India at least two more silver medals. Manpreet Kaur added to India's medal tally next, winning the bronze medal in women's shot put. Gulveer Singh also won a silver medal in the men's 10,000-meter event. Let's now hear some more detailed reports. First up from the shooting range, where India struck gold, here's Sakshi Manwal with all the details.
1: The best news at the start of the day today came from 10-meter air pistol mixed team event, where Indian shooters Kamaljeet and Suruchi Singh put up a brilliant show. In the final of the 10-meter air pistol mixed teams event, they finished with the gold medal, thus clinching India's second gold of the Asian Games 2026. Another good news in the world of shooting was from the men's 50-meter rifle three positions. Indian shooters delivered a strong performance in the men's 50-meter rifle three positions, securing the team's silver. Aishwarya Pratap Singh Tomar finished third with 589, while Neeraj Kumar stood fourth with 588. Rudraksh Balasaheb Patil finished ninth with 585. India's combined score of 1,762 earned them the silver medal. China took gold with 1,766. In the 50-meter rifle three positions individual event, Aishwarya Pratap Singh Tomar had been eliminated from the men's 50-meter rifle three positions individual final, finishing fifth. Neeraj Kumar had earlier been eliminated in the eighth place, bringing India's campaign in the event to a sad end. With this, shooting remains the highest contributor in the total number of medals contributed by a specific event in the ongoing Asian Games 2026 so far, with a total of 10 medals coming from the world of shooting. This includes 1 gold, 5 silvers and 5 bronze.
0: It was another great day for India in athletics. Shabab Anwar has more.
2: एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन आज संतोषजनक ही रहा और सबसे खास बात ये रही कि भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार पोल वॉल्ट का मेडल जीता है। ब्रानिका एलांगोवन ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.15 मीटर की ऊंचाई पार कर कांस्य पदक जीता। उधर एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 2023 में इसी स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के शॉटपुट में मनप्रीत कौर ने 17.7 मीटर का थ्रो फेंक कर कांस्य पदक जीता। कृष्ण जयशंकर मेनन 16.7 मीटर के प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। महिलाओं के 400 मीटर में किरण पहल और प्राची चौधरी ने फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के 400 मीटर में विशाल टीके ने 45.27 सेकंड के समय के साथ अपनी हिट जीती और फाइनल में पहुंचे। पुरुषों के 100 मीटर में गुरविंदर सिंह और अनिमेश कुजूर दोनों ही फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। हैमर थ्रो में अमनीत सिंह ने 9वें और प्रवीण कुमार 11वें स्थान पर रहे। महिलाओं के हेप्टाथलोन में पूजा छठे और अनामिका अनीश 8वें स्थान पर रहीं। विशाल टेके ने 400 मीटर की हिट 2 में 45.27 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया और सीधे 400 मीटर के फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 400 मीटर रेस में किरण पहल और प्राची ने फाइनल में जगह बना ली है।
0: India had a good day in table tennis as well. Shahid Azmi has a report.
3: भारत के लिए टेबल टेनिस में आज का दिन मिला जुला रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि दिया चितले और मानुष शाह की जोड़ी ने हासिल की। भारतीय जोड़ी ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की जोड़ी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए पदक पक्का किया। लेकिन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती चीन की मजबूत जोड़ी वांग चुकिन और सुन इंगशा के सामने थी। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को सीधे 4 गेम में 4-0 से हराया। इसके साथ ही दिया चितले और मानुष शाह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब मानुष शाह और यशस्विनी घोरपड़े सिंगल्स में भारत की चुनौती आगे बढ़ा रहे हैं। मानुष ने ईरान के बेंजामिन फराजी को 4-0 से जबकि यशस्विनी ने सीरिया के हेंज जाजा को 4-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। उधर हरमीत देसाई और साथियान गणशेखरन की पुरुष डबल्स जोड़ी को जापान के खिलाफ 0-3 से हार मिली। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी भी जापान के तोमोकाजू हरिमोटो और हितो शिनोजुका से 3-1 से हार कर बाहर हो गई। महिला डबल्स में भी भारतीय जोड़ियों का अभियान आगे नहीं बढ़ सका।
0: The Indian team is going strong in squash. Shabab Anwar has more.
2: जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की स्क्वाश मिश्र जोड़ी ने एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक पक्का किया। अनुभवी जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पोली

0: और जेमिका अरिबांडो को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का पदक पक्का किया। वहीं अनाहत सिंह और अभय सिंह ने एकल स्पर्धाओं के अंतिम चार में प्रवेश किया। रिकॉर्ड 7वें एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही 40 वर्षीय जोशना और अपने पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे सेंथिल कुमार ने फिलीपींस की जोड़ी को 30 मिनट से भी कम समय में 11-3 11-5 से हराया। भारतीय जोड़ी के सामने अब शनिवार को सेमीफाइनल में हांगकांग की यू काली और मिंग होंग टैंग की चुनौती होगी। जोशना का एशियाई खेलों में छठा पदक होगा। उन्होंने 2018 में एकल में कांस्य, 2014 और 2018 में टीम स्पर्धा में रजत तथा 2010 और 2022 में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीते थे। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम महज 9 मिनट में 11-3 से जीत लिया। दूसरे गेम में फिलीपींस की जोड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोशना और सेंथिल कुमार ने अपना स्तर बढ़ाते हुए दूसरा गेम 11-5 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर महिला एकल में विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में हमवतन तन्वी खन्ना को 11-5, 11-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अनाहत की नजर अब 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बनाने पर भी है। पुरुष एकल में अभय सिंह ने स्थानीय खिलाड़ी रोयोनोसुके तोसुकुए को 11-4, 11-3, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। इरफान ने भारतीय वीर चोटरानी को 41 मिनट में 6-11, 11-8, 11-3, 11-3 से हराया। एशियाई खेलों में पुरुष और महिला एकल के स्वर्ण पदक विजेता 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे, जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: Was another great day for India in Kabaddi. Here's more from Shabab Anwar.
0: कबड्डी के कोर्ट पर भारत का जलवा बरकरार है। भारतीय टीम दोनों वर्गों के फाइनल में पहुंच गई है और दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक का बचाव करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को खेले गए महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को आसानी से 48 के मुकाबले 24 अंकों से पराजित किया। गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत का मुकाबला कल मजबूत प्रतिद्वंदी ईरान के साथ होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चीनी ताइपेई को 23-19 से शिकस्त दे दी। आज के सेमीफाइनल में भारत ने 3 ऑल आउट प्राप्त किए और इसमें पूजा, संजू देवी और सोनाली सिंह का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। उधर पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को 28 के मुकाबले 66 अंकों से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। पुरुष वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए भी भारत की टक्कर ईरान से ही होगी। पुरुष वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में ईरान ने चाइनीज ताइपे को एक तरफा मुकाबले में 59-21 से हरा दिया।
1: There was good news and bad news from the badminton courts. Shabab Anwar gives you all the details.
0: बैडमिंटन ने आज भारत को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब गत विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तिरेश साकुल और पिशाई सुफुन की जोड़ी ने 21-12, 19-21, 21-14 से हराया। सात्विक चिराग ने पिछली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इस बार पहले ही राउंड में बाहर हो गए। भारत की तनिषा क्रॉस्टो और ध्रुव कपिला ने मिक्स डबल्स में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 10 जोड़ी को 22-20, 24-22 से हराया। उधर महिला एकल मुकाबलों में उन्नति हुड्डा ने अच्छी शुरुआत की और अपनी प्रतिद्वंदी को 21-7, 21-10 से पराजित किया। उधर महिला डबल्स के पहले दौर में भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने पसांग ह्यू और थाइनलू की जोड़ी को 21-16, 16-21, 21-16 से हराया। दिन के अंतिम मुकाबले में वर्ग के तहत पहले राउंड में भारत के हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी इंडोनेशियाई जोड़ी से अपना मुकाबला 14-21, 11-21 से हार गई।
1: It was a tough test for India versus Japan in women's hockey today. Let's find out what happened. The Indian women's hockey team secured its berth in the Asian Games 2026 semi-finals after beating host Japan 3-1. Elham Razord, Ishika Chaudhary and Navneet Kaur scored the goals for India, while S. Kobayakawa hit the board for the hosts. Having won all four group matches till now, India, who beat Japan to win the bronze medal at Hangzhou 2023, currently top Pool B with 12 points and are assured a top 2 finish and by extension a place in the semis. The Indian women's hockey team will face Singapore in its final Asian Games Pool B match on Sunday. The Indians have been striving hard in the swimming arena. Let's hear what Sakshi Manwal had to say.
2: In the men's 200-meter backstroke heats, Rishabh Das clocked 2 minutes 00.53 seconds to finish 4th overall, while Utkarsh Patil finished 8th in 2 minutes 02.13 seconds. Once the finals of the men's 200-meter backstroke event started, both Indians were in this final, but neither finished amongst the top three. The 21-year-old Rishabh clocked 1 minute 58.77 seconds in the 200-meter backstroke finals to finish 6th, but with a new national record to his name by taking more than a second off his previous mark. Utkarsh Patil was 7th in 2 minutes 00.94 seconds. Sajan Prakash also progressed after finishing 6th overall in the men's 200 meter butterfly heats with a timing of 2 minutes 00.94 seconds. In the finals, the veteran swimmer, however, finished 7th in men's 200 meter butterfly. He did not start in the 100 meter butterfly but came up with a valiant effort today. There was disappointment in the men's 50 meter breaststroke and 400 meter freestyle. Dhanush Suresh finished 21st in the 50 meter breaststroke event in 28.40 seconds, while Anish Kaura and Dakshan Shashikumar finished 17th and 18th respectively in the 400 meter freestyle event. None of the three swimmers could advance to the finals.
1: It was a mixed day for the Indians in the boxing arena. Shahid Azmi has more.
3: बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए मिलीजुली खबर सामने आई है. पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार का सफर राउंड ऑफ 16 में ही खत्म हो गया. पहले बात सचिन की, उन्होंने जॉर्डन के पूर्व एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद अबू जाजे को कड़े मुकाबले में 4-1 के निर्णायक फैसले से शिकस्त दी. सचिन ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार और सटीक पंचों के साथ मुकाबले पर दबाव बनाए रखा. अबू जाजे ने आखिरी दौर में वापसी की कोशिश की, लेकिन सचिन की चुस्ती के आगे उनकी चुनौती कमजोर पड़ गई. भारतीय मुक्केबाज ने लगातार सटीक पंच लगाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ सचिन ने क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. अब उनके सामने जापान के शुनसुके कितामोतो की चुनौती होगी, जो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रह चुके हैं. वहीं महिला 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार को राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा. प्रीति को उत्तर कोरिया की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पैंग चोल मी ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से मात दी. प्रीति ने मुकाबले में चुनौती पेश की, लेकिन पैंग चोल मी ने सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में करते हुए अगले दौर में जगह बना ली. यानी बॉक्सिंग में सचिन ने भारत की उम्मीद कायम रखी, जबकि प्रीति पवार का अभियान यहीं समाप्त हो गया.
1: So how did the weightlifting contingent do for India today? Shabab Anwar tells us the report.
0: भारतोलन में आज सबकी निगाहें 26 वर्षीय एथलीट और पिछली राष्ट्रमंडल भारतोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली और इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली निरुपमा देवी पर थी, लेकिन उन्होंने दोनों भार वर्ग में निराश किया और पहले ही राउंड में बाहर हो गई. निरुपमा देवी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 8वां स्थान प्राप्त किया स्नैच में, जबकि 63 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 217 किलोग्राम वजन के साथ 7वें स्थान पर रही.
1: Indians were in action in canoe. Sakshi Manwal has all the details.
2: It was a disappointing day for India in canoe sprint. India's Prohit Baroy and Prasanna Kumar Chempadil Satyaprakash finished 5th in the men's kayak double 500 meter semi-final, clocking 1 minute 40.308 seconds. Then they competed in the final B, where they finished 3rd among 4 pairs in 1 minute 40.411 seconds. In the women's canoe double 500 meter semi-final, Megha Pradeep and Neha Devi finished 4th among 5 pairs with a timing of 2 minutes 8.306 seconds and did not qualify for the final. The Indian women's kayak 4-500 meter quartet of Dhana Manjuri Devi, Pooja, Sonia Devi and Parvati Geeta finished 8th in the final 8 with a timing of 1 minute 45.670 seconds. Overall, a disappointing day in canoe sprint for India.
1: There was lots of fencing action today for the Indian contingent. Shabab Anwar has more.
0: भारत को आज तलवारबाजी की टीम स्पर्धा के दोनों वर्गों में महिला और पुरुष दोनों जगह पराजय का सामना करना पड़ा और पहले ही मुकाबले को हार कर भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गए. सबसे पहले पुरुष टीम का फाइनल राउंड 16 मुकाबला हुआ, जिसमें हांगकांग चीन के हाथों भारत को 45-27 से पराजय का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व आदित्य हिमांश सिंह, तेजस पाटिल और कर रहे थे. वैसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने भारत को 45 के मुकाबले 29 अंकों से पराजित किया. इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी अनुप्रिया चौधरी, तनिष्का खत्री, यश वीरत कौर.
1: India is making its debut in surfing. Let's find out what happened. SS Gayan, Kamli Prakash, Kishore Ambrasu and Shivraj Babu progressed to the women's and men's shortboard in surfing. India is making a historic debut in surfing at the 2026 Asian Games. The surfing events are taking place from September 25th to 28th at the Pacific Long Beach in Tahara City. Coached by Frenchman Samay Rabou, the team views this exposure as a crucial stepping stone towards qualification for the LA Olympics in 2028. इंडिया वॉज स्ट्राइविंग फॉर अ मेडल इन इक्वेस्ट्रियन। लेट्स हियर व्हाट शाहिद आजमी हैड टू से।
3: एशियन गेम 2026 में घुड़सवारी टीम रेसेस इवेंट में भारत पदक से चूक गया। भारतीय टीम 201.971 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल कर सका। चीन ने स्वर्ण जबकि जापान ने रजत और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की ओर से श्रुति वोरा ने 68.059 अंक जबकि हृदय विपुल छेदा ने 67.353 और जय सूद ने 66.559 अंक हासिल किए। हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पोडियम पर जगह नहीं बना सकी।
1: E-sports is grabbing the nation's attention. Sakshi Manwal has the latest from Aichi Nagoya.
2: India went down 0-2 to South Korea in Pokemon Unite. Both the games were won by South Korea in a very commanding and dominating manner, and they ultimately went on to win the series 2-0.
1: So after another action-packed day, where is India in the medals tally? Let's find out.
2: भारत की पोजीशन मेडल टेबल पर 12th स्पॉट पर है। कुल मिलाकर भारत के पास इस वक्त 22 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, जो क्रिकेट और शूटिंग से आए हैं, 9 सिल्वर हैं, जिसमें से 5 शूटिंग से, 1 वेटलिफ्टिंग से, 2 एथलेटिक्स से और 1 वुशू से आया है, और 11 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 4 शूटिंग से, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, 1 सॉफ्ट टेनिस से, 1 बैडमिंटन, 1 रोइंग, 2 एथलेटिक्स और 1 टेबल टेनिस से आया है। नाउ लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टेबल। पहला स्थान लिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने विद अ टोटल ऑफ 157 मेडल्स, जिसमें से 97 गोल्ड हैं, 36 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसके पास कुल मिलाकर 113 मेडल्स हैं, 27 गोल्ड, 42 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसके पास कुल मिलाकर 64 मेडल्स अभी तक हुए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स।
1: It's another exciting day of the Asian Games 2026, with the Indian athletes looking to improve their medal tally on day 7 in Aichi Nagoya. In athletics, Savan Barwal and Karthik Arkera will try to go for gold in the men's marathon final. There was gold in shooting today, will there be one tomorrow? As the women's 50-meter 3B position, individual and team final will take place, with Ashish Chaudhary, Tilottama Sen and Vidarsha Vinod in action. Raju Nawat and Neha Devi will try to get India a medal in the canoe sprint mixed canoe double 500 final. There's also mixed doubles semi-final action with Josh Sachinappa and V. Senthil Kumar flying the Indian flag. Early morning at 9:30 a.m. it's a big women's kabaddi final between India and Iran. There's also women's single semi-final action in squash with Anahat Singh flying the Indian flag, while Abhay Singh will go for gold in his men's single squash semi-final versus Mohammad Irfan of Pakistan. For the Indian men's hockey team, it's a big pool encounter when they battle Japan. And as their female counterparts are doing, the Indian men will try to go for gold versus Iran in the kabaddi final. There are a lot of expectations from Tejinder Pal Singh Tor and Karamveer Singh in the men's shot put final, while Praveen Chitrawal and Karthik Unnikrishnan will go for gold in the men's triple jump final. There's also the women's 400 meter final in athletics, with Prachi and Kiran going for gold, while Vishal TK will hope to improve upon his impressive men's heat performance in the men's 400 meter final. And athletics action ends with the women's 1500 meter final, with Pooja and Parul Chaudhary flying the Indian flag. Not to forget, India is also in action in surfing, archery, athletics, badminton with his men's and women's singles, fencing, table tennis and boxing, as well as e-sports. That's it from us at Akashwani, as we gave you all the latest updates from the Aichi Nagoya Asian Games 2026. Here's hoping the Indian contingent does the country proud again tomorrow. So from producer Shahnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, it's goodbye and thank you so much for listening.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

कार्यक्रम का पहला गीत हमजोली फिल्म से है, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: महेंद्र कपूर की आवाज़ में गए हमराज फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये स्वर्णिम सफर निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देते

0: हुए इन दूरदर्शी प्रयासों का असर आज साफ जमीन पर लोगों के जीवन और देश प्रदेश की बदलती तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। आज के हमारे विशेष श्रृंखला में हम रुक कर रहे हैं हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं।
1: इस बारे में चर्चा करेंगे। इस बार की थीम है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी।
0: इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोनिका मौर्य जी। आप सामाजिक व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ हैं। मोनिका जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच दीपा जी।
0: चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैम, पहला सवाल आपसे, हम पोषण माह क्यों मनाते हैं और इस बार की थीम है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब है?
2: जी दीपा जी, देखिए आप जानते हैं कि भारत में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हम पब्लिक हेल्थ चैलेंज बोलते हैं। बहुत जन में ये पोषण की समस्या होती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा कैंपेन चलता है जिसे हम बोलते, और जो कि सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत हर साल सेप्टेम्बर में पोषण माह मनाया जाता है। इस पोषण माह को मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ गतिविधियां करें और लोगों में एक जागरूकता लाएं, बल्कि ये हमें ये याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि पोषण कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। सारे विभाग मिलके पोषण को लेकर काम करते हैं। इसका मुख्य विभाग जो ये करता है वो महिला बाल विकास विभाग, इसको मेन हेड है, लेकिन ये एक कन्वर्जेंस प्रोग्राम है जिसमें और भी अन्य जो भागे सब मिलकर इसमें काम करते हैं। तो पोषण माह एक तरह से हमको ये याद दिलाने की कोशिश होती है कि हमें पोषण के लिए किन गतिविधियों को करने की जरूरत है और लोगों का बार बार ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल मैम, कहते हैं कि शून्य से लेकर 6 वर्ष तक पोषण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा क्यों है?
2: तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जिसे हम बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड जो होता है वो 1000 दिन का जो पीरियड रहता है, तो जो गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक की उम्र रहती है बच्चे की, वो पूरे 1000 डेज कहलाते हैं। और वो जो 1000 दिन रहते हैं वो माँ के साथ साथ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बच्चे के पूरे भविष्य, उसके पूरे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन 1000 दिनों में, या जो आप कह रहे हैं कि 0 से लेकर 6 साल, ऑफ कोर्स वहाँ तक ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे का जितना भी भविष्य में विकास होने वाला है वो विकास इन्हीं इसी समय तय किया जाता है। और वो विकास सिर्फ और सिर्फ पोषण आधारित नहीं होता, बल्कि जो हम कहते हैं कि पूरा उसका उसके साथ खेलना, उसके साथ किस तरह से माता पिता इंगेज हो रहे हैं, उसको कितनी सुरक्षा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें 0 से 6 साल तक के एज में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। तो इसीलिए ये हमारा फोकस होता है और हमें ध्यान देना होता है इस एज ग्रुप में।
0: बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो जब बच्चा जन्म लेता है उससे 1000 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पेरेंट के लिए। तो जब भी बच्चे के विकास से संबंधित सारी चीज़ें फोकस हो पाएं, इसलिए ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। मैम, इस बार की थीम है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब है?
2: तो देखिए, अगर मैं एक सरल उसमें कहूँ तो हम सभी सोचते हैं कि आंगनवाड़ी में बच्चे को हमने छोड़ दिया और उसके बाद आंगनवाड़ी दीदी की जिम्मेदारी है ना। और माता पिता अमूमन, जैसे स्कूल्स में भी यही होता है कि हम स्कूल भेज देते हैं और सोचते हैं कि स्कूल की जिम्मेदारी, उसी तरह आंगनवाड़ी में भी होता है कि माता पिता ने भेज दिया और वो सोचते हैं कि दीदी ध्यान रखेगी। लेकिन ये हमें ये याद दिलाने के लिए इस बार की थीम कि इसमें हमारी जिम्मेदारी एक माता पिता होने के नाते, या समुदाय में रहने के नाते, या अगर हम वहाँ के पंच सरपंच हैं, या हम वहाँ के स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, तो कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो उसकी आंगनवाड़ी के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है, चाहे उनके बच्चे वहाँ जा रहे हों कि नहीं जा रहे। क्योंकि वो एक सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ बच्चे भेजे जा रहे हैं, बल्कि ये हमारा एक भविष्य तैयार हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ उसको सरकार या आंगनवाड़ी दीदी की जिम्मेदारी ना मान के हम सबकी एक
0: सामूहिक जिम्मेदारी
2: के लिए ये बनाया गया है, मतलब ये इस बार का हमें ये याद दिलाने के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि भले ही आपके बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हो या ना जाते हो, लेकिन वाकई समुदाय की जिम्मेदारी है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो हम सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि

0: आप सामुदायिक व्यवहार एक्सपर्ट हैं, तो आम आदमी अगर आंगनवाड़ी से जुड़ना चाहता है,
1: जी
0: चाहता है कि वो अपना एक अच्छा स्टेप वहां पर दे और
1: जी
0: कुछ अच्छा करे, तो कैसे जुड़ सकते
1: तो
0: हैं?
1: देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक ये बोलूं कि इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो इस बार की थीम भी है, कि उस थीम में ना पांच ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी सब थीम्स हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: उन सब थीम्स में से एक इम्पॉर्टेंट थीम ये है कि बच्चों को गर्म कुक्ड खाना मिलना चाहिए, ताज़ा कुक्ड और सफाई से बनाया गया खाना मिलना चाहिए।
0: जी
1: तो समुदाय इसमें सबसे पहले तो यही भूमिका अदा कर सकता है कि अगर आंगनवाड़ी में किसी चीज़ की कमी है तो वो उसमें सहयोग दे सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग मॉनिटरिंग मोड में चले जाते हैं। हमें मॉनिटरिंग मोड में ना जाके हम कैसे
0: उसको
1: सहयोग,
0: बेहतर कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं। हाँ
1: सहयोग देते हुए कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं वो देखना होगा। तो हम एक तो ये कर सकते हैं कि अगर वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको उपलब्ध करा सकते हैं, अगर हम वहाँ के पंच सरपंच हैं या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो हम इस तरह की चीज़ों में मदद कर सकते हैं। दूसरा, हम वहाँ पे मदद कर सकते हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि वहाँ जो भोजन पकाया जा रहा है वो साफ़ सफाई से पकाया जा रहा है कि नहीं पकाया जा रहा, उसमें हम और कैसे कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हम वहाँ पर अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, कि जो भोजन बन रहा है उसमें पोषण की गुणवत्ता कितनी है,
1: जी जी
0: पोषण बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता
1: जी
0: है। तो
1: और
0: बिल्कुल
1: सॉरी, मैं इसमें एक और
0: बिल्कुल
1: आपको बात
0: ज़रूर।
1: बोलना चाहूँगी कि एक जो गाइडलाइन है वो ये भी बताती है कि हमारा एक रोटेशनल मेन्यू भी होता है, एक सेट मेन्यू है
0: जी जी
1: जो सेट मेन्यू वहाँ पे दीवार पे होना चाहिए। तो हम इस तरह की चीज़ों को भी इंश्योर कर सकते हैं कि क्या खाना उस मेन्यू के आधार पे बन रहा है कि नहीं बन रहा, वहाँ पे वो मेन्यू लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। एक एक हमारी सोच ये भी होती है कि खाना हमेशा ऐसा हो जो कि महंगा हो, हाँ। तो एक प्रायोरिटी हमारी इसमें जो इस बार की थीम है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि कैसे हम लोकल जो खाना
0: बिल्कुल
1: उगाया जा रहा है
0: हाँ
1: उसको उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को समुदाय के सदस्य होने के नाते हम वहाँ पे देख सकते हैं कि इनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोगों में यही भ्रांति होती है कि खाना अगर महंगा है तभी उसमें पौष्टिकता है,
1: जी
0: वरना उसमें कोई पौष्टिकता नहीं है।
1: जी
0: जैसा कि आप जानते हैं, बताया जा रहा है कि किस तरह हमारे पुरातन संस्कृति में श्री अन्न का महत्व
1: जी
0: है,
1: जी
0: जो मिलेट्स हैं
1: जी
0: उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए बच्चों के लिए ताकि
1: जी
0: वो भी स्वस्थ जीवन शैली
1: जी
0: जिएं।
1: तो देखिए, ये आपने खुद ही कहा कि मिलेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत विटामिन रिच होते हैं, उसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि मिलेट्स थोड़े से हैवी होते हैं, उनको
0: जी
1: पकाना बहुत ज़रूरी है, देर तक पकाना ज़रूरी है, तो इन इस तरह की चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, हम अपने घर में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी एक समय के लिए बच्चे जाते हैं लेकिन जब बच्चे घर पे हैं
0: बिल्कुल
1: या माताएं जब घर पे हैं, किशोरी हैं, ये सभी लोग किस तरह से मिलेट्स को अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। और मैंने देखा है क्योंकि मैं काफ़ी फील्ड में जाती थी तो मैं देखती थी कि लोगों की एक सोच होती है कि इस तरह की जो चीज़ें होती है ये बहुत कम कमतर मानते हैं और उसको
0: जी
1: ज़्यादातर अपने जानवरों को दे देते हैं। तो हमें ये काम करने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत है कि उसको आपको इस्तेमाल करना है। लोग सोचते हैं कि गेहूं ही एक अकेला गेहूं या चावल एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें यूज़ करना है, तो फोकस हमें वापस इसमें लाने की ज़रूरत है और उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, सुरुचिपूर्ण खाना हम बना सकें, क्योंकि उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा स्वाद होता नहीं है, तो
0: जी
1: कैसे हम उसको, और मिलेट से तो सारी, मतलब सारी ही चीज़ें बन सकती हैं अगर हम देखें
0: बिल्कुल
1: तो हमें अगर इडली बनानी है, डोसा बनाना है, वो तक हम बना सकते हैं। तो ये सब हमें पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे वो इन सब को यूज़ कर रहे हैं अपने खाना बनाने में।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि श्रीअन्न की महत्ता बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग उनको मिलेट्स को अच्छे से लेते हैं तो वाकई इंसान स्वस्थ रह सकता है और बच्चों में भरपूर न्यूट्रिशन हो सकता है। मैम जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो बहुत दुबले पतले से कुपोषण के लक्षण हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है?
1: तो दीपा जी मैं उसमें ये बताना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है। देखिए कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा देखने में दुबला पतला दिख रहा है तो हम ये मानते हैं कि अच्छा ये कुपोषित है, पर सिर्फ देखने से हमें उसको नहीं ये चिन्हित कर सकते कि बच्चा सच में कुपोषित है कि नहीं है। हर आंगनवाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, एज अनुरूप कैसे बच्चे की वजन और उसकी हाइट बढ़ रही है इसका एक बकायदा मैपिंग करी जाती है, उसका एक चार्ट बनाया जाता है जो कि उनके टीकाकरण चार्ट पे लिखा भी जाता है ताकि पेरेंट्स उसको घर पे देख भी सके। जो जिसे हम बोलते हैं माता बच्चा कार्ड, जिसमें उनके टीकाकरण और बाकी सारी भी डिटेल्स रखी रहती है, वहां पे ये ग्रोथ मॉनिटरिंग बनाया जाता है। तो माता पिता इस चार्ट को देखकर या फिर अपनी तरफ से भी ये फॉलो अप करके कि बच्चे की हाइट में क्या सुधार आ रहा है, बच्चे की वेट में क्या सुधार आ रहा है, इसको देख सकते हैं कि बच्चा कुपोषण की तरफ तो नहीं जा रहा, उसकी वजन और हाइट रेगुलरली बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ये देख सकते हैं। तो वो एक साइंटिफिक तरीका होगा बजाय सिर्फ आंखों से देख के बोलने के।
0: बिल्कुल सही कहा मैम। आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर बनाने के लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, स्वयं सहायता समूह हैं और समुदाय किस तरह सहयोग कर सकते हैं?
1: बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए आंगनबाड़ी क्या करते हैं कि उनके हर हर ट्यूसडे को, जैसे मंगल दिवस बोलते हैं, हर ट्यूसडे को अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। कभी किशोरी दिवस होता है, कभी गोद भराई की रस्म होती है, कभी बच्चों को टीकाकरण का दिवस होता है, अलग अलग दिन होते हैं और उसमें अलग अलग फंक्शंस किए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं समुदाय आधारित कुछ कार्यक्रम, कम्युनिटी लेड कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स किए जाते हैं जिसमें कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है, माता बैठक होती है, अभिभावक बैठक होती है। तो हम सबसे पहले तो यही भूमिका अदा कर सकते हैं कि इस तरह के जब भी कोई गतिविधियां हों उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम सिर्फ ये ना सोचें कि हमने बच्चे को पहुंचा दिया अब हमारा कोई इसमें काम नहीं है, हम वहाँ जाएं, हम उसको अटेंड करें, वहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसको सुने और जो वहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको वापस आके अपने घर में भी फॉलो करें। क्योंकि कई बार होता है कि जितना आंगनवाड़ी में बता दिया सिखा दिया सिर्फ उतने ही तक रहता है, लेकिन हम घर में उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। एक सिंपल सी बात मैं अगर आपको बोलूं कि हम सभी हाथ धोने को लेकर बात करते हैं आंगनवाड़ी में, जब बच्चे खाना खाते होंगे आई एम श्योर वो हाथ धुला के दीदी उनको बिठाती है, तो क्या माता जब घर में बच्चे खाना खा रहे हैं वो छोटी छोटी हैबिट्स को उनमें डाल रही हैं कि नहीं डाल रही? तो इस तरह से हम आंगनवाड़ी में बताई गई सीखों को पालन कर सकते हैं। हम और बेहतर ऐसे बना सकते हैं आंगनवाड़ी को कि अगर वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे बीच में इस तरह का भी था अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, हाँ उसमें क्या हम भूमिका कर सकते हैं? अगर अगर हमें लगता है कि वहाँ आंगनवाड़ी में एक दीवार बनाने की ज़रूरत है, बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, कुछ खिलौनों की ज़रूरत है, तो क्या हम इस तरह की चीज़ों के माध्यम से समुदाय खुद से पैसा जोड़ कर वहाँ पे कुछ डोनेशन कर सकती है, उनको दे सकती है? ये सारी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने मैम। अगर मान लीजिए आपको लगता है तो किसी भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो आंगनवाड़ी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो आप अच्छी आदतें करते हैं अगर वो अपने घर में बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहाँ का सीखा हुआ वो कैसे अपने जीवन में उतार पाएंगे? तो खासकर माओं से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी आंगनवाड़ी जब बच्चे जाते हैं तो सेंटर पे दीदी जो भी उनको सिखाती हैं उस केंद्र में, तो वो चीज़ें अपने घर में बच्चे के साथ में दोहराएं ताकि वो उसके जीवन में शामिल हो सके। मैम हम रोज सुनते हैं कि संतुलित आहार खाइए, अक्सर संतुलित आहार को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या है संतुलित आहार?
1: उसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल, अपना एक फील्ड का एग्जांपल शेयर करूंगी।
0: जी, जरूर।
1: कुछ समय पहले मुझे हम लोग जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारी हमारे स्ट्रैटेजी बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऐसा नहीं हो कि ऊपर से कोई स्ट्रैटेजी या प्लान बना के दे दिया जाए, बजाय इसके हम जिसे बोलते हैं ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, यानी कि व्यक्ति या इंसान जिस भी कम्युनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम प्रोग्राम बनाएं। तो इसी तरह के एक प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं खंडवा में मैंने विजिट किया था और वहाँ के एक ब्लॉक में मैं गई थी एंड आई वाज सरप्राइज, मतलब वहाँ जाके मैं बहुत कुछ चीज़ें सुन के मैं बहुत सरप्राइज हुई। फॉर एग्जांपल मुझे ये

वहां जाके पता चला कि जैसे मैं एक आंगनवाड़ी की बैठक में थी, तो वहां पे लगभग 12 बज रहे थे और कुछ गर्भवती महिलाओं के साथ मैं बैठक कर रही थी। आप मानेंगी, जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या खा के आई हैं, तो उन्होंने कहा चाय और बिस्किट।

0: स्कूल में मिलती है और हम दिन भर कुछ नहीं खाते, जब हम घर जाते हैं तब हम उसे खाते हैं, तो क्योंकि वो कुछ खाने के बाद उनको वो खाते हैं, और उस बीच में जो वो रास्ते में जाते हैं वो उस गोली को फेंक देते हैं। तो देखिए, हमने सरकार क्या कर सकती है, सरकार
1: प्रोवाइड
0: आपको
1: कर सकती है
0: प्रोवाइड
1: सर।
0: कर सकती है, चीज़ें दे सकती है, लेकिन उसको लाना, उसको खाना, उसको अपनी आदत में शुमार करना, वो समुदाय और व्यक्ति का खुद का काम होता है। और यही जब हम सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति खुद से समझे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे
1: जी
0: कि
1: जी
0: बैलेंस्ड मील क्या होगी। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी हमारी जो इंडियन थाली होती है वो अपने आप में एक बैलेंस्ड थाली होती है। हम सब जानते हैं कि उसमें रोटी, चावल,
1: दाल
0: दाल,
1: सब्जी
0: सलाद, रायता या कुछ सब्जियां, ये सब सब चीजें रहती हैं। तो सबसे पहला रूल तो यह है कि जितनी रंग बिरंगी हमारी थाली होगी उतनी हमारी थाली बैलेंस्ड होगी, हमें ये ध्यान रखना है। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चाय और बिस्किट खा लिया, तो चाय और बिस्किट हमारा पेट जरूर भर सकता है लेकिन वो ये इंश्योर नहीं करेगा कि हमें पोषण मिला। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पोषण के लिए हमें बैलेंस्ड फूड लेना होगा, और बैलेंस्ड में हमें ध्यान रखना होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लें, कुछ फैट भी हो, कुछ उसमें प्रोटीन भी हो, कुछ फाइबर्स भी हो, और वो ये अलग अलग जो भोजन के ग्रुप्स हैं उसको लेकर कर सकते हैं। एक और भ्रांति ये रहती है कि जितना महंगा फल हो या जितना
1: जी
0: महंगा
1: जी
0: खाना
1: जी
0: हो वो अच्छा है। तो हमें बैलेंस्ड मील में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लोकली हमारे यहाँ अवेलेबल है उसको हम खाएं, उसको यूज करें, वो भी उतना ही पौष्टिक है।
1: बिल्कुल। सीजन की जो फल और सब्जियां हैं जो आपके आसपास उगती हैं
0: जी
1: उनको जरूर खाएं, उनको बिल्कुल मिस ना करें
0: जी
1: ताकि
0: जी
1: आपके शरीर में पोषण बना रहे।
0: जी
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग महंगे खाने को ही पौष्टिक मानते हैं और सस्ते खाने को बोलते हैं
0: जी
1: कि इसमें क्या ही न्यूट्रिशन होगा।
0: जी
1: तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अपने आसपास उगाई गई फल और सब्जियां खाते हैं तो निश्चित
0: जी
1: तौर पर जो है
0: जी
1: पोषण आपको मिलता रहेगा।
0: जी
1: मैम, इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का संदेश आंगनबाड़ी से जुड़ा है, हम सब जानते हैं, इसमें परिवार और आंगनबाड़ी की क्या भूमिका है?
0: तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि हमें आंगनवाड़ी को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फैसिलिटी या एक ऐसी जगह के रूप में नहीं देखना चाहिए जहां हमने अपने बच्चे को भेज दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हम किस तरह से समुदाय अपने आप को उससे इंगेज कर सके, इन्वॉल्व कर सके, और जिसे हम बोलते हैं कि जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो सके। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कुछ वित्तीय सहायता ही दें, आप जिस भी तरह से उसमें सहायता दे सकते हैं, जिस भी तरह से आप इंगेज हो सकते हैं, इंगेज हो। शुरुआत सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना होगा कि हम बच्चों को समय पर आंगनबाड़ी भेजें,
1: बिल्कुल।
0: दूसरा कि वहाँ जो सिखाया जा रहा है वो जो वहाँ की सीख है उसको फॉलो किया जाए, तीसरा अगर समुदाय या स्वयं सहायता समूह हैं अगर वो कुछ कर सकते हैं और वहाँ पे आंगनवाड़ी में किसी तरह की ज़रूरत है, मान लीजिए बच्चों को क्योंकि खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है या बैठने के लिए या कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या वो समुदाय के साथ मिलकर कुछ इस तरह का जन सहयोग करके पैसे जोड़ कर और वो चीज़ वहाँ पे खरीद सकते हैं इनकी नहीं कर सकते। चौथा एक ये हो सकता है जो मैं आपको बता रही थी कि हम मॉनिटरिंग के मोड में ना जाके, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग सपोर्टिव सुपरविजन,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कि किस तरह से हम आपको और सहयोग कर सकते हैं, आप बताइए कि आपको क्या जरूरत है, हम और क्या कर सकते हैं। हो सकता है आंगनवाड़ी के आसपास में टॉयलेट उपलब्ध ना हो, तो क्या वहाँ के पंच सरपंच मिलके वो
1: बिल्कुल।
0: शौचालय बनाने में मदद कर सके। मान लीजिए शौचालय है लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है,
1: जी जी
0: तो क्या हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं, क्या हम पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ करा सकते हैं, क्या हम साफ सफाई का काम करा सकते हैं, कुछ नहीं तो क्या हम अच्छे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे मुरिंगा हो गया या अन्य इस तरह के पौधे लगा सकते हैं जिससे कि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। तो इस तरह से हम एक्टिवली इंगेज होंगे, जितना ज़्यादा हम इंगेज होंगे, हम सिर्फ दूर से दर्शक बन के ना देख के बल्कि उसको अपना समझे, मतलब उस आंगनवाड़ी केंद्र को हम अपना समझे, तो हम ज़्यादा बेहतर उसको सुधार ला पाएंगे और अल्टीमेटली ये सारा सुधार हमारे अपने बच्चों के लिए है।
1: आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि
0: जी
1: दर्शक ना बना जाए और स्वयं आगे आए,
0: जी
1: एक कदम बढ़ाएं उनके साथ और सहयोग करने की हिम्मत करें
0: जी
1: ताकि जहां देश का भविष्य बन रहा है अपना थोड़ा सा योगदान जरूर दे,
0: जी
1: कह सकते हैं। मैम, कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए, जैसे कि आपने बताया कि आप

0: सामाजिक व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, तो सकारात्मक चीजें कैसे हम अपने व्यवहार में लाएं ताकि जो हमारा दृष्टिकोण है वो अच्छा रहे।
1: देखिए मैम, जैसे मैं एक वही जो आपको एक एग्जांपल दे रही थी बच्चों का, मैंने आपको बताया था, या मैंने गर्भवती स्त्रियों का बताया था, इनफैक्ट जब हम किशोरियों से भी बात करते हैं तो पता चलता है कि 12 बजे तक बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे। तो मुझे लगता है सबसे पहला परिवर्तन जो हमें लाने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें एक टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ भोजन के समय पे भी ध्यान देना होगा। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे मुझे ये भी पता, उन्होंने ये भी बातचीत में शेयर किया कि दिन में वो चावल चपाती लेते हैं या कभी कभी सब्जी खाते हैं, और रात में सिर्फ और सिर्फ दाल चावल खाते हैं। और ये मैं सिर्फ एक हाथ से बात करके नहीं बता रही, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग समय पे बात करी। तो मुझे लगता है हमें जो अपने लाइफस्टाइल में लाने की ज़रूरत है वो यही कि कैसे हम बैलेंस्ड मील, एक पूरी बैलेंस्ड थाली जो है उसको लाने की कोशिश करें। हाँ, इसमें लोग ज़रूर कह सकते हैं कि भाई हो सकता है हम बैलेंस्ड थाली अफोर्ड ना कर पाएं, हम उसको यूज़ ना कर पाएं, या समय का कहीं कहीं कमी हो, लेकिन इसमें हम फिर वही बात बोलेंगे कि जो महंगा है वही अच्छा है, इस चीज़ को हमें नहीं फॉलो करना होगा। एक बैलेंस्ड थाली को हम अपने जीवन में लाएं, नियमित हम अपनी नियमित दिनचर्या में वॉक करें या इस तरह की शारीरिक श्रम करें, और अगर हम बच्चों की बात करें तो जो नियमित टीकाकरण है उनको हम समय समय पर टीकाकरण को लगाएं, और बच्चे जो अनीमिया की हम बात करते हैं कि वो भी बहुत ज़रूरी है, जो भी हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आयरन की दवाई मिल रही है, वो सब हम समय समय पे खाएं, तो हम ओवरऑल अपने हेल्थ को बेहतर रख पाएं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि सरकार जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है उनको हम अच्छे से कंज्यूम करें एटलीस्ट, जैसे आयरन की गोलियां हैं, फॉलिक एसिड है, ये सब गर्भवती महिलाओं को मुफ्त मिल रही सरकार की तरफ से, तो हमें उसको सही समय पर खाने की, जैसे कि आपने संतुलित आहार, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या है, ज्यादातर लोगों को संतुलित आहार सबको पता होता है, लेकिन तब भी अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि संतुलित आहार की थाली कैसे दिखती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। तो आहार जो है वो उसमें न्यूट्रिशन जरूर होना चाहिए, फोकस करना चाहिए, साथ ही संतुलित आहार के साथ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैम, समय भी बहुत जरूरी होता है, समय पर सही आप भोजन कर रहे हैं तो वो पौष्टिकता में बहुत जरूरी होता है। मैम, युवा किस तरीके से शामिल हो सकते हैं अपने आंगनबाड़ी को बेहतर बनाने में?
1: जी दीपा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए युवा हमारे लिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में युवाओं की बहुत अच्छी जनसंख्या है, मतलब सबसे अच्छी,
0: और युवाओं का देश है
1: बिल्कुल, और अगर हम ये हमारे लिए एक तरह का रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम इसे यूज करते हैं, अगर हम इनकी मदद लेते हैं, इनका सपोर्ट लेते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क ला सकते हैं। देखिए हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके लिए एक सहायिका रहती है, जो कि जिनकी जिम्मेदारी होती है उस पूरे एरिया को कवर करना, लेकिन यदि यहीं पे वो एक टोली बनाते हैं और टोली बना के युवाओं की टोली बनाते हैं, या युवा जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, अगर इस तरह के छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करें, मान लीजिए कि वो चित्र कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन करें, नुक्कड़ नाटक करें, ऐसी जगहों में जाएं जहां पे कि इस तरह की जागरूकता का अभाव है, वहां जाके वहां की बोली में, मान लीजिए अगर हम बुंदेलखंड में हैं तो बुंदेलखंडी में अगर हम वहाँ जाके एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक करते हैं किसी गांव में, तो वो ज़्यादा अपील करेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। अगर लोग इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि पोषण सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में नहीं हुआ, वो पूरी हैबिट्स के बारे में हुआ। तो अगर हम बोलते हैं कि खाना खाने हमें किसी भी व्यक्ति को 6 बार हाथ धोना चाहिए, तो वो 6 बार हाथ धोना कब कब है, हाथ कैसे धोना चाहिए, अगर ये बेसिक जानकारी भी हम अपने युवाओं को या बच्चों को देते हैं, और वो बच्चे घर जाके, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा 5 बच्चों को बताता है या अपने परिवार को जाके बताता है, तो ये एक

0: मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी जानकारी दे पाएंगे, और जानकारी देने के साथ साथ जब बच्चे वो खुद से करते हैं तो वो व्यवहार में ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे कि उनका व्यवहार परिवर्तित हो। तो इस तरह से हम युवाओं की सपोर्ट ले सकते हैं, उनको अलग अलग गतिविधियों में इंगेज कर सकते हैं। और सभी मैंने अभी तक का मेरा अनुभव ये जरूर कहता है कि जो युवा होते हैं या जो किशोर किशोरियां होते हैं, आप उनको जब इंगेज करते हैं तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो बहुत खुश होते हैं इस सब में हिस्सा लेने में, और उनका बहुत सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में।
1: जी जरूर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भारत युवाओं का देश है, युवा चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ भी जिस क्षेत्र में है वहाँ आप अपना थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं, जो आपके आसपास के भाई बहन हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, पोषण की महत्ता क्या है इसको बता सकते हैं, बच्चे जो छोटी छोटी अपना स्वास्थ्य रखने वाली हैबिट्स है उनको उनके प्रति जागरूकता ला सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी, चूंकि नौवा राष्ट्रीय पोषण माह पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जो गर्भधात्री और गर्भवती महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सबसे पहले तो मैं गर्भवती महिलाओं के लिए ही बोलूंगी कि गर्भवती महिलाओं का जैसे ही गर्भ का पता चलता है महिलाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आंगनवाड़ी में जो हमारी 3 या 4 ANC जाँच होती है उन जाँचों को समय समय पर कराना चाहिए। उसके अलावा जो आयरन की हमें दवाई मिलती है वो खाना चाहिए। हमें एक बैलेंस्ड जो थाली है, जो हमारी एक पोषण के लिए हमें जो इंश्योर करना है कि उसमें फल सब्जियां रोटी दाल चावल और इस तरह की चीज़ों को, दूध दही, इसको उपयोग में जरूर लेना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है एक कैचवर्ड जो होता है वो यही है कि आप कितना ध्यान रख रही हैं, कितनी जागरूकता के साथ ध्यान रख रही हैं, सिर्फ टाल नहीं रहे, थोड़ा सा समय लगाना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन महिला अपना और अपने परिवार दोनों के स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती है, अपने प्रति थोड़ा सा सेल्फिश होकर।
1: जी जी जी बिल्कुल। मोनिका जी, आप यहाँ पर आई, हमने 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में डिस्कशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मुझे इतना समय देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
1: और इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बेटा बताए सात सूत्रों का उल्लेख किया।

0: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
1: केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर को अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में आयोजित 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के सिविल सचिवालय से सोमनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 प्रतिभागी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। शंघाई में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्ड स्किल्स शंघाई में टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।